मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है। शक संवत 1948 के श्रावण माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 अगस्त सन 2026 सवेरे के 5:58 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन पहली सेमीकंडक्टर यूनिट में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूँ चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है First in my bloodline to make a chip in India।
0: श्री मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और सेकेंड लेडी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल आबिजान में कोटी डी आयवर के राष्ट्रपति अलासानी उटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटी डी आयवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह पुदुचेरी के गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में श्री शाह मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह दो दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक

0: आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी किया है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 147,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उधर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़े मार्गों की मरम्मत और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस यात्रा को आज से बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दिया गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत के अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। ये मुकाबला दक्षिण कोरिया के आसन में भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा। अश्मिता ने कल सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं क्यू हान ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की जी किम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, भक्ति की राह पर जब मन एकाग्र होता है तो संसार की सारी चिंताएं धीरे धीरे पीछे छूटने लगती हैं। प्रभु का नाम ही मन को शांति देता है और जीवन को सही दिशा दिखाता है। कहा भी गया है, जब हृदय में राम का नाम बस जाए तो फिर उस नाम को भुलाना संभव नहीं होता। यही भाव हमें समर्पित करता है हमारे इस अगले भजन में। और ये भजन हम आपको सुनवा रहे हैं अरुण मोहन की आवाज में। तो आइए कुछ पल अपने प्रभु को भक्ति की अपने प्रभु की भक्ति में रमाते हैं और सुनते हैं ये मधुर भजन।

अरुण मोहन की आवाज में अभी आपने सुना ये भजन। श्रोताओं, भक्ति में जब मन पूरी तरह प्रभु को समर्पित हो जाता है तो भक्त के लिए ईश्वर ही उसकी वाणी, उसकी दृष्टि और उसके जीवन का आधार बन जाता है। हर सांस में प्रभु का नाम और हर धड़कन में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। इसी गहराई आस्था और समर्पण का भाव लिए अब हम लेकर आए हैं एक मधुर भक्ति में भजन। इसमें भक्त अपने आराध्य से कहता है कि मेरी वाणी भी आप हो, मेरी आंखें भी आप हो और मेरे जीवन के हर मार्ग में आप ही मेरे सहारे हो। तो आइए मन को भक्ति के रंग में रंगते हैं और सुनते हैं ये भावपूर्ण।

छाया गांगुली की आवाज में अभी आपने सुना ये भजन। श्रोताओं, ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि मन के भावों में होती है।

जब मन में श्रद्धा जागती है तो भक्त अपने आराध्य को कभी पिता, कभी गुरु और कभी अपने सबसे करीबी सहारे के रूप में पुकारता है। बाबा शब्द में ही एक ऐसी आत्मीयता और विश्वास छिपा है जहाँ भक्त अपने प्रभु से अपने मन की बात कहता है, उनसे मार्गदर्शन मांगता है और हर परिस्थिति में उनका हाथ थामे रखने की प्रार्थना करता है। तो आइए इसी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से भरे भाव को महसूस करते हुए सुनते हैं ये शब्द।

भाई हरजिंदर सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुना ये शब्द। श्रोताओं, इबादत केवल सजदे में सर झुकाने का नाम नहीं, बल्कि अपने रब को दिल से याद करने, उनकी रहमत पर भरोसा रखने और अपने हर अच्छे कर्म में उनकी मौजूदगी महसूस करने का नाम है। जब दिल में अपने परवरदिगार की मोहब्बत हो तो हर सांस एक दुआ बन जाती है और हर लम्हा इबादत का एहसास देने लगता है। यही खूबसूरत भाव इस नात में सुनाई देता है। तो आइए अदब और मोहब्बत के साथ सुनते हैं ये खूबसूरत नात, जो हमें रब की याद और बंदगी के एहसास से जोड़ती है।

अजीज अहमद वारसी और साथियों की गाई इस नात के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना भी यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग। गायक कलाकार हैं सुरेश वाडेकर और संगीत है सतीश भाटिया का।

श्री राम के मन में ये सोच व्याप्त है कि राजा जनक समेत भरत सभी माताएं अयोध्या तथा जनकपुरवासी दुखी हैं और व्यर्थ ही चित्रकूट में वनवास के कष्ट भोग रहे हैं। उनकी चिंता सुनकर वशिष्ठ जी मिथिलापति से सबकी दुविधा समाप्त करने का आग्रह करते हैं। मुनिवर के वचन सुनकर जनक जी का ज्ञान और वैराग्य तिरोहित हो गए। वो प्रेम और मोह के वशीभूत हो गए। उन्हें लगा कि यहां आकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ ने तो पुत्र विरह में अपने प्राण त्याग दिए और वे उन्हें और गहन वन में भेजकर अपने प्राण भी नहीं त्याग सकेंगे। मिथिलापति को नहीं समझ में आता कि अब क्या किया जाए। अतः क्या किया जाए इसका निर्णय उन्होंने भरत पर छोड़ दिया। भरत ने कहा, सारा जगत जानता है कि सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। स्वामी धर्म और स्वार्थ एक दूसरे के विरोधी हैं। बैर अंधा होता है और प्रेम में बुद्धि साथ छोड़ जाती है। अतः मुझसे न पूछकर श्री राम की रुचि का ध्यान रखते हुए वही करना चाहिए जो सर्वसम्मत तथा सबके लिए हितकारी हो।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग। गायक कलाकार थे सुरेश वाडेकर और संगीत था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: ईश्वर की सृष्टि में प्रत्येक कण का अपना अस्तित्व होता है। प्रत्येक को कुछ न कुछ

0: गुणगान कर रहा होता हूं। ये सब रॉकेट और मिसाइलें उसी के काम हैं जो कलाम नाम के एक छोटे से व्यक्ति के माध्यम से खुदा ने कराए हैं। इसलिए भारत के कई कोटि जनों को कभी भी छोटा या असहाय महसूस नहीं करना चाहिए। हम सब अपने भीतर दैवीय शक्ति लेकर जन्मे हैं। हम सबके भीतर ईश्वर का तेज छिपा है। हमारी कोशिश इस तेज पुंज को पंख देने की रहनी चाहिए जिससे ये चारों ओर अच्छाइयां एवं प्रकाश फैला सके। श्वार्टर्स हाई स्कूल के मेरे एक शिक्षक आया दुरै सोलोमन उन उत्सुक छात्रों के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक थे जिनके समक्ष उस समय संभावनाओं और विकल्पों की अनिश्चितता थी। आया दुरै सोलोमन कहा करते थे, जीवन में सफल होने और नतीजों को हासिल करने के लिए तुम्हें तीन प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए, इच्छा, आस्था और उम्मीदें। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूं पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी होगी, फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूंगा। बचपन से ही मैं आकाश एवं पक्षियों के उड़ने के रहस्यों के प्रति काफी आकर्षित था। मैं सारस को समुद्र के ऊपर मंडराते और दूसरे पक्षियों को ऊंची उड़ान भरते देखा करता था। हालांकि मैं एक बहुत ही साधारण स्थान का लड़का था, लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक दिन मैं भी आकाश में ऐसे ही उड़ाने भरूंगा। और वास्तव में कालांतर में उड़ान भरने वाला मैं रामेश्वरम का पहला बालक निकला। जीवन में खुशी, संतुष्टि और सफलता हमारे सही चुनाव पर निर्भर करती है। अपनी प्रगति को परखना बड़ा मुश्किल होता है। जीवन के इम्तिहान में पर्चा भी खुद बनाना होता है और उत्तर भी खुद ही लिखने होते हैं, यहां तक कि उन्हें जांचना भी खुद ही को होता है। जब आप स्वयं अपनी इच्छा एवं जिम्मेदारी से कोई काम अपने हाथ में लेते हैं तब आप एक इंसान बन जाते हैं। तीन बड़े वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, अंतरिक्ष, रक्षा शोध एवं परमाणु ऊर्जा में मुझे काम करने का महान अवसर मिला है। इन तीनों प्रतिष्ठानों में एक जो खास बात है वो ये कि अपने मिशनों में काम के दौरान इन वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को असफलता का डर कभी भी नहीं लगा। असफलता के साथ उनके भीतर सफलता के बीज भी रहे हैं। इसी से कहीं बेहतर टेक्नोलॉजी सामने आई है। मैं पूरे उत्साह से उम्मीद और प्रार्थना करता हूं अंततोगत्वा हमारा राष्ट्र एक मजबूत, खुशहाल और विकसित राष्ट्र जरूर बनेगा।
1: अभी आप चिंतन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। काव्यधारा कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है राजेश मिश्रा से काव्य पाठ।
2: माँ शारदे को नमन करते हुए मैं एक वंदना पढ़ रहा हूँ कि अभिव्यक्ति या व्यक्त करूँ माँ शारदे को नमन कर। अभिव्यक्ति या व्यक्त करूँ माँ शारदे को नमन कर, बिगड़ी सबकी तू बना उजले हुओं को चमन कर। बिगड़ी सबकी तू बना उजले हुओं को चमन कर, दोस्त क्या तुम दुश्मनों पर भी रखो अपनी कृपा। दोस्त क्या तुम दुश्मनों पर भी रखो अपनी कृपा, निकले मन से दुश्मनी उनके दिलों में अमन कर। निकले मन से दुश्मनी इनके दिलों में अमन कर, और गम किसी को ना सताए और ना दुख का पहाड़। गम किसी को ना सताए और ना दुख का पहाड़, सबको खुशियाँ बांट दे आंसू रहे थर नैन कर। सबको खुशियाँ बांट दे आंसू रहे थर नैन कर। और इन पंक्तियों पर विशेष ध्यान चाहूँगा कि पुत्र पुत्री बैठे दर पे माँ तेरे गुणगान को। पुत्र पुत्री बैठे दर पे माँ तेरे गुणगान को, वाणी में भर जाए मदरस ऐसे तू को जतन कर। वाणी में भर जाए मदरस ऐसे तू को जतन कर। और ये पंक्तियाँ और देखें कि होवे नफरत ना किसी से, घृणा ना दुर्भावना। होवे नफरत ना किसी से, घृणा ना दुर्भावना, ऐसी सारी भावनाओं का तू आके दमन कर। ऐसी सारी भावनाओं का तू आके दमन कर। ऐसी सारी भावनाओं का तू आके दमन कर। और पंक्तियाँ दे रहा हूँ कि राजीव राजू घर को भी, राजू के घर को भी माँ तू स्वर्ग से सुंदर बना। राजू के घर को भी माँ तू स्वर्ग से सुंदर बना, हमको आशीर्वाद दे माँ इसी घर में सहन कर। हमको आशीर्वाद दे माँ इसी घर में सहन कर, बिगड़ी सबकी तू बना उजले हुओं को चमक।

बहुत और दूसरा मुक्तक दे रहा हूँ कि हम अपने बड़ों से तो बड़े हो नहीं सकते, हम अपने बड़ों से तो बड़े हो नहीं सकते और उनके बराबर में भी खड़े हो नहीं सकते। हम अपने बड़ों से तो बड़े हो नहीं सकते, उनके बराबर में भी खड़े हो नहीं सकते। हम सभ्यता की संस्कृति में रचे बसे हैं, हम सभ्यता की संस्कृति में रचे बसे हैं, इसलिए बिन पैंदी के घड़े हो नहीं सकते, इसलिए बिन पैंदी के घड़े हो नहीं सकते। एक मुक्तक और के, औपचारिकता बस किसी को रोका नहीं करते, औपचारिकता बस किसी को रोका नहीं करते, जाते हुए इंसान को टोका नहीं करते। औपचारिकता बस किसी को रोका नहीं करते, जाते हुए इंसान को टोका नहीं करते। अरे पशु पक्षियों से सीख लें जीने का सलीका, पशु पक्षियों से सीख लें जीने का सलीका, एक दूसरे से ये कभी धोखा नहीं करते, एक दूसरे से ये कभी धोखा नहीं करते, धोखा नहीं करते। अगला मुक्तक देखिए, कर्म ही कर्मों का परिणाम दिलाता है। कन्या की विदाई के समय की ये मुक्तक लिखा है मैंने कि कर्म ही कर्मों का परिणाम दिलाता है, मर्म ही मर्मों का परिणाम बताता है। कर्म ही कर्मों का परिणाम दिलाता है और मर्म ही मर्मों का परिणाम बताता है। पढ़ने की बेला में एक प्रण भी निहित है, पढ़ने की बेला में एक प्रण भी निहित है, जो दाम्पत्य जीवन के परिणाम सिखाता है, जो दाम्पत्य जीवन के परिणाम सिखाता है, जो दाम्पत्य जीवन के परिणाम सिखाता है। और मुक्तक देखिए के, जैसे तूफान में पतवार भी काम न आए, जैसे तूफान में पतवार भी काम न आए, ऐसे ही झूठे व्यक्ति का एतबार भी काम न आए। हम तो उनकी याद में रोते रहे थे रात भर, हम तो उनकी याद में रोते रहे थे रात भर, मगर हमारे आंसुओं के हथियार भी काम न आए, मगर हमारे आंसुओं के हथियार भी काम न आए। और एक गीत का प्रस्तुत कर रहा हूँ,

0: खुशमुख टकोर के स्वाभिमान पर पड़े दाग कभी छूटते नहीं, स्वाभिमान पर पड़े दाग कभी छूटते नहीं और दिल पर लगे घाव कभी फूटते नहीं, दिल पर लगे घाव कभी फूटते नहीं, हर रस्म की अदायगी हो तौर तरीके से, हर रस्म की अदायगी हो तौर तरीके से, कंठ स्वर के भाव कभी टूटते नहीं, कंठ स्वर के भाव कभी टूटते नहीं, कंठ स्वर के भाव कभी टूटते नहीं, कि अच्छे लोग हमेशा, अच्छे लोग हमेशा अच्छाइयां साथ रखते हैं, अच्छे लोग हमेशा अच्छाइयां साथ रखते हैं, बुरे लोग हमेशा बुराइयां साथ रखते हैं, बुरे लोग हमेशा बुराइयां साथ रखते हैं, और किसी की बात किसी से चुगली नहीं करना, किसी की बात किसी से चुगली नहीं करना, चतुर लोग हमेशा चतुराइयां साथ रखते हैं, चतुर लोग हमेशा चतुराइयां साथ रखते हैं।
1: काव्यधारा में अभी आपने सुना राजेश मिश्रा से काव्य पाठ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में उसके बाद हिंदी में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: लीजिए सुनिए संस्कृत में समाचार।
3: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ह्यः आईआईटी दिल्ली इति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य विद्यार्थिनः समाकारिताः यत्ते स्वनिर्णयेषु राष्ट्रहितं सर्वोपरि स्थापयन्तु। आईआईटी दिल्ली इत्यस्य 57वें दीक्षांत समारोहं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् प्रत्येकं संततिः तात्कालिकं विशिष्टं समाह्वानं सम्मुखीकरोति, स्वस्य राष्ट्रीय दायित्वं च निर्वहति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् देशे नूतनानां क्षेत्राणां विकासेन युवभ्यः नूतनाः अवसराः सृज्यन्ते। सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष ड्रोन इत्यादीनां क्षेत्राणां उदाहरणानि उद्धृत्य सः अवदत् यत् भारतं सर्वेषु क्षेत्रेषु आत्मनिर्भरता प्राप्तये कार्यं कुर्वन्नस्ति। श्रीमोदी अवदत् यत् आत्मनिर्भरतायाः अयम् उपक्रमः विकसित भारतस्य निर्माणार्थं दृढाधारस्य कार्यं करिष्यति। अर्धचालक क्षेत्रम् अपि उदाहरणम् अस्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा आईआईटी दिल्ली इत्यत्र परम प्रज्ञा इति उच्च दक्षतायुक्तस्य संगण सौविध्यस्य उद्घाटनमपि कृतम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ह्यः अमेरिका देशस्य उपराष्ट्रपतिना जेडी वेन्स इत्यनेन सह दूरभाषमाध्यमेन वार्ता कृता। एकस्मिन् सामाजिकान्तरजालीये

0: श्रीमोदी अवदत् यत् तौ प्रमुखेषु क्षेत्रेषु भारत अमेरिका समग्र वैश्विक सामरिक सहभागिताम् इतोपि सुदृढं कर्तुम् उपायेषु चर्चितवन्तौ। उभौ उच्चस्तरीय कार्येषु निरन्तरगतिं दृष्टवन्तौ, अपि च व्यापारस्य रक्षायाः महत्वपूर्ण उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीनाम्, ऊर्जासुरक्षायाः महत्वपूर्ण खनिजानां च क्षेत्रेषु सहकारम् इतोपि सुदृढं कर्तुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ। उभौ नेतारौ परस्पर हितस्य, क्षेत्रीयस्य, वैश्विकस्य च विकास विषये अपि विचाराणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। हरघर तिरंगा इत्यभियानम् अद्यारभ्य अस्मिन् मासे 17 दिनांक पर्यन्तं च प्रचलिष्यति। राष्ट्रध्वजारोहणार्थं नागरिकान् प्रोत्साहयितुं देशभक्तिं, राष्ट्र ऐक्यं, भारतस्य सांस्कृतिक परम्पराम् च आचरितुं, कार्यक्रमेषु भागग्रहीतुं च अस्य उपक्रमस्य उद्देश्यः अस्ति। 2022 वर्षे आजादी का अमृत महोत्सवस्य अंशरूपेण आरब्धम् एतत् अभियानम् ततः परं देशस्य बृहत्तमेषु जनसहभागित्व आन्दोलनेषु अन्यतमम् अभवत्। वर्षानुवर्षेषु एतत् यथार्थ जनान्दोलनत्वेन परिवर्तितम्, यत् भारतस्य एकतायाः, सम्मानस्य, सामूहिक राष्ट्रिय अस्मितायाः च प्रतीकरूपेण त्रिवर्णध्वजम् आचरितुं प्रदेशेषु, समुदायेषु च नागरिकान् प्रेरयति। अस्य वर्षस्य अभियानस्य विशिष्टं महत्वं वर्तते यत् एतत् भारतस्य राष्ट्रियगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य 150वें वार्षिकोत्सवस्य संयोगेन भवति, यत् राष्ट्रध्वजं, राष्ट्रगीतं च देशभक्तिविशेषस्य उत्सवे सङ्गृह्यति। उत्सवस्यांशरूपेण सम्पूर्णे देशे वन्दे मातरम् इत्यस्य सामूहिकगायनस्य आयोजनं भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः अद्य श्रीविजयपुरम् नगरस्य फ्लैग पॉइंट इत्यत्र हरघर तिरंगा अभियाने भागं स्वीकृत्य राष्ट्रध्वजम् उत्तोलयिष्यति। उपराष्ट्रपतिः ह्यः अण्डमान निकोबार द्वीपानां द्विदिवसीय यात्रायै श्रीविजयपुरम् नगरे सम्प्राप्तवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति राष्ट्रपति आरक्षक वर्ण प्रदान समारोहे भागं ग्रहीष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 अगस्त तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इसका विशेष महत्व है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कल आबिजान में कोट डी आइवर के राष्ट्रपति अलासाने ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोट डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। श्री सिंह ने अफ्रीका के साथ मजबूत और व्यापक संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोट

0: आइवर की लंबे समय से चली आ रही मित्रता को और मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुदुचेरी के गोरीमेडु के पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। श्री शाह मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी झंडे दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह दो दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी की है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं। इनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ले रखी है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोका गया है। कल जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1,202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों के काफिले में जम्मू के लिए रवाना किया गया। कल श्री अमरनाथ जी गुफा में 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। चीन के हिफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोशिया के एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। मैच दक्षिण कोरिया के आसन में कुछ देर बाद 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है लहसुन एक गुणकारी औषधि।
2: रोगियों के लिए वास्तव में लहसुन अमृत जैसा ही है। भारत में भी 732 हृदय रोगियों को वैज्ञानिकों ने 3 वर्ष तक अपनी निगरानी में रखा। इन सभी रोगियों को 2 समूह में बांटा। पहले समूह को साधारण आहार व दवाएं दी गईं तथा दूसरे समूह के लोगों को आहार व दवाओं के अलावा दूध के साथ लहसुन का रस भी पीने को दिया गया। इसके जो परिणाम सामने आए वह काफी सुखद थे। लहसुन के रस का सेवन करने वाले हृदय रोगियों का रक्तचाप सामान्य होने के साथ ही साथ उनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बहुत कम पाई गई। हृदय रोग के अलावा भी बहुत से रोगों को दूर करने वाला लहसुन रसोन के भी नाम से जाना जाता है। लंबे पतले और चपटे पत्तों वाला लहसुन का पौधा लगभग 1 से 2 फुट की ऊंचाई वाला होता है। इस पौधे पर सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं जो गुच्छे की शक्ल में पाए जाते हैं। गुच्छे रूपी फूलों के बाद इस पर लगने वाला कंद जिसे लहसुन कहते हैं वह भी सफ़ेद रंग का ही होता है। आयुर्वेद के अनुसार लहसुन में तिक्त कटु कषाय लवण और मधुर 5 प्रमुख रस होते हैं। लहसुन की एक विशेष प्रजाति में एक गांठ में ही एक ही लहसुन पाया जाता है। यह प्रमुखता औषधि के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। लहसुन में एक विशेष प्रकार का तेल भी पाया जाता है जो उड़नशील होता है। तेल के अलावा गंधक का यौगिक भी लहसुन में पाया जाता है। लहसुन के ढेर सारे गुणों के कारण ही यह आम मान्यता है कि यदि प्रतिदिन सुबह एक कली लहसुन का सेवन किया जाए तो बहुत से रोगों से अपने आप ही बचाव हो जाता है। लहसुन का

0: नित्य प्रयोग मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है और स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होती है। नेत्र संबंधी रोग भी लहसुन के प्रयोग से दूर हो जाते हैं। लहसुन का महत्व रक्त ताकत और वीर्य की वृद्धि के लिए भी माना जाता है। इन सब के अलावा शूल श्वास संबंधी रोग, जोड़ों के दर्द, कब्ज, अरुचि, सूजन, खांसी, जीर्ण, स्वर, पक्षाघात, कब्ज तथा पेट में अफारा जैसी तमाम छोटी बड़ी बीमारियों में लहसुन का प्रयोग अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। कुछ समय पूर्व तक लोगों का मानना था कि लहसुन को अगर कच्चा ही खाया जाए तभी वह अधिक लाभ पहुंचाता है, परंतु वैज्ञानिकों ने इस मान्यता को निराधार घोषित किया है। जो लोग लहसुन की तीख गंध और स्वाद को बर्दाश्त नहीं कर पाते वे इसका प्रयोग रस निकालकर या गोलियों के रूप में भी करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गले में सूजन या कोई अन्य रोग हो तो गुनगुने पानी में लहसुन का प्रयोग अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। सीने में कफ जमा हो, खांसी या जुखाम से पीड़ित हो तो लहसुन को सरसों के तेल में अच्छी तरह पका लें और गुनगुना रह जाने पर इस तेल को सीने, पीठ और पेट पर अच्छी तरह लगाकर मले। यह बहुत पुराना तथा अजमाया हुआ नुस्खा है। चर्म रोग होने की दशा में लहसुन के रस को चर्म रोग वाले स्थान पर लगाने से शीघ्र ही रोग जड़ से नष्ट हो जाता है। रोजाना सुबह के समय ताजे मक्खन के साथ लहसुन की एक कली का सेवन करने से पक्षाघात के रोगी को ठीक होने में बहुत मदद मिलती है। तिल अथवा सरसों के तेल के साथ पकाकर बनाए गए तेल की मालिश शरीर में हुई सूजन और दर्द को दूर कर राहत को पहुंचाती है। साथ ही साथ इसकी मालिश जोड़ों के दर्द को भी दूर करती है। अब तो लहसुन की गोलियां दवाओं के दुकानों पर उपलब्ध हैं, जो लहसुन के सभी गुणों का लाभ बिना किसी अप्रिय गंध या स्वाद के पहुंचाती हैं। लहसुन के गुणों की एक लंबी फहरिस्त है, फिर भी कुछ लोगों को अपनी तीक्ष्ण और उष्ण प्रकृति के कारण ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। गर्भवती स्त्रियों के लिए कच्चे लहसुन का प्रयोग अहितकर साबित हो सकता है।
1: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे जानकारी, विषय था लहसुन एक गुणकारी औषधि। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है गेंदा की वैज्ञानिक खेती।
2: किसान भाइयों राम राम। खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका भाई प्रमोद सिंह। आज जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका विषय है गेंदा की वैज्ञानिक खेती। किसान भाइयों, गेंदा एक ऐसा पुष्प है जिसकी मांग पूरे वर्ष बनी रहती है। धार्मिक आयोजनों, विवाह समारोहों, त्योहारों, सजावट और मालाओं के निर्माण में इसका व्यापक उपयोग होता है। कम लागत, कम अवधि और अच्छा बाजार मूल्य मिलने के कारण गेंदा किसानों के लिए लाभदायक नकदी फसल बन चुका है। यदि इसकी खेती वैज्ञानिक विधि से की जाए तो किसान कम समय में अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, गेंदा की खेती के लिए ऐसी भूमि सबसे उपयुक्त मानी जाती है जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। दोमट या बलुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान लगभग 6.5 से 7.5 हो, इस फसल के लिए उत्तम रहती है। खेत की 2 से 3 बार अच्छी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें और अंतिम जुताई के समय अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें मिला दें। इससे पौधों की प्रारंभिक वृद्धि अच्छी होती है। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं गेंदा की उन्नत किस्मों की। तो अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा देश में सबसे अधिक उगाए जाते हैं। अफ्रीकन गेंदा में बड़े आकार के फूल आते हैं जबकि फ्रेंच गेंदा छोटे लेकिन अधिक संख्या में फूल देते हैं। किसान अपने क्षेत्र की जलवायु और बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए उन्नत किस्मों का चयन कर सकते हैं। गेंदा की खेती के लिए पौध तैयार करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। बीजों की बुआई ऊंची और अच्छी जल निकासी वाली नर्सरी में करनी चाहिए जबकि 25 से 30 दिनों में पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। रोपाई के समय पौधों से पौधों की दूरी लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। उचित दूरी रखने से पौधों का विकास अच्छा होता है और रोगों का प्रकोप भी कम होता है। किसान भाइयों, उर्वरक प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। खेत की तैयारी के समय गोबर की सड़ी हुई खाद अवश्य डालें। इसके साथ साथ मिट्टी परीक्षण के आधार पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का संतुलित उपयोग करें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा रोपाई के समय और शेष मात्रा लगभग एक महीने के बाद देने से पौधों की वृद्धि और फूलों की संख्या बढ़ती है। किसान भाइयों, सिंचाई का भी महत्वपूर्ण स्थान है। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर दें। इसके बाद मौसम और मिट्टी की नमी के अनुसार 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। वर्षा ऋतु में खेत में पानी का जमाव बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इससे जड़ों में सड़न की समस्या उत्पन्न हो सकती है। किसान भाइयों, अधिक फूल प्राप्त करने के लिए पौधों की पिंचिंग अर्थात शीर्ष कलिका को हटाना एक उपयोगी तकनीक है। रोपाई के लगभग 30 से 35 दिन के बाद पौधों की ऊपरी बढ़वार को हल्का तोड़ देने से अधिक शाखाएं निकलती हैं और फूलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। खरपतवार नियंत्रण भी आवश्यक है। समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें, जिससे खेत साफ रहे और पौधों को पर्याप्त पोषक तत्व मिल सकें। इससे मिट्टी में वायु संचार भी अच्छा बना रहता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कीट और रोग प्रबंधन की। गेंदा की फसल में माहू, थ्रिप्स और इल्ली जैसे कीट नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं झुलसा रोग, पत्ती धब्बा और सड़न गलन जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। इनसे बचाव के लिए खेत की नियमित निगरानी करें, रोगग्रस्त पौधों को हटाएं और कृषि विशेषज्ञ या कृषि विभाग की सलाह के अनुसार ही अनुशंसित दवाओं का प्रयोग करें। समेकित कीट और रोग प्रबंधन अपनाने से उत्पादन लागत कम होती है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। गेंदे के फूल सामान्यतः रोपाई के लगभग 60 से 70 दिन के बाद में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। फूलों की तुड़ाई सुबह या शाम के समय करनी चाहिए। ताजे और पूर्ण विकसित फूलों को सावधानी पूर्वक तोड़कर छायादार स्थान पर रखें। तो किसान भाइयों, यदि आप भी गेंदा की खेती करना चाहते हैं तो आप भी वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर गेंदा की अच्छी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर खेतीबाड़ी से संबंधित अन्य विषयों की जानकारी लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, राम राम।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानकारी, विषय था गेंदा की वैज्ञानिक खेती। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी।

अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे नेशनल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर रात्रि 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। गीत संध्या कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे और एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा 8:30 पर। अदबी दुनिया के अंतर्गत शाम 7:50 पर कलामी शायर होंगे अलमास रोमानी। सुगम संगीत कार्यक्रम में शाम 7:32 पर सुनेगा फरीदा खानुम की गाये गजलें। विविधा कार्यक्रम में शाम 6:45 पर सुनेगा श्रीमती चंद्रकला देवी से कहानी, शीर्षक होगा एक जज का न्याय। छाया गीत आप सुनेंगे शाम 6:55 पर। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर सुनेगा मुकेश कुमार, सहायक विकास अधिकारी कृषि ब्लॉक कोतवाली बिजनौर से जितेंद्र कुमार की बातचीत, विषय होगा उर्द व मूंग की फसल में समसामयिक कार्य। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा गन्ना बधाई का महत्व और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज क्रम होगा कुछ खास है आज झलकी, और साथ ही आप सुनेंगे 80वें स्वतंत्रता दिवस के रनअप पर विशेष कार्यक्रम अल्लूरी सीताराम राजू। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे फिल्म संगीत। मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में शाम 5 बजे किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकारी उपाय के अंतर्गत जानकारी दी जाएगी, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर। एक और अनेक कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर सुनिएगा गीतकार नक्श लयालपुरी और अन्य के लिखे कुछ गीत। लोकधारा का

0: कार्यक्रम में दोपहर 1:45 पर सुनिएगा बनारसी लाल झोरी के गाए राजस्थानी लोकगीत। बाल वाटिका कार्यक्रम में दोपहर 1:15 पर क्रम होगा महान विभूति क्रम में। इसमें सुनिएगा महान स्वतंत्रता सेनानी भीकाजी कामा को के विषय में जानकारी। साथ ही आप सुनेंगे बाल मुख से कार्यक्रम। आओ जाने क्रम में आप सुनेंगे रोचक जानकारियां और चर्चा का विषय होगा सफलता का चिराग परिश्रम से जलता है। जानकारी का विषय होगा नागासाकी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, शहादत और बलिदान का प्रतीक स्वतंत्रता दिवस। फिल्मी संडे कार्यक्रम दोपहर 12:30 पर और आपका पत्र मिला कार्यक्रम दोपहर 12:05 पर। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:18 होने को है। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई निरीक्षण कर मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा, कहा कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैयार है सरकार। उपभोक्ताओं के लिए निशुल्क रहेगा UPI, केंद्र सरकार ने किया स्पष्ट, सभी व्यक्तिगत लेन देन बने रहेंगे निःशुल्क। हर स्कूल में वाहन अटेंडेंट रखना होगा अनिवार्य, बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन आयुक्त ने सभी विद्यालयों के प्रबंधकों को जारी किया पत्र। और पहाड़ी इलाकों में बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों के जल स्तर में वृद्धि, अगले 2 दिनों के लिए कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मेरठ के मोदीपुरम क्षेत्र में एक मंच से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इस अवसर पर मेरठ के सांसद अरुण गोविल समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी कांवड़ यात्रियों पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाईं। इसके साथ ही पूरे कांवड़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर से सभी शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को कांवड़ यात्रियों की नियमित सुरक्षा, सम्मान, सुविधा आदि की समुचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार पूरी तत्परता से कांवड़ यात्रियों के स्वागत और सुरक्षा के लिए तैयार है।
4: कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी कांवड़ यात्रियों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूँ, उन सबका अभिनंदन करता हूँ।

0: के सुरक्षा के लिए और उनके स्वागत के लिए हम सब पूरी तत्परता के साथ तैयार हैं।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन सेक्टर मजिस्ट्रेट ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पुलिसकर्मी जोन रेंज जनपद थाना स्तर के साथ ही तमाम पुलिस अधिकारी भी अभियान का हिस्सा बनकर सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वह मुख्यमंत्री आवास से लेकर विधान भवन तक निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर देशभक्ति का संदेश देते हुए अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। तिरंगा यात्रा के उपरांत मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेनानियों अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र नाथ लाहड़ी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए काकोरी शहीद स्मारक जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर बाद सिद्धार्थनगर जिले में डुमरियागंज और बांसी विधानसभा क्षेत्रों के लिए करीब 311 करोड़ रुपए की 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल कल आगरा में दो दिवसीय एआई फ्यूचर रेडी कॉन्क्लेव 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा,
2: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच अनुरूप कार्य जो हो रहा है कि धरातल पर इसका प्रभाव दिखाई दे, कृषि से लेकर स्वास्थ्य से लेकर छोटे मध्यम उद्योग और तमाम ऐसी जगहों पे एआई का इस्तेमाल करते हुए भारत कैसे आगे बढ़ेगा और ख़ास तौर से हमारे युवा इन प्रतिभा मैंने देखी, ये जो छात्र छात्राएँ हैं कॉलेजेस में उनको एआई के लिए क्या सरकार प्रोत्साहन दे रही है उसके बारे में जानकारी दी।
1: केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि एआई के बिना भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता।
3: एआई का भविष्य क्या है, हमें कितना इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और इसके बिना भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है, विशेषज्ञों ने अपने विचार देखे, इस वैचारिक मंथन से अमृत निकलेगा वो भारत को प्रधानमंत्री का विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को पूरा।
1: कार्यक्रम में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी शामिल हुए। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निशुल्क रखेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो यह केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाम मात्र दर से लागू होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। स्कूल जाने वाले 12 वर्ष तक के बच्चों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने नई पहल की है। ऐसे बच्चों को लाने ले जाने वाले हर स्कूल वाहन में अटेंडेंट यानी परिचारक या परिचारिका रखना अनिवार्य होगा, जो बच्चों को वाहन में सुरक्षित चढ़ाने और उतारने की जिम्मेदारी संभालेगा। इसे लेकर परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने प्रदेश के सभी विद्यालयों के प्रबंधकों को पत्र जारी किया है। पत्र में स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश भी दिए गए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल प्रयागराज में केपी ग्राउंड में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए देश के विकास में युवाओं की सहभागिता को लेकर चर्चा की। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल लखनऊ में CSIR NBRI के बंथरा कैंपस में इको एजुकेशनल हब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह इको एजुकेशन हब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस परिकल्पना को साकार करता है जिसमें विज्ञान सतत विकास और जन भागीदारी को एकीकृत करते हुए देश की वनस्पतिक धरोहर को भावी पीढ़ी

0: के लिए संरक्षित किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह केंद्र विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और प्रकृति प्रेमियों के लिए पर्यावरण शिक्षा, जैव विविधता संरक्षण तथा अनुभवात्मक अधिगम का अनूठा मंच सिद्ध होगा।
1: प्रत्येक प्रदेश के पौधे भी लगाए गए हैं, वो चाहें तो आकर के अपने प्रदेश के पौधे के साथ खड़े होकर के तस्वीर खिंचवा सकते हैं, सेल्फी खिंचवा सकते हैं। दूसरे विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर के यहाँ विधिवत PhD और दूसरी तरह के अध्ययन कोर्सेज की भी व्यवस्था की जा सकती है।
0: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल प्रयागराज में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जनपद एवं क्षेत्र से जुड़े विभिन्न स्थानीय विषयों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं, जनहित से जुड़े विषयों तथा स्थानीय स्तर पर सामने आ रही समस्याओं की जानकारी प्राप्त की और संबंधित अधिकारियों को प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कल बस्ती में जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों से उनके इलाज और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि
2: मरीजों को अभी तक वातानुकूलित सेवाएं वहां उपलब्ध नहीं थी, तत्काल AC लगाए जाने के निर्देश दिए, पूरे वार्ड को वातानुकूलित किया जाए। इसके लिए धनराशि रोगी कल्याण निधि में उपलब्ध है। अस्पताल परिसर की पूरी मरम्मत किया जाए, सड़कें जो टूटी हैं बनाई जाए।
0: प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने मऊ में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय कल्पनाथ राय की पुण्यतिथि पर 5 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि करीब 16 करोड़ रुपए की इस परियोजना से मऊ में स्वच्छ एवं सस्ती विद्युत की उपलब्धता बढ़ेगी। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। घाघरा नदी बाराबंकी में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बदायूं और फर्रुखाबाद में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान से पास बह रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई निरीक्षण कर मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा, कहा कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैयार है सरकार। उपभोक्ताओं के लिए निशुल्क रहेगा UPI, केंद्र सरकार ने किया स्पष्ट, सभी व्यक्तिगत लेन देन बने रहेंगे निशुल्क। हर स्कूल वाहन में अटेंडेंट रखना होगा अनिवार्य। बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन आयुक्त ने सभी विद्यालयों के प्रबंधकों को जारी किया पत्र। और पहाड़ी इलाकों में बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि, अगले 2 दिनों के लिए कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
5: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को ज्योति गौड़ का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज का दिन बेहद खास है। जी हाँ, आज का दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस आंदोलन की जिसने अंग्रेजी हुकूमत को ये स्पष्ट संदेश दे दिया था कि अब भारत की जनता आजादी से कम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अगस्त क्रांति यानी भारत छोड़ो आंदोलन की। 8 अगस्त 1942 को बंबई, जिसे आज मुंबई के नाम से जानते हैं, में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। इसके अगले दिन 9 अगस्त 1942 से आंदोलन ने देश भर में व्यापक रूप ले लिया। महात्मा गांधी ने देशवासियों को स्पष्ट संदेश दिया, करो या मरो। ये आह्वान भारत की जनता के लिए संघर्ष और संकल्प का प्रतीक बन गया। अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए अनेक राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी आंदोलन नहीं रुका। विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों ने जगह जगह प्रदर्शन किए और स्वतंत्रता की आवाज बुलंद की। अरुणा आसफ अली जैसी महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भूमिगत आंदोलन के माध्यम से भी स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश शासन का विरोध जारी रखा। अगस्त क्रांति का सबसे बड़ा संदेश था, स्वतंत्रता अब दूर का सपना नहीं बल्कि भारत की तत्काल आवश्यकता है। तो आइए, अगस्त क्रांति दिवस पर हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करें जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनकी कुर्बानी हमें आज भी याद दिलाती है कि देश की स्वतंत्रता अनेक संघर्षों, त्याग और बलिदान का परिणाम है। और श्रोताओं, इसी के साथ आज हम आपको स्वतंत्रता संग्राम के उस साहसिक अध्याय से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने वाले क्रांतिकारियों के अदम्य साहस और देश प्रेम की कहानी लिखी। ये कहानी है काकोरी कांड की। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने लखनऊ के निकट काकोरी के पास सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को रोककर सरकारी धन पर कब्जा किया। इस कार्रवाई का उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष को मजबूत करना था। इस अभियान में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह सहित कई क्रांतिकारी जुड़े थे। काकोरी की घटना के बाद अंग्रेजी सरकार ने क्रांतिकारियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू की। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मुकदमे में कई क्रांतिकारियों को कठोर सजाएं भी दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां साथ में रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई। काकोरी कांड केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि भारतीय युवाओं के साहस, संगठन और देशभक्ति का प्रतीक बन गया। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां की मित्रता भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की उस भावना को दर्शाती है जिसमें धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश की आजादी को सर्वोच्च स्थान दिया। आज काकोरी के उन अमर क्रांतिकारियों को याद करते हुए हम यही कह सकते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दिया, उनका बलिदान भारत कभी नहीं भूल सकता।

0: ऐतिहासिक घटना को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि यह है हमें शांति, मानवता और युद्ध के विनाशकारी परिणामों के बारे में सोचने का अवसर देता है। 9 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया गया। इस त्रासदी ने हजारों लोगों की जान ले ली और आने वाली पीढ़ियों तक इसके दुष्प्रभाव दिखाई दिए। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन यानी एक प्लेटिनम बम अमेरिकी B-29 बम वर्षक विमान से गिराया गया, जिससे हजारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और साल के अंत तक कुल मृतकों की संख्या 75,000 से अधिक हो गई थी। इस दिन लोग खोई हुई निर्दोष जिंदगियों को याद करते हैं और जीवित बचे लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्हें हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है। यह दिन परमाणु हथियारों की भयावह और विनाशकारी शक्ति के खिलाफ एक वैश्विक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। साथ ही यह देशों को परमाणु खतरे से मुक्त एक शांतिपूर्वक दुनिया की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। आज जब हम नागासाकी को याद करते हैं तो हमारा संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि युद्ध किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं, बल्कि मानवता के लिए बड़ी त्रासदी है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: और श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और आइए अब बात करते हैं विश्व आदिवासी दिवस यानी स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। विश्व आदिवासी दिवस यानी स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रकृति, संस्कृति, परंपरा और अपनी विशिष्ट पहचान को संजोकर रखने वाले आदिवासी समुदायों के सम्मान का दिन है। हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने आदिवासी समुदायों के अधिकारों, उनकी संस्कृति और उनके योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस दिवस को महत्वपूर्ण स्थान दिया। भारत की बात करें तो हमारे देश में आदिवासी समुदायों की समृद्ध और विविध परंपराएं सदियों से हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रही हैं। उनकी अपनी भाषाएं, लोकगीत, लोक नृत्य, कला, वेशभूषा, रीति रिवाज और जीवन शैली हमारी संस्कृति को और समृद्ध बनाते हैं। विश्व आदिवासी दिवस हर वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से हुई। 9 अगस्त 1942 को जनेवा में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंतर्गत आदिवासी आबादी से संबंधित कार्यकारी समूह की पहली बैठक हुई थी। इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में आगे चलकर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 दिसंबर 1994 को स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा 9 अगस्त की तारीख को की। इसके बाद वर्ष 1995 में यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। इस दिवस को मनाया जाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के आदिवासी समुदायों के अधिकारों, संस्कृति, परंपराओं, भाषाओं और उनकी सामाजिक एवं आर्थिक योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही यह दिन आदिवासी समुदायों के सामने मौजूद चुनौतियों और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास करने का अवसर भी प्रदान करता है।

कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आइए आपको अवगत कराते हैं 9 अगस्त को घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं से। 9 अगस्त को वैसे तो देश और दुनिया में अनेकों घटनाएं घटी, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम आपको बता रहे हैं। 9 अगस्त 1971 को भारत पाकिस्तान मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए। 9 अगस्त 2005 को नासा का मानवयुक्त अंतरिक्षयान डिस्कवरी 14 दिन की अपनी साहसिक और जोखिम भरी यात्रा के बाद कैलिफोर्निया स्थित एयरबेस पर सकुशल उतरा। 9 अगस्त 2006 को नेपाल सरकार और माओवादियों के बीच संयुक्त राष्ट्र निगरानी मुद्दे पर सहमति बनी। 9 अगस्त 2007 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मरम्मत के महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों की टीम अंतरिक्ष यान एवेंडर अपने अभियान पर निकला। और 9 अगस्त 2012 को भारतीय सेना ने 9 अगस्त 2012 को परमाणु हमले करने में सक्षम अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और 9 अगस्त 1910 को आज ही की तारीख को अमेरिकी इंजीनियर अल्वा जे फिशर को इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन के ड्राइव मैगजीन्स का अमेरिकी पेटेंट मिला। इस तकनीक ने कपड़े धोने की प्रक्रिया को अधिक आसान, तेज और सुविधाजनक बनाया तथा आधुनिक मशीन वॉशिंग मशीन के विकास की नींव रखी। और आइए अब आपको बताते हैं 9 अगस्त को किन महान व्यक्तियों ने जन्म लिया। 9 अगस्त 1892 को जन्म हुआ विख्यात पुस्तकालय अध्यक्ष और शिक्षा शास्त्री

0: SR रंगनाथन का। SR रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने 4 जनवरी 1924 को मद्रास विश्वविद्यालय में प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था और पुस्तकालय कार्य शैली को आधुनिक बनाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। 9 अगस्त 1974 को जन्म हुआ भारतीय फिल्म अभिनेता महेश बाबू का और 9 अगस्त 1991 को जन्म हुआ भारतीय अभिनेत्री हंसिका मोटवानी का और 9 अगस्त 1954 को जन्म हुआ भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी अशोक तिवान का और 9 अगस्त को ही हिंदी व भोजपुरी साहित्य के अग्रणी साहित्यकार आचार्य शिव पूजन सहाय का जन्म भी 9 अगस्त 1893 को आज ही की तारीख को बिहार के बक्सर जिले में हुआ था। उन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध और संपादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनका प्रसिद्ध उपन्यास देहाती दुनिया हिंदी का पहला महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास माना जाता है, जिसमें ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण मिलता है। उन्होंने मतवाला, माधुरी, गंगा और हिमालय जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन कर अनेक नए लेखकों को मंच दिया। उनकी भाषा सरल, सहज और लोक जीवन से जुड़ी थी। 21 जनवरी 1963 को उनका निधन हो गया। और आइए अब आपको बताते हैं 9 अगस्त को किन महान लोगों ने संसार को अलविदा कह दिया। 9 अगस्त 2016 को अरुणाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल संसार को अलविदा कह गए और 9 अगस्त 2002 को प्रसिद्ध कथावाचक और हिंदी साहित्यकार रामकिंकर उपाध्याय भी संसार को अलविदा कह गए।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाना चाहते हैं
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: और श्रोताओं, आइए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर, जहां हम आपको अवगत कराते हैं अखबार की चंद सुर्खियों से। शुरुआत कर रहे हैं अमर उजाला के साथ। तो अमर उजाला की सुर्खी है, कंधों पर कलश, दिल में आस्था और आंखों में मनोकामना। शिव भक्त अपने अपने तरीकों से पवित्र गंगा में श्रद्धा का गोता लगाकर महादेव को खुश करने में जुट गए हैं। इसी क्रम में 11 कांवड़ में 551 लीटर जल यानी कि गंगा जल भरकर नगीना के रामलीला बाग स्थित देवी मंदिर पहुंचे रुद्रपुर के 22 कांवड़ियों का जत्था देर शाम यहां पहुंचा तो श्रद्धालुओं ने पूरे भक्तिभाव से उनका स्वागत किया। अमर उजाला की एक और सुर्खी है, जिले जिले स्कूलों व कॉलेजों में संवाद करेंगे IAS IPS देंगे सुझाव। जैनजी आंदोलन के बाद केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार तक जैनजी और जैन अल्फा से संवाद की कवायद के बीच माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उनसे जुड़ने की पहल की है। इसके तहत जिलों में तैनात IAS IPS और IFS अधिकारी हर माह कम से कम एक इंटर कॉलेज में छात्रों से संवाद करेंगे। उन्हें करियर गाइडेंस और प्रतियोगी परीक्षाओं, कौशल विकास, स्वरोजगार, जीवन कौशल और स्टार्टअप की जानकारी देंगे। रुक करें दैनिक जागरण की ओर, तो दैनिक जागरण लिखता है, खेल खिलौने संग वीडियोग्राफी भी करेंगे बच्चे। लगातार 10 शनिवार परिषदीय स्कूलों के नौनिहालों को स्कूल बैग से मुक्ति मिलेगी। अगस्त से नवंबर तक परिषदीय स्कूलों में बैगलेस दिवस चलेगा। हर शनिवार को बच्चे तरह तरह की एक्टिविटीज का ज्ञान अर्जित करेंगे। बस्ते से मुक्ति के बाद बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाएंगे तो कभी वीडियोग्राफी और कभी फोटोग्राफी करेंगे। प्रत्येक जूनियर व कंपोजिट स्कूल के लिए बजट जारी हो गया है। ये खबर हमने ली थी हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान की ही एक और सुर्खी है, कांवड़ यात्रा एकता का प्रतीक। पावन श्रावण मास में चल रही कांवड़ यात्रा में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण

करते हुए मेरठ में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। दिल्ली देहरादून हाईवे पर मोदीपुरम में बने मंच से मुख्यमंत्री ने करीब 20 मिनट तक शिव भक्त कांवड़ियों पर फूल बरसाए और हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यात्रा सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। यहां जाति पाति प्रांत और क्षेत्रीयता सब पीछे छूट जाता है। रुक करें दैनिक जागरण की ओर, तो दैनिक जागरण से हमने सुर्खी ली है खेल जगत से। दैनिक जागरण लिखता है, आशीष ने रजत से खोला खाता, पूजा ऊंची कूद में फाइनल में। आशीष यादव ने विश्व एथलीट्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला, जबकि राष्ट्रीय सीनियर रिकॉर्डधारी पूजा ने महिलाओं की ऊंची कूद के फाइनल में जगह बना ली। यादव ने तीसरे प्रयास में 74.09 मीटर का थ्रो किया और वहीं भारत के टी धरणीधरण ने 72.35 मीटर के थ्रो के साथ छठे स्थान पर रहे। अश्मिता पहली बार वर्ल्ड टूर के फाइनल में। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता ने कोरिया मास्टर सुपर 300 में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए शनिवार को हमवतन रक्षिता रामराज को 21-13, 16-21 और 21-13 से हराकर पहली बार BWF वर्ल्ड टूर के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली। और इसी के साथ कार्यक्रम सूरज के साथ साथ अब यहीं पर संपन्न होता है। ज्योति गौड़ को दीजिएगा आज्ञा, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जीडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 तारीख तक चलेगा।

0: इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुद्दुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
2: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगे विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने JPSC JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
4: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। IMD ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जल स्तर बढ़ने से यहां निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया की एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस की प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल ना पूछे, समाधान भी खोजे, भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जेंजी को पीएम ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जेंजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख, आरा कारा विंधी जिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में प्रकाश सिंह बादल या उनके पुत्र सुखबीर बादल की सरकार बनी, उसमें भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन अकाली जनसंघ गठजोड़ की इस विरासत में इस दौरान राज्य की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मूलभूत बदलाव भी आते रहे हैं। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाइब्रिड और ईवी कारें सस्ती होंगी, ज्यादा प्रदूषण वाली होंगी महंगी, ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, नई पॉलिसी अप्रैल 2027 से लागू होंगी। अमर उजाला की सुर्खी है, अंतरिक्ष के कचरे से होगा कारोबार, मलबा हटेगा, उपग्रहों की मरम्मत भी, एस्ट्रोस्केल क्लियर स्पेस जैसी कंपनियों ने शुरू किया काम। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से विशेष खबर में लिखा है, कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, परंपरागत के साथ आधुनिक व्यंजन भी, मुख्यमंत्री योगी ने कहा 4.5 करोड़ कावड़िए जल लेकर आएंगे, श्रद्धालु अपने इलाके में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लोकसत्य के अनुसार E20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा, ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, न घटेगी माइलेज, न खराब होगा इंजन। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार बठिंडा में हनी ट्रैप गिरोह, 23 महिलाओं समेत 28 काबू, वायुसेना अफसर ने पाक को दी सैन्य जानकारी, गिरफ्तार। दैनिक जागरण का शीर्षक है, AI ने भारत में जितनी नौकरियां घटाई उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा की, नोमुरा की रिपोर्ट में दावा, 83,100 एआई से जुड़ी नौकरियां बढ़ी, 31,921 पर पड़ा असर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप की अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभाग का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discuss ways to further strengthen comprehensive global strategic partnership in key areas. Har Ghar Tiranga campaign begins today, coinciding with 150th anniversary of India's national song Vande Mataram. Appointment of 30 judges for High Courts of Madras, Calcutta, Madhya Pradesh and Karnataka notified. Amarnath Yatra to remain suspended from both Pahalgam and Baltal routes due to repair of tracks and forecast of bad weather. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Uttarakhand and Chhattisgarh today. Saagnik Roy and Sayantan Kushari win gold medal in under 31 pairs at 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from Vice President Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Narendra Modi has said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi, yesterday, the Prime Minister cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat.
6: Aaj Bharat economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi Viksit Bharat ki majboot neev ka saboot hai.

0: PM asked students to put nation's interests over personal gains, leads Hindustan Times. Meta told to give plan to revamp algorithms, writes the Tribune. CBI charge sheet names three NTA experts as key links in NEET UG 2026 paper leak, informs the Statesman. Ladakh logs 56.15% surge in July footfall of tourists, reads a top story in the Asian Age. The paper adds, PM push gave domestic tourism boost. Ladakh's tourism sector is experiencing one of its strongest phases in recent years, with visitor numbers climbing sharply and consistently throughout 2026. The Financial Express writes, no charges for UPI users, small merchants, clarifies the government. In a piece titled Growing Old, the Statesman argues, for generations, aging was associated with restraint. People slowed down, spent less, took fewer risks and gradually ceded social and economic space to younger generations. That understanding is being overturned. Longer life expectancy, better health care and rising wealth have transformed retirement from a brief closing chapter into a life state that can last three decades. And finally, Hilsa fish spotted in Ganga near Ghazipur in UP decades after barrage cut off migration route, informs Hindustan Times. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discuss ways to further strengthen comprehensive global strategic partnership in key areas. Har Ghar Tiranga campaign begins today, coinciding with 150th anniversary of India's national song, Vande Mataram. Appointment of 30 judges for High Courts of Madras, Calcutta, Madhya Pradesh and Karnataka notified. Amarnath Yatra to remain suspended from both Pahalgam and Baltal routes due to repair of tracks and forecast of bad weather. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Uttarakhand and Chhattisgarh today. Sagnik Roy and Sayantan Koshari win gold medal in under 31 pairs at 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने अहम शोबों में जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू हो रही है। ये मुहिम भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर शुरू की जा रही है। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक हाई कोर्ट्स के लिए 30 जजों की तकरीरी को नोटिफाई किया गया है। रास्तों की मरम्मत और खराब मौसम की पेशगोई के बाईस पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से अमरनाथ यात्रा मुअत्तल रहेगी। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और सगनिक रॉय और सयांतन कुशारी ने नवे आलमी ब्रिज फेडरेशन यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में 31 बरस की उम्र वाली जोड़ी के मुकाबले में सोने का तमगा जीता। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कल अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस की जानिब से फोन कॉल मौसूल हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने अहम शोबों में भारत और अमरीका के दरमियान जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद वसत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने आला सतही रवाबित में मुसलसल पेशरफ्त का जिक्र किया और तिजारत, दिफा, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, तवानाई की यकीनी फराहमी और अहम मादनियात के शोबों में तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म जनाब मोदी ने जनाब वेंस और उनकी अहलिया उषा वेंस को बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद दी और पूरे खानदान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में नए शोबे उभर रहे हैं जो नौजवानों के लिए नए मौके फराहम कर रहे हैं। कल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली के 57वें जलसे तकसीम असनास से खिताब करते हुए उन्होंने सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन्स जैसे शोबों का जिक्र

0: आजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के नायब सदर जेटी वेंस ने अहम शोबों में जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू हो रही है। ये मुहिम भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर शुरू की जा रही है। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक हाई कोर्ट्स के लिए 30 जजों की तकरीरी को नोटिफाई किया गया है। रास्तों की मरम्मत और खराब मौसम की पेशगोई के बाइस पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से अमरनाथ यात्रा मुअत्तल रहेगी। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और सगनीक रॉय और सयातिन कुशारी ने नवे आलमी ब्रिज फेडरेशन यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में 31 बरस की उम्र वाली जोड़ी के मुकाबले में सोने का तमगा जीता। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए फिल्म द ट्रेन से।

मोहम्मद रफी का गाया ये गीत अभी आपने सुना फिल्म द ट्रेन से। संगीत आर डी बर्मन का था और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं उमराव जान से, स्वर आशा भोसले का है, संगीत खयाम का और गीत लिखा है शहरयार ने।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म उमराव जान से।

0: आएंगे हर पल चंदन का एहसास।
1: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
1: कहाँ?
2: एडमिशन कराने,
4: खाता हुआ एक्टिव।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं, फिल्म महबूब की मेहंदी से स्वर मोहम्मद रफी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

दो कलियां इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में। संगीत रवि का था और गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अनुरोध से। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने सुना अनुरोध फिल्म से ये गीत। इस गीत को संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। और लीजिए अब पेश है कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म आराधना से, आवाज है किशोर कुमार लता मंगेशकर की, संगीत SG बर्मन का और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: फिल्म आराधना के इसी गीत के साथ कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला प्रसारण सुनेंगे। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की ऐतिहासिकता, जन जागरण में भूमिका के साथ केंद्र सरकार द्वारा लाए गए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन बिल 2026 के महत्व पर जयनारायण महाविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर गिरिजेश त्रिपाठी से खास बातचीत। वार्ताकार हैं शैलेंद्र शर्मा।
2: वंदे मातरम ये केवल दो शब्द नहीं बल्कि भारत की आजादी की उस अमर गूंज का नाम है जिसने गुलामी की बेड़ियों में जकड़े करोड़ों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की अलख जगाई। यही वो उद्घोष था जिसे बुलंद करते हुए अनगिनत क्रांतिकारी फांसी के फंदे तक मुस्कुराते हुए पहुंचे। हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने लाठियां और गोलियां झेली और लाखों देशवासियों ने भारत माता की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वंदे मातरम एक बार फिर राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान यानी जनगण मन के समान कानूनी संरक्षण दिया गया है। ऐसे में ये समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतिहास में वंदे मातरम की भूमिका क्या रही, आज इसकी प्रासंगिकता क्या है और ये विधेयक देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकता है। आज इन्हीं सभी पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जयनारायण पीजी कॉलेज लखनऊ में इतिहास विभाग के प्रोफेसर गिरिजेश त्रिपाठी जी। सर आपका आकाशवाणी पर बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सैलेन जी।
2: सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि संसद में लाए गए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने की जो पहल की गई है, इतिहास और वर्तमान सामाजिक संदर्भ में आपको इसकी आवश्यकता क्यों महसूस होती?
3: देखिए सैलेन जी, आप एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं कि जब हम कानूनी रूप से किसी चीज को ले आते हैं तो वो भले ही कुछ समय के लिए हमको लगता है कि वो हमारे ऊपर एक अनुशासनात्मक कार्यवाही के तौर पे डाली गई है, लेकिन कई बार उसको फॉलो करते करते वो हमारे आदतों में, हमारे स्वभाव में कब शामिल हो जाता है हमें पता नहीं चलता है। जैसे आप मेट्रो स्टेशन पे जाएं और मेट्रो स्टेशन से ही जुड़ा हुआ बहुत सारे स्टेशन है, दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन की मैं बात करता हूं। मेट्रो स्टेशन की जो दीवारें हैं उस पे लिखा हुआ है कि थूकना मना है या कहीं इधर उधर ना थूके। वही जनता जब जाती है, रेलवे स्टेशन है अपना इंडियन रेलवे का, वहां पे ये सब चीजें नहीं लिखी है, कोई जुर्माना नहीं है, कोई कानून नहीं है। तो कई बार हम देखते हैं उस स्वभाव के उसमें है उनके कि बंदिश नहीं है, कोई कानून नहीं है, वो थूकना शुरू कर देते। तो कई बार होता क्या कि हम जब अनुशासनात्मक रूप से किसी चीज को लेते हैं, कोई चीज हमारे ऊपर व्यवस्था के रूप में डाली जाती है तो हमारे स्वभाव में आ जाती है। चूंकि वंदे मातरम कोई सामान्य दो शब्द नहीं है, अगर हम बात करें इतिहास की तो आप कहेंगे कि ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन

0: बंकिम चंद्र जी ने जब इसको लिखा है तो उसमें बंगाली भी है और संस्कृत भी है, तो ये प्योर संस्कृत भाषा का भी नहीं है, मराठी भी नहीं है, प्योर बंगाली भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है, तो ये किस भाषा का शब्द है? तो जब इसका उत्तर आप अपने अंतर्मन में तलाशेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो हमारे भारत में रहने वाले लोगों की हृदय भाषा का शब्द है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और गुजरात से लेकर आसाम तक। तो ये पूरा जो देश है, इस देश में रहने वाले विभिन्न जो भाषा भाषी लोग हैं, विभिन्न पहनावों के साथ जुड़े हुए, विभिन्न खान पान के साथ जुड़े हुए, वो इस पूरी मातृभूमि को एक देवी स्वरूप में मानकर, अपनी मातृभूमि मानकर इसकी आराधना करते हैं, इसका वंदन करते हैं, उसको ये अभिव्यक्त करने वाले दो शब्द हैं वंदे मातरम। और इसने न केवल हमको ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा संबल दिया है, वरन आजादी के लिए जब हमारा आंदोलन चल रहा था उस समय भी इन दो शब्दों ने हमको इतना प्रेरित किया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा देश, कोई ऐसा उदाहरण किसी कालखंड में आपको नहीं मिलेगा जब किन्हीं दो शब्दों ने इतना प्रभावित किया हो इतने बड़े जनमानस को, इतनी बड़ी जनसंख्या को।
1: आजादी का गान
0: जी बिल्कुल आजादी का गान बन गया। इसका उद्देश्य इतना ही है कि जब हम व्यवस्था के रूप में किसी चीज को दे देते हैं तो उसको हम बताएंगे कि ये व्यवस्था है, इसका किसी तरह से अपमान नहीं होने देना है,
1: हमारे व्यवहार में शामिल,
0: व्यवहार में शामिल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो ऐतिहासिकता भी उसके अंदर आएगी, ऐतिहासिक रूप से जो इसका महत्व था उससे भी वो जुड़ पाएगी।
1: सर बिल्कुल, आपने उसके ऐतिहासिक बात की, हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सर जानना चाहेंगे कि राष्ट्रगान जनगणमन के समान कानूनी संरक्षण देने का संदेश क्या गया है हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक चिन्हों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाने के लिए, आखिर कितना जरूरी था?
0: देखिए सलिन जी, भारतीय संविधान में बड़े स्पष्ट रूप में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों और राष्ट्रगान आदि के संदर्भ में एक व्यवस्था दी गई है, कुछ अनुच्छेद है उससे संबंध में, कि भारत के प्रत्येक नागरिक को या भारत देश में रहने वाले प्रत्येक वासी को, अगर वो नागरिक नहीं भी है, कहीं बाहर से भी आया है और भारत में रह रहा है, तो उसको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का, भारत के राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा। तो ये जो जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है, तो वो तो चूंकि जब हमारा संविधान बना तो एक व्यवस्था के रूप में उसी समय संविधान में ये चीजें लागू कर दी, लेकिन वंदे मातरम हमारी सांस्कृतिक अवचेतना का तो बहुत बड़ा मानदंड था, लेकिन वो सांस्कृतिक अवचेतना के जो ये दो शब्द हैं वंदे मातरम, तो उसमें हुआ क्या कि बाद के दिनों में जब आजादी का जो हम आंदोलन जो हमारा चला, 1947 में हम स्वतंत्र हुए, स्वाधीन हुए, उससे कुछ वर्ष पहले, लगभग मान के चलिए 20 से 25 साल पहले, कुछ दुर्भाग्यवश तुष्टिकरण का एक ऐसा दौर चला हमारे कि जिसमें धर्म और मजहब के नाम पर बहुत सारी बातें राजनीति में हमारे शामिल हो गईं, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मजहब के नाम पर हमारा देश बटा, दो टुकड़े हो गए इसके, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कारण बनते चले गए कि एक तुष्टिकरण का भाव कुछ राजनीतिज्ञों के द्वारा कहीं मजबूरी में और कहीं स्वार्थवश इसको लाया गया। तो उसी तुष्टिकरण के चलते वंदे मातरम को जो दर्जा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। देर से ही सही हमारी जो सरकार है, मैं उसका धन्यवाद करना चाहूंगा, हमारी जो अभी वर्तमान में संसद है उसमें बैठे माननीयों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि देर से ही सही, लेकिन उन्होंने इस भाव को समझा कि जो महत्व राष्ट्रगान का हमारे लिए है वैसा ही महत्व, चूंकि ये राष्ट्र को जोड़ने के दो शब्द हैं, हमारे हृदय के तारों को झंकृत करने का गान है, और इसको जब तक हम वही मान वही दर्जा नहीं देंगे जो जनगण मन को देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे ही जो सांस्कृतिक हमारी जो विरासत है उसके साथ हम अन्याय करेंगे।
1: स्तर पर भी अनेक देशों में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। ऐसे में जब भारत में वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने की अब ये पहल की गई है, ये अलग अलग वर्गों में किस तरह से प्रभावी होगी और आप इस पहल को किस तरह से देखते हैं?
0: बिल्कुल सलीन जी, आपने ठीक कहा। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, एशियाई देशों में अगर हम देखें तो जापान एक बहुत प्रखर राष्ट्रीयता का देश है। हम लोग कहते हैं कि जब जापान में बच्चे से पूछा जाता है कि तुमको क्या बनना है, तो आमतौर पर उसका जवाब डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसी, जैसे हमारे आमतौर पर बच्चे कई बार बोलते हैं, वहां नहीं है। वहां एक सामान्य उत्तर होता है कि हमको अच्छा जापानीज बनना है। तो एक राष्ट्रीयता भाव का एक अच्छा उदाहरण हमारे सामने है जापान का, और वहां पे कानून के जरिए जैसे अभी व्यवस्था दी गई है हमारे यहाँ, इसी तरह कानून के जरिए वहाँ के राष्ट्रीय प्रतीकों, वहाँ के राष्ट्रगान को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है, उसका मान होता रहे, उसके मान में निरंतर वृद्धि होती रहे, किसी तरह का अपमान न हो वहाँ। ऐसे ही चले जाइए आप, कतर है, सऊदी अरब है, यूरोपीय देशों में जाएंगे तो इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, कई उदाहरण हमारे सामने ये देखने में आते हैं कि जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। और ये प्रावधान भारत में थोड़ा इसलिए जरूरी है कि देखिए भारत बहुत ही ज्यादा विविधता है सांस्कृतिक रूप से, यहाँ पे भाषा की दृष्टि से बहुत विविधता है, विचारों में भी बड़ी विविधता है, और ये विविधता हमारी कमजोरी नहीं है। इसको किसी भी व्यक्ति को इसे कमजोरी के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो एकता होती है वो उसी एकता का ही वास्तव में विशिष्ट रूप विविधता होती है। हमारे यहाँ विशिष्टाद्वैत दर्शन है, वो जो द्वैतों में विशिष्ट है वो अद्वैत है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो विविधता है उस विविधता में एकता कैसे स्थापित हो, तो वो उसका प्रयास हमारे दार्शनिकों ने, हमारे चिंतकों ने अनादिकाल से किया है। तो इस विविध देश में जो लोग रहते हैं सबके मन में

0: हमारे इस राष्ट्रगान के प्रति, हमारे वंदे मातरम गीत के प्रति समान भाव जागृत हो पाए और समान रूप से हम उसका सम्मान कर सके। आने वाली पीढ़ियां भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय आदि चीजों से ऊपर उठकर इस महत्वपूर्ण गीत को आत्मसात कर सके, इसके लिए मैं समझता हूँ एक व्यवस्था देने की जरूरत थी और वो संसद ने की।
1: सर, चर्चा की शुरुआत में आपने वंदे मातरम की ऐतिहासिकता को लेकर बात की थी, तो सर आपसे हम समझना चाहेंगे कि वंदे मातरम की रचना किन ऐतिहासिक परिस्थितियों में हुई और स्वतंत्रता आंदोलन में इस गीत ने जन जागरण और राष्ट्रीय चेतना को किस प्रकार नई ऊर्जा दी।
0: जी सलन जी, आप चूंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी भी हूँ और प्रत्येक व्यक्ति को मैं मानता हूँ इतिहास का विद्यार्थी होना चाहिए, थोड़ा बहुत इतिहास जरूर पढ़ना। हम अपने मूल को नहीं जानेंगे तो हम बहुत सारी समस्याओं से रूबरू नहीं हो पाएंगे। देखिए 1870 का दशक था, उसमें एक प्रावधान लागू किया गया। थोड़ा सा और पहले जाए तो 1857 का गदर कहते हैं जिसको, या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम जिसको मानते हैं, वो असफल हो गया। और उसकी असफलता ने जो राष्ट्रीय भाव से भारत के लिए काम करने वाले लोग थे उनके मन में बड़ी गहरी निराशा बैठ गई। ऐसे में एक बड़ी विशिष्ट घटना घटी और वो घटना घटी रानी विक्टोरिया के सम्मान में, उनके सम्मान को किस तरह से ब्रिटिश इंडिया में एक कानूनन जामा पहनाया जाए इसका प्रावधान करते हुए एक व्यवस्था 1876 ईस्वी में दी गई यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और उसमें क्या था कि गॉड सेव द क्वीन करके एक गीत था, वो गीत गाना अनिवार्य कर दिया गया। जितने सांस्कृतिक समारोह सरकारी रूप से होते थे उसमें इस गीत को गाना अनिवार्य कर दिया गया। उस समय गॉड सेव द क्वीन करके
1: विक्टोरिया का,
0: हाँ जी विक्टोरिया के लिए, तो ब्रिटिश संसद के जरिए ही ये सब चीजें थोपी जाती थी यहाँ पे। तो ये गॉड सेव द क्वीन करके जो गीत था उसको जबरन एक तरह से सभी सरकारी समारोहों में गाने के लिए बाध्य किया गया। उस समय बंकिम चंद चटर्जी जी डिप्टी कलेक्टर के पद पे उसी अंग्रेजी जो प्रशासनिक हायरार्की थी उसमें काम कर रहे थे और उन्होंने जब इसको देखा और सुना तो बड़ी ठेस लगी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता से बहुत निराश भी थे, राष्ट्रवादी थे। उन्होंने मन में ठाना कि हमको मातृभक्ति का एक गीत रच, और उन्होंने ये इस उत्कट देशभक्त से परिपूर्ण गीत की रचना की और 1878 के आसपास में यह गीत उनके द्वारा लिखा गया। 1882 में एक सन्यासी विद्रोह पे आधारित एक उन्होंने उपन्यास लिखा आनंद मठ, आप लोगों ने नाम सुना होगा, आनंद मठ में इसको प्रकाशित किया इस गीत को। उससे पहले गीत को स्वतंत्र रूप में वो लिख चुके थे लेकिन उस उपन्यास में जी जी गीत तो प्रकाशित हो चुका था। 1882 ईस्वी में जब आनंद मठ प्रकाशित हुई तो उसमें ये गीत पूरा प्रकाशित हुआ और उसमें एक सन्यासी है जिसके मुंह से इन्होंने इसको गवाया है, वो सन्यासी गाता है, पात्र है उस
1: वो अंग्रेजों के खिलाफ जी, जी, जो जी, समय जी, काल सन्यासी और
0: जी बिल्कुल बिल्कुल वो जो शोषण व्यवस्था थी कह लीजिए जमींदारी व्यवस्था से पनपी और उसके मूल में ब्रिटिश शासन था, तो वहां से ये शुरुआत होती है। हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल में अथर्ववेद में कहा गया है माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, माँ हमारी पृथ्वी है और उसके हम पुत्र हैं। तो यहाँ तो भगवान राम ने जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी, तो ये हमारे यहाँ परंपरा में है, वो वैदिक काल से है, वो रामायण काल में मिलती है, आगे के समय में निरंतर उसका प्रवाह हम देखते हैं। ये जो भूगोल है हम जिसको हम विश्व के मानचित्र पे, खाली भौगोलिक नक्शा नहीं है भारत देश, भारत में रहने वाला जो भी व्यक्ति है उसको ये भूमि का टुकड़ा के रूप में नहीं देखता है, वो मातृभूमि के रूप में देखता है। और जो भी व्यक्ति उस समय इस चीज को जी रहा था, इस चीज को महसूस कर रहा था, उसके मन में अपार पीड़ा थी, इस गीत ने इतना संबल दिया। इस गीत को जब आप सुनेंगे, मैं अपने श्रोताओं से निवेदन भी करूंगा कि आज तो गूगल का जमाना है, आप उस पर डालेंगे तो हिंदी अर्थ सहित उसका अनुवाद आपको मिलेगा, आप उसको पढ़िए, उसका भाव देखिए, उसको सुनिए, सुनिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपने भावपूर्ण मुद्रा में इसको सुन लिया रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप। 1886 का जो दूसरा कांग्रेस अधिवेशन था उसमें एक कविवर करके थे, कविराज की उपाधि उनकी, उन्होंने ये गीत गाया था और वो 1896 में इसको स्वरबद्ध तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया। आगे चलकर देखते देखते देखते देखते अठभंग भंग आंदोलन हुआ, उसमें तो ये गीत प्रेरणा स्रोत बन गया। मैडम भीखा जी कामा जिन्होंने स्टुटगार्ट में ध्वज अपना फहराया था उस पे वंदे मातरम छपा हुआ था, लाला लाजपत राय जी ने वंदे मातरम अखबार निकाला, पत्रिका निकाली, उन्होंने किया वंदे मातरम। अरे वो वंदे मातरम मंत्र बन गया कि आप ये समझिए 22 साल में जो आंदोलन हुआ अठभंग भंग विरोध के क्रम में, तो 1806 ईस्वी बारीसाल में एक बड़ा एक पदयात्रा निकली और उस पदयात्रा में जो ही वंदे मातरम उद्घोष शुरू हुआ और देखते देखते ऐसा वातावरण ऐसा माहौल बना, अंग्रेज सरकार घबरा गई। आपने नाम सुना होगा एक टाउन हॉल था कलकत्ता में, वहां 30,000 लोग इकट्ठा हुए बंग भंग में और 30,000 लोगों ने इसका सामूहिक गान किया। लोग बताते हैं कि वहां सुनने वाले मतलब हजारों लोग रो रहे थे। तो ये जो गीत है वो मैंने कहा ना ये कोई ऐसे साधारण सी पंक्तियां नहीं है, ये हमारे भाव में उतरा हुआ है, हमारी श्रद्धा हमारा प्रेम मातृभूमि के प्रति जो हमारा आदर है जो सम्मान है वो कूट कूट के इसमें भरा हुआ है। और मैं समझता हूँ इस गीत को इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ जब आप देखते हैं तो बहुत पहले इस गीत को कायदे से संवैधानिक दर्जा संवैधानिक व्यवस्था वैसे ही इस गीत के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन वो कुछ दुर्भाग्य या कुछ
1: संविधान सभा की बैठक हुई सर 50 में, उसमें राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इसे राष्ट्रगान के समान

0: सम्मान मिलने की प्रक्रिया को आगे किया जाए।
1: जी बिल्कुल, वहां भी वही जो राजनीतिक विमर्श जब हुआ वहां पे, तो वहां पे कुछ जो मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान बना चुका था, लेकिन फिर भी अभी मुस्लिम लीग के कुछ नेता यहाँ थे, कुछ उस समय के और भी नेता ऐसे थे जो सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष होने की बात कहते थे, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि वो धर्मनिरपेक्षता की उस भाषा में, इस गीत में कोई आपत्ति हो सकती थी। लेकिन उन्होंने आपत्ति की, इसके दो अंतरा तो चल सकते हैं, लेकिन बाकी के तीन अंतरा वो माँ दुर्गा की स्तुति जैसा है, उसमें साक्षात उनका नाम दिया है, उनके स्वरूप का वर्णन है, इसलिए हम इसको नहीं गा सकते, या देश का एक बड़ा हिस्सा है जो इसको मूर्ति पूजा के रूप में देखेगा और उसके लिए आपत्तिजनक है। और यह कहकर इस गीत का थोड़ा कह लीजिए महत्व राजनीतिक रूप से जानबूझ के या अनजाने में कम कर दिया गया, जो मैं समझता हूं कि थोड़ा मेरे लिए दुर्भाग्य का।
0: अब राष्ट्रीय एकता की बात है, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की बात है, उस लिहाज से और उस दिशा में वंदे मातरम वर्तमान परिवेश में कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम नेशनल इंटीग्रिटी की बात करें?
1: देखिए, अभी जो भारत देश है हमारा वो युवाओं का देश है, अभी आपने कहा, और आने वाला समय युवाओं का है, और मैं केवल आने वाले समय की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी भी किसी भी कालखंड में किसी भी देश की दशा और दिशा है वो युवा ही तय करते हैं। और जब युवा वर्ग में मातृभूमि से जुड़ा हुआ भाव विकसित हो जाएगा और इस भारत देश को वो मातृभूमि के रूप में देख के सेवा करेगा, किसी भी क्षेत्र में, समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएगा, तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर करेगा। तो ऐसे में वंदे मातरम का भाव जागृत करना युवाओं में बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूँ समसामयिक रूप से भी देखा जाए या आने वाले किसी भी समय में, मातृभूमि के प्रति वंदना, मातृभूमि के प्रति आराधना, मातृभूमि के प्रति वंदन, इसका तो मैं समझता हूँ कि कभी ये कालातीत नहीं हो सकता कभी, तो ये हमेशा बने रहना चाहिए। और इस व्यवस्था के अंतर्गत अगर युवा पीढ़ी में इसका भाव जागृत होता है तो ये स्वागत करने वाली बात है।
0: बिल्कुल सर, आपने वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व, स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी भूमिका और साथ ही वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता को लेकर विभिन्न पहलुओं पर बेहद महत्वपूर्ण और तथ्यपरक जानकारी दी। सर, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सर आपका बहुत बहुत
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की ऐतिहासिकता, जन जागरण में भूमिका के साथ केंद्र सरकार द्वारा लाए गए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन बिल 2026 के महत्व पर जय नारायण महाविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर गिरिजेश त्रिपाठी से खास बातचीत। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए विविध कलाकारों के गाए रुहेल खंडी लोकगीत।

आकाशवाणी नजीबाबाद से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं विविध कलाकारों के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अगला लोकगीत।

आकाशवाणी नजीराबाद से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं विविध कलाकारों के गाये रुहेलखंडी लोकगीत और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंतिम लोकगीत।

इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है अब यहीं पर संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विविध कलाकारों के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को ज्योति गौड़
1: और लोकेंद्र का प्यार भरा
0: नमस्कार। और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम गीत तुम्हारे। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सिर्फ तुमसे।

0: सिर्फ तुम फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। संगीत नदीम श्रवण का था और गीत लिखा था समीर ने। सुनने की फरमाइश की थी आप सभी ने।
1: ये पत्र मेरे हाथ में है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर वीरक, जैतिक वीरक और मीका वीरक ने।
0: और इसी गीत को सुनना चाहा था महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजय, राहुल कुमार धनजय, विशाल कुमार धनजय, शीला धनजय, गायत्री धनजय, खुर्ती रोड मानपुर से। ये पत्र हमें भेजा था विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद ने।
1: आदर्श नगर मलोट पंजाब से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा।
0: और इसी गीत को सुनना

0: राकेश विनोद, पालीपुरी, डीसी पुरी और अरुण पुरी का।
1: ये व्हाट्सएप मैसेज सिर्फ तुमके इसी गीत के लिए हमारे पास आया है। रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख, कनेरा मोहल्ला पटियाला से आप हैं बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता।
0: और श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म करण अर्जुन से। आवाजें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की। गीत लिखा है इंदिवर ने और गीत को संगीत दिया है राजेश रोशन ने। सुनने की फरमाइश की है आप सभी ने।
1: आप हैं जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया, मोहल्ला हलवाईयान, शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया और साजदा रानी।
0: गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतिंग विरक और मीका विरक, और इसी गीत को सुनना चाहा है। सरोज चौक अमरावती महाराज से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, पोत्रा मुजतबा खान, रऊफ भाई और शहीद भाई ने। लीजिए पेश है आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: कुमार शानू और अलका याग्निक का गाया गीत अभी आपने सुना। फिल्म करुण अर्जुन से कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म तुम मिले से आवाज है के की, संगीत प्रीतम का है और गीत लिखा है सईद कादरी ने। सुनने की फरमाइश है आप सभी श्रोताओं की।
1: आप हैं मीरापुर बेगा पोस्ट मंडावली तहसील नजीबाबाद बिजनौर से, आप हैं भेजने वाले इस गीत को पसंद करने वाले कासिम पेंटर, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद उवैश, डॉक्टर विजय रोहतक सिंह और आप हैं मोहम्मद अकदस।
0: पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से ये हमें पत्र भेजा है मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने।
1: ये व्हाट्सएप मैसेज हमें मिला है पूना जंक्शन मस्तानपुरा से, आप हैं अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत।
0: रंगनी छत्तीसगढ़ से ये पत्र हमें भेजा है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने।
1: दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने इसी गीत को सुनने के लिए व्हाट्सएप मैसेज हमें किया है।
0: भूरसुदा छत्तीसगढ़ से ये पत्र हमें भेजा है भगवानी गजेंद्र सेन, चिराग संतोष सेन, चंद्र प्रकाश और नेहा सेन ने।
1: सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा हमें लिखते हैं, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है।
0: और ये पत्र हमें मिला है जो आया है रेलवे कॉलोनी बठिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार का।
1: थुरगुजा मैन पार्ट से आप हैं रूबीना थापा, सोनम थापा, सोनिया थापा, रेशमा, जूट मिल रायगढ़ से डब्लू बेलदार, आदिबा बेलदार, सरफुद्दीन बेलदार और आसमा बेलदार।
0: तो श्रोताओं लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म तुम मिले से।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म तुम मिले का एक गीत के किशोर में। इस गीत के लिए शब्द रचना थी सईद कादरी की और संगीत था प्रीतम का। श्रोताओं, कार्यक्रम में सुनते हैं अगला।

0: फिल्म परदेश से। गायक कलाकार हैं कुमार सानू और अलका याग्निक। गीत को पसंद किया है आप सभी ने। आप हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, असमा सालिया और इनके परिवार के सभी लोग। गांधी बाग अकोला से आप हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें भेजा है ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू पवार और मोहम्मद हसनैन पवार। बाजार चौक ग्राम दीवाल से आप हैं शंकर लाल गंगराडे, वनीता गंगराडे, छोटू पूजा रोशनी और अजय गंगराडे। अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली और इनके परिवार के सभी लोग। गांव वुडगहन छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश प्रजापति, चंद्रकांता प्रजापति और शशिकांता प्रजापति ने हमें लिखा है। आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। और ये व्हाट्सएप मैसेज हमारे पास लिख भेजा है आप हैं राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और इनके परिवार के सभी लोग।
1: और ये अगला मैसेज हमें मिला है मोहल्ला अफगानान शेरकोट से। भेजने वाले हैं नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बागी, अदीम बाकी, अब्दुल गली, अलमीर, मोहम्मद जैद और जन्नत। इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम नगला उभवन नजीबाबाद जिला बिजनौर से ठाकुर जयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नवनी, लालू, नमन, केजल, छोटी, शिवी, कृधा, ओम प्रकाश, बलवंत, पूनम और इनके परिवार के सभी सदस्य।
0: ग्राम दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से व्हाट्सएप मैसेज लिख भेजा है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी का यह व्हाट्सएप मैसेज इसी गीत को सुनने के लिए हम तक पहुंचा है।
1: और ये मैसेज हमें मिला है लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू ने। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमानाज, असद, अरहम और मोहम्मद आलम हाशमी। तो लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म परदेश से।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्म परदेश से ये गीत। आवाजें थी कुमार शानू और अलका याग्निक की। और कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं केके की आवाज में, केके और श्रेया घोषाल की युगल आवाजों में फिल्म द किलर से। संगीत साजिद वाजिद का है और गीत लिखा है ज्वेल शेरवानी ने। सुनने की फरमाइश है आप सभी श्रोताओं की।
1: और ये ज्योति मेरे हाथ में पत्र है, आपने लिखा है जनपद मेरठ उत्तर प्रदेश से। आप हैं नरेंद्र कुमार, मंजू शर्मा, पंडित जगन्नाथ शर्मा, विजय शर्मा, प्रभाष शर्मा, अमिता शर्मा, राकेश शर्मा, योगेश शर्मा, लक्ष्मी, कपिल, विपुल, विशाल, देवेंद्र कुमार और विपिन सोनू और सियानंद शर्मा का।
0: और ये मैं पढ़ रही हूँ व्हाट्सएप पे मैसेज, और ये मैसेज हमें मिला है शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया, साईराज, विशाल का। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं माल टेकड़ी अमरावती से प्रशांत ढेकरे, वर्षा और श्रद्धा ठेकरे का।
1: जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, डॉक्टर जाबिर सकलैनी। ग्राम जुझेला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निषाद आयशा, आलिया, साइना, महविश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर ने ये फरमाइश हमें इसी गीत के लिए लिखकर भेजी है।
0: फुलगांव निजामाबाद तेलंगाना से ये मैसेज हमें किया है एम ए वाहिद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फजीज, जुनैद, जुबैर, मुकर्रम, नोमान, फुकरान, फुरकान, जाकिर और फाजिल ने।
1: मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर पीलीभीत से आप हैं विमल वर्मा, नीतू वर्मा और इनकी प्यारी बिटिया प्राची।
0: ग्राम
1: अमरोहा नई बस्ती पते ही कालसा से है ज्योति मेरे हाथ में पत्र है जी। आप हैं बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी और आलिशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, सलीम और इनके परिवार के सभी लोग। मोहल्ला अफगाना शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी और अदीम बाकी।
0: और ये मैसेज हमें मिला है जो आया है ग्राम गदारोना से मदन गिरी, बमला गिरी, बलराम गिरी, भारत गिरी, मधुगिरी, सोनिया गिरी, गोविंद गिरी, सिमरन गिरी, वंशिका गिरी, रमन गिरी और दिव्या गिरी का।
1: तो ज्योति सुनवाते हैं श्रोताओं को उनकी पसंद का एक गीत, फिल्म हम सुनवा रहे हैं द किलर से।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: तो श्रोताओं, लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये अगला गीत, केके और श्रेया घोषाल की आवाजों में फिल्म द किलर से।

0: के और अलका, माफ कीजिएगा, श्रेया घोषाल का गाया ये गीत अभी आपने सुना। इसके बाद आपको सुनवाते हैं कुमार शानू और आशा भोसले का गाया ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म दिल का क्या कसूर से। संगीत नदीम श्रवण का है और गीत लिखा है मदन पाल ने। सुनने की फरमाइश आप सभी की।
1: पसंद किया है आपने। आप हैं नगीना से अनिल विनोचा, शम्मी विनोचा, अक्षय विनोचा, कनिका, गीत अरोरा और सहज अरोरा ने।
0: इसी गीत को सुनना चाहते हैं गांव जाखौद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदर लाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक।
1: ये पत्र मेरे हाथ में है। आप हैं ग्राम छितावर वाया कीरतपुर जनपद बिजनौर से आनंद किशोर धीमान, भगवत प्रसाद धीमान, श्रवण कुमार धीमान, मुकेश धीमान, अमित धीमान, आरव, रेमश, कृष्णन, अक्षत और खुशबू, प्रिंसी और अमिता। ग्राम राहु नंगली बिजनौर से आप हैं आचार्य सत्यवीर सिंह।
0: और ये मैसेज हमें मिला है मोहल्ला बरादरी महमूद खा रामपुर से। भेजने वाले हैं भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी का। इसी गीत को सुनना चाहते हैं।
1: परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान और असलम सैफी। बटिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक। कवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली।
0: और ये मैसेज हमें मिला

0: आप हैं पप्पू राजा दिलखुश, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी, आरजू और हसमुख लाल जिंदल। आपने हमें लिखा है चकला बाजार समाना शहर पंजाब से।
1: और इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है
0: खमरिया
1: घमरिया।
0: छत्तीसगढ़ से आप हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। और ज्योति अगला आप पढ़िए मैसेज।
1: और ये अगला मैसेज हमारे पास आया है धनोरा अमरोहा रोड ग्राम कुआ खेड़ा से। भेजने वाले हैं आश मोहम्मद, सारिक मलिक, जीशान सलमानी, सानू मलिक, आसिफ मलिक और दानिश चौधरी।
0: आप हैं रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीन जख्मी, इंजीनियर भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, नजमा बेगम नास, भाभी सरिता गौतम और बेगम शबनम अनवार।
1: और ये कार्यक्रम का अगला मैसेज हमें मिला है जो आया है अब्दुल खालिक, अब्दुल मलिक, अब्दुल ताली, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद आसिफ का, पत्थर वाली मस्जिद जलालाबाद से।
0: आप हैं जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। साथी
1: और
0: ये व्हाट्सएप मैसेज हमें मिला है निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई, अब्दुल रहमान, सईद चंद, फारूक फूल वाले और सैयद खलील, मुबीन भाई और यासीन, मूसा करीम। और ये इन्होंने लिखा है नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से। तो ज्योति
1: तो
0: अगला गीत श्रोताओं को सुनवाते
1: जी
0: हैं।
1: बिल्कुल। और अगला गीत हमने लिया है, फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर।
0: कुमार सानू।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर।
1: आप हैं अनारकली बाजार जरगांव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा और सुच्चा पाठक। आप हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: और आपने ये मैसेज किया है जिला अमरोहा नई बस्ती पताई खालसा से, बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद शिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी बेटिया, अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें की है।
1: भुरसुदा छत्तीसगढ़ से आप हैं भगवानी, गजेंद्र सेन चिराग, संतोषी सेन, चंद्र प्रकाश और नेहा सेन ने।
0: मार हरा दरवाजा एटा से ये मैसेज हमें किया है नबीन हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी और रसीद वारसी का।
1: किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से आप हैं जुबैर अली खान और इनके परिवार के सभी लोग।
0: सहारनपुर से ये मैसेज हमें भेजा है आशा नारंग, सोनाली नारंग और सुरेश नारंग ने। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं पांडर कड़वा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे ने। और ये कार्यक्रम का अगला मैसेज हमें मिला है
1: सदर
0: सदर
1: बाजार
0: बाजार।
1: मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान ने ये हमें मैसेज लिखकर भेजा है।
0: और इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गार्वी, बेबी बाय हिमांश ने। और ये अगला मैसेज हमें मिला है जो आया है जिला मुरादाबाद ग्राम धुलापुर उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद

0: इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून।
1: आप हैं काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरेशे, सुषमा सुरेशे, परिधि सुरेशे और मायरा सुरेशे।
0: और ये मैसेज हमें मिला है सराय मीर स्ट्रीट नगीना से। भेजने वाले हैं रईस अहमद राही, रवीश अहमद राही, रुएश अहमद राही, रिशान अहमद राही, रुशेज अहमद राही, रुशमान अहमद राही और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: आप हैं सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़।
0: और ये
1: नंगल
0: मैसेज
1: खेड़वा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीष शर्मा और राहुल शर्मा।
0: और इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें की है नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे ने। और श्रोताओं लीजिए, अब पेश है आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत जो हमने लिया है कुमार शानू और अलका याग्निक का गाया हुआ। फिल्म का नाम है दिल कितना नादान है, संगीत अनु मलिक का और गीत लिखा है राहत इंदौरी ने।

0: श्रोताओं, अभी आपने कुमार सानू अलगाग्नि के स्वर में सुना फिल्म दिल कितना नादान है का ये गीत। कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं फिल्म एक रिश्ता से, उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में। गीत समीर का है और इस गीत के लिए संगीत तैयार किया है नदीम श्रवण ने। और ज्योति, पसंद किन किन ने किया है?
1: और ये गीत सुनना चाहा है ग्राम लोहड़ी जिला मोहबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गौहर और सुनील पाठक ने।
0: गनगोला दातागंज जिला बदायूं से इसरत खान, शायरा बेगम, रऊफ खान, साबरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान और ईशान खान ने।
1: और इसी गीत को सुनना चाहा है कृष्ण की नगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिश्ता रानी, नंदिनी और अंजलि ने। और यही गीत सुनना चाहा है शेरकोट बिजनौर से निजामुद्दीन, रऊफ अहमद, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद हन्नान, महक, रमेश। और इसी गीत को सुनने के लिए हमें ये मैसेज किया है
0: दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से, आप हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा ने।
1: और इसी गीत को सुनना चाहा है महेर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, श्रीमती सरिता प्रिंस एकांश बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवाड़कर, सिद्धांत और अर्जुन ने। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश की है आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाड़कर, सुमित कुमारी ध्वनि गवाड़कर। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है
0: आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां ने। आप हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। तो श्रोताओं, आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं हम फिल्म एक रिश्ता का ये गीत।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक के गाये फिल्म एक रिश्ता के इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत तुम्हारे अब यहीं पर संपन्न होता है। ज्योति गौड़ को
1: और लोकेंद्र को अनुमति दीजिए।
0: नमस्कार।

श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम गीत तुम्हारे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म एक था टाइगर से, पलक मुच्छल और के युगल स्वर में। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: पलक मुछल और के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म एकता टाइगर का ये गीत। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हैं।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं आप इस समय फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं फिल्म गोपी किशन का ये गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वर में। शब्द रचना समीर की है और संगीत आनंद मिलिंद का है।

अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक को फिल्म गोपी किशन में। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं, आप इस समय कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गीत।

फिल्म गुप्त द हिडन ट्रुथ से उदित नारायण, सुनीता राव और साथियों के स्वर में। गीत आनंद शाह का है, संगीत विजू शाह का।

श्रोताओं, अभी आपने उदित नारायण, सुनीता राव और साथियों के स्वर में ये गीत सुना। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम चित्रपथ संगीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आप सुनते हैं राहत फतेह अली खान, श्रेया घोषाल के युगल स्वर में ये गीत फिल्म हाले दिल से। इस गीत के लिए शब्द रचना है मुन्ना धीमान की और संगीत है विशाल भारद्वाज का।

अभी आपने फिल्म हाले दिल का ये गीत सुना। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं फिल्म ईशा गुजादे का ये गीत, शालमली खोलमड़े के स्वर में। गीत कौसर मुनीर का है और संगीत अमित त्रिवेदी का।

अभी आपने फिल्म इशक जादे का ये गीत सुना। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं, आप इस समय कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हैं। श्रोताओं, आपको बता दें, आज दोपहर 12:05 पर कार्यक्रम आपका पत्र मिला के अंतर्गत आप व्हाट्सएप मैसेज हमें भेज सकते हैं हमारे कार्यक्रमों के बारे में, कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं, आप हमारे कार्यक्रमों में और क्या बदलाव चाहते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप हमारा जानते हैं, 9457078288। कार्यक्रम में यदि आप समीक्षात्मक पत्र लिखकर भेजेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और आपके पत्रों पर आधारित तो ये कार्यक्रम है, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करना ना भूलें। कार्यक्रम में अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म गुलामी से, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के युगल स्वर में सुनते हैं ये गीत। शब्द रचना गुलजार साहब की है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार को श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे फिल्म गुलामी में। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आप सुनते हैं कुमार सानू के स्वर में ये गीत फिल्म गर्लफ्रेंड से। इस गीत के लिए शब्द रचना है प्रवीण भारद्वाज की और संगीत है डब्बू मलिक का।

अभी आप कुमार सानू के स्वर में फिल्म गर्लफ्रेंड का ये गीत सुन रहे थे। श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आप सुनते हैं फिल्म गब्बर इज बैक से गीत अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल के युगल स्वर में। शब्द रचना इस गीत के लिए मनोज यादव की है और संगीत चित्रंजन भट्ट का है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल को फिल्म गब्बर इज बैक में। इस गीत के लिए शब्द रचना मनोज यादव की थी और संगीत चिरंतन भट्ट का था। कार्यक्रम में सुनते हैं फिल्म गदर 2 का ये गीत अरिजीत सिंह और मिथुन के युगल स्वर में। गीत सईद कादरी का है और संगीत मिथुन का।

अरिजीत सिंह और मिथुन को अभी आप सुन रहे थे फिल्म गदर 2 में। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और गीत फिल्म गजनी से। जावेद अली और सोनू निगम के युगल स्वर में ये गीत सुनते हैं। इस गीत के लिए शब्द रचना प्रसून जोशी की है और संगीत AR रहमान साहब का है।

जावेद अली और सोनू निगम के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म गजनी का एक गीत। इसी गीत के साथ कार्यक्रम चितपट संगीत करने समाप्त करने की लोकेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। हम आपको कार्यक्रम संबंधी कुछ जानकारियां दे दें। आपसे कुछ ही देर बाद दोपहर 12:05 पर हमारे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम आपका पत्र मिला। दोपहर 12:30 पर हमारे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम फिल्मी संडे है। आज इस कार्यक्रम में आज की फिल्म रहेगी दामिनी। बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम बाल वाटिका प्रसारित किया जाएगा आज दिन में दोपहर 1:15 पर। इसमें आज के क्रम रहेंगे आओ जाने क्रम में रोचक जानकारियां, साथ ही बालोपयोगी कहानी भी प्रसारित की जाएगी। नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर, ये कार्यक्रम आज रात्रि 9:30 पर हमारे श्रोता सुन सकेंगे। और रात्रि 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज दोपहर 1:15 पर लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत आप सुनेंगे राजस्थानी लोकगीत, कलाकार रहेंगे बनारसी लाल झूरी। कार्यक्रम एक और अनेक, ये कार्यक्रम फिल्म संगीत का आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। इसमें आज आप सुनेंगे नक्स लायलपुरी और साथियों को। आज दोपहर 1:00, माफ कीजिएगा, आज शाम 5 बजे मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार के उपाय के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि बाजार और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विषय में जानकारी हमारे श्रोता सुन सकेंगे।

आज शाम 5:15 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी प्रसारित किया जाएगा। आज इसमें क्रम रहेंगे झलकी, 80वें स्वतंत्रता दिवस के रनअप पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे भेंट वार्ता, उर्द व मूंग की फसल में समसामयिक कार्य, मुकेश कुमार से भेंट करेंगे जितेंद्र कुमार। आज शाम 6:45 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कहानी एक जज का न्याय। कहानीकार हैं श्रीमती चंद्रकला देवी। हमारे फिल्म संगीत के कार्यक्रम श्रोता सुन सकेंगे। आज शाम 6:55 पर कार्यक्रम छाया गीत के अंतर्गत, रात्रि 8 कार्यक्रम गीत संध्या और एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत रात्रि 8:30 पर। आज संध्या 7:32 पर सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे गजलें, कलाकार रहेंगी फरीदा खानम। अदबी दुनिया इस कार्यक्रम में आज कला में शायर रहेंगे अलमास रोमानी। समय आज संध्या 7:50 पर।

ये था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपका पत्र मिला।

0: श्रोताओं, आपका पत्र मिला। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा लोकेंद्र
1: और मेरा ज्योति गौड़ का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपका पत्र मिला लेकर हम दोनों उपस्थित हैं आज स्टूडियो में। और जो भी श्रोता हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दर्ज कराना चाहते हैं, वो जरा लोकेंद्र जी फोन नंबर बता दीजिए, किस
0: हाँ
1: नंबर पे हमसे जुड़ सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।
0: बिल्कुल ज्योति, मैं बताता हूँ। श्रोता हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9457078288। इस नंबर पर आप हमें अपनी प्रतिक्रिया लिखकर भेज सकते हैं कि हमारे कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं और हमारे कार्यक्रमों में आप और क्या बदलाव चाहते हैं, किस तरह की जो आप कार्यक्रम सुनते हैं उसकी पूर्ण रूप से समीक्षा लिखकर आप भेजेंगे तो हमें अच्छा लगेगा।
1: जी बिल्कुल। और कार्यक्रम देखिए शुरू हो चुका है, आपका पत्र मिला और हम यानी कि मैं ज्योति गौड़ और लोकेंद्र विश्वकर्मा आपके साथ जुड़े हैं 12:05 से 12:30 तक। जो भी श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं वो फटाफट से अपना व्हाट्सएप ऑन करें और टाइप करें हमें मैसेज 9457078288 पर और कार्यक्रम शुरू करते हैं।
0: तो ज्योति, ये पहला पत्र पहला व्हाट्सएप मैसेज हमें मिल चुका है और ये लिखा है आलोक कुमार, ग्राम छजूपुरा तगा, तहसील मंडी धनौरा, जनपद अमरोहा से। ये लिखते हैं कि कार्यक्रम आपका पत्र मिला आकाशवाणी नजीबाबाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और ये कहते हैं कि हम इस कार्यक्रम को दिन में कम सुन पाते हैं, आप इस कार्यक्रम को रात्रि सभा में कर देंगे तो अच्छा लगेगा। और ये लिखते हैं कि एक छोटी सी शिकायत हम लिखकर भेज रहे हैं, ये कार्यक्रम लिखकर भेज रहे हैं कि इन्होंने लिखा है कि 5 अगस्त को ममता जी ने और 6 अगस्त को रविकांत जी ने एक ही फिल्म से कार्यक्रम में दोनों ने फिल्म प्रेम रोग के गीत सुनवाए, बड़ा अजीब सा लगा। आपसे निवेदन है कि एक ही फिल्म से कार्यक्रम में अलग-अलग फिल्मों के गीत सुनवाए जाएं तो अच्छा लगेगा।
1: जी, पहले सबसे पहले पत्र भेजने के लिए छज्जूपुरा तंगा तहसील मंडी धनोरा से आलोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मैसेज किया है हमें, पहले तो ये लिखते हैं कि रात के प्रोग्राम ये सुन नहीं पाते हैं तो देखिए थोड़ा सा टाइम आपको निकालना पड़ेगा। और मैसेज आपने किया है हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि देखिए जो प्रोग्राम की शेड्यूलिंग हो रखी है, आप 12:05 से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपको 12:05 से ही ये सुनना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, कुछ प्रोग्राम हमें दिल्ली से भी प्रसारित करने होते हैं जिनका टाइम शेड्यूल हो रखा है तो ये अभी तो फिलहाल संभव नहीं है। और दूसरे आपने कहा है कि 5 अगस्त और 6 अगस्त को आपने एक ही फिल्म के गाने सुने, देखिए इस पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ है तो सभी लोग सुन रहे हैं और आगे वो ध्यान रखेंगे। आपने मैसेज किया, पत्र भेजा कार्यक्रम में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और ये अगला पत्र मेरे हाथ में है, इसको लिखकर भेजा है आप हैं पप्पू राजा खुशदिल और इनके साथी। ये लिखते हैं कि हम आकाशवाणी नजीबाबाद के बहुत पुराने श्रोता हैं, उस वक्त प्रेम कुमार सडाना जी अनाउंसर थे, उनके प्रोग्राम हम सुनते थे, हमें बहुत अच्छे लगते थे। ये लिखते हैं कि फिल्मी संडे कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है, जिंदगी लाइव और संदेश.com, नाटक झलकी। और ये लिखते हैं कि आपसे निवेदन है कि फिल्मी संडे कार्यक्रम में पुरानी फिल्म आरजू जो वर्ष 1960 में बनी थी उसको सुनवाने का कष्ट करें। और ये लिखा इन्होंने लिखा है कि अगर हमारा मैसेज कार्यक्रम में शामिल हुआ तो हम आगे की भी जो है पत्र लिखना जारी रखेंगे। अच्छा प्रोग्राम पेश करने के लिए ज्योति और लोकेंद्र को ये बधाई देते हैं।
1: तो सबसे पहले इनका भी लोकेंद्र जी धन्यवाद कर देते हैं हम।
0: बिल्कुल
1: देखिए कार्यक्रम में टाइम निकाल के मैसेज करना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि अब ठीक है सुन हम सभी लेते हैं और बहुत सारे हमारे श्रोता सुन भी रहे होंगे लेकिन

0: उस कार्यक्रम को सुनने के बाद उसकी प्रतिक्रिया देना और फिर इतना लंबा मैसेज टाइप करना। आप हमारे कार्यक्रम में समय दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे, आपने कहा है कि आपने सडाना जी के दौर से आप सुन रहे हैं, तो देखिए सडाना जी तो हमारे अनाउंसर रह चुके हैं और बहुत अच्छे हैं, हम सभी जानते हैं, और अभी भी वो हमारे प्रोग्राम में कभी ना कभी आए जाते हैं और शिरकत कर ही देते हैं, और आप सब
1: हाँ,
0: सुनते भी हैं, है
1: अभी
0: ना?
1: पीछे एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें आए थे
0: बिल
1: और
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं ने
0: बिल्कुल
1: प्रतिक्रिया भी भेजी थी।
0: प्रतिक्रिया ही भेजी थी, और बहुत अच्छा लगा था उन सब उनको सुनकर, हमारे श्रोताओं को भी और साथ में हमें भी। और इसके बाद आप लिखते हैं कि आपको प्रोग्राम सूरज के साथ साथ जिंदगी लाइव, आपकी फरमाइश, फिल्मी संडे अच्छे लगते हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरजू फिल्म के गीत आपने सुनना चाहा है, तो देखिए हमारे जिसकी भी आगे ड्यूटी होगी हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, वो आपको आरजू फिल्म के गीत सुनवाएंगे,
1: और
0: और
1: ज्योति, हम
0: हम
1: बराबर
0: भी
1: बराबर
0: बिल्कुल
1: सुनवाते रहते हैं।
0: सुनवाते रहते हैं। और अगर आप कंटिन्यूअसली या लगातार हमारे प्रोग्राम सुने तो आपको आरजू फिल्म के गीत कहीं ना कहीं तो
1: सुनने
0: सुनने को मिल ही
1: अभी ही अभी ही
0: जाएंगे।
1: पीछे मेरी
0: बिल्कुल
1: ड्यूटी थी तो मैंने आरजू फिल्म के
0: हाँ, तो
1: गीत
0: वही
1: सुनवाए थे।
0: बात है,
1: हाँ,
0: क्योंकि फिल्म आरजू देखिए ऐसा है ना, बहुत हिट फिल्म है, अच्छी फिल्म है, तो सभी इस फिल्म के गाने सुनवाते रहते हैं, और हमें ही पता होता है हमारे श्रोताओं को कौन से गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं और हमें क्या सुनवाना चाहिए। फिलहाल आपने मैसेज किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही मैसेज करते रहें, कार्यक्रम में अपनी हिस्सेदारी भागीदारी दर्ज कराते रहें।
1: शुक्रिया, आपने हमको ये मैसेज लिखकर भेजा। और ये अगला व्हाट्सएप मैसेज अनिल विनोचा जी का है, ये नगीना से हमें लिखकर भेजते हैं। ये लिखते हैं कि प्रोग्राम की जिम्मेदारी निभाने वाले दोनों प्रस्तुतकर्ताओं को सादर नमस्कार। आगे बीते वीक के हाल इस तरह हैं, कुछ लिख रहा हूँ। ये लिखते हैं कि दो लाइनें आप ज्योति जी के लिए लिखते हैं।
0: जी,
1: ये कहते हैं कि
0: खता आप कीजिए इल्जाम हमारे सर आए, खता आप कीजिए इल्जाम हमारे सर आए, हम वफा करें आप जफा कीजिए।
1: क्या बात है,
0: ये
1: का
0: बहुत अच्छी लाइन है आपने लिखी, और आगे क्या लिखते हैं? लास्ट वीक प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया, और जागरूक श्रोता कुछ ज्यादा अच्छे इन्होंने किए हैं उसमें। आगे लिखते हैं कि जिंदगी लाइव बहुत अच्छा लगा जो अनुपम जी ने किया, धर्मेंद्र जी ने वंदना और सूरज के साथ साथ प्रोग्राम किया अच्छा लगा,
1: राजवीर
0: राजवीर
1: जी
0: जी
1: ने
0: ने
1: हेलो
0: हरिणी
1: नहीं
0: ग्रोवाल
1: रात के
0: जी,
1: हम सफर की ये
0: हाँ
1: तारीफ लिखकर भेजते हैं।
0: हाँ
1: ये
0: हाँ
1: लिखते हैं कि
0: प्रोग्राम बहुत लाजवाब पेश किए, और सच में इनका रेडियो ये सुनते हैं और इनको अच्छा लगता है। और आगे लिखते हैं कि युवाणी
1: सभी
0: के,
1: दोस्तों की केमिस्ट्री
0: हाँ,
1: बहुत अच्छी
0: बहुत
1: है
0: अच्छी है,
1: और वो
0: बिल्कुल अच्छी
1: बहुत
0: है।
1: बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं सभी। ये लिखते हैं कि सभी जितने भी युवाणी प्रोग्राम के प्रेजेंटर हैं उनको ये बधाई लिखकर भेजते हैं। और साथ में लिखते हैं कि आज का गीत तुम्हारे में सॉन्ग बहुत अच्छे प्रस्तुत किए गए, तो इसके लिए ये बधाई देना चाहते हैं ज्योति और लोकेन दोनों को। तो धन्यवाद आपका।
0: और एक चीज और लिखी है लोगेन जी, इन्होंने ज्योति जी की कड़क आवाज कान में पड़ी तो रेडियो, और मुझे अपने अपने में
1: कंपन महसूस हुआ।
0: कंपन महसूस हुआ। देखिए ये तो आपने हमें डरा दिया, ऐसा भी कुछ नहीं है, हम बहुत आराम से प्यार से बोलते हैं। खैर जो भी है, आपकी ये प्रतिक्रिया है हमारे लिए, और सच में लगा ज्योति जी आज के गीत तुम्हारे सॉन्ग अच्छे लगे, ये भी अच्छी बात की है। वैसे गीत तुम्हारे या हमारे, ये देखिए कोशिश यही रहती है कि जो भी हम सॉन्ग प्ले कर रहे हैं या जो भी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं वो आप सभी श्रोताओं को पसंद आए, और आपको पसंद आते हैं तभी हमारी जो भी मेहनत है वो सफल हो पाती है, आपकी प्रतिक्रिया हमारे पास अच्छी आती है, तो हमारी, हम समझते हैं हमारी मेहनत कहीं ना कहीं, क्यों ना कहीं सफल
1: बिल्कुल
0: होती है या
1: बिल्कुल
0: नहीं।
1: बिल्कुल, आपने
0: और
1: सही कहा
0: बाकी
1: ज्योति।
0: आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं,
1: हाँ,
0: प्रोग्राम सुनते रहते
1: ये
0: हैं,
1: सभी कार्यक्रमों में हमारी जो है
0: बिल्कुल
1: सभी कार्यक्रमों
0: भागीदारी।
1: की समीक्षा लिखकर भेजते हैं जब भी प्रोग्राम आपका पत्र मिला होता है या अन्य कार्यक्रम होते
0: लेकिन
1: हैं।
0: हमें फिर भी इनसे बस एक ही शिकायत रही है, अभी थोड़ी राइटिंग इनकी ठीक हो चुकी है लेकिन थोड़ा अभी इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करने में थोड़ी सी गलती करते हैं, जिससे हमें इनका मैसेज पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी होती है। खैर आप इस बात का ध्यान रखें, आगे मैसेज करते रहें, और जैसे जैसे आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी राइटिंग भी ठीक ही हो जाएगी, क्योंकि एक काम ये होता है कि हमारे रूटीन में अगर कोई काम नहीं होता है और हम उसको करें तो शायद वो नहीं होता होता है ठीक
1: जी
0: से, बट
1: जी
0: अगर हम उसको रेगुलर करने लगें तो उसमें जो है वो ठीक होने लगता है, और अच्छे से आप टाइप भी करने लग जाएंगे, ऐसे हम आशा
1: फिर
0: करते
1: भी
0: हैं।
1: हम अनिल विनोचा जी को
0: बिल्कुल
1: शुक्रिया कहना चाहेंगे, क्योंकि
0: बिल्कुल,
1: हमारे बहुत ही नियमित
0: रेगुलर
1: श्रोता
0: लिसनर हैं
1: और
0: और
1: इनके
0: सारी
1: मैसेज
0: प्रतिक्रिया देते हैं,
1: अलग
0: बिल्कुल।
1: अलग कार्यक्रमों में इनके मैसेज जो है वो प्रतिभागिता
0: और
1: इनकी
0: देखिए
1: रहती है और बहुत
0: पूरे,
1: ही अच्छा संदेश
0: हाँ
1: लिखकर ही भेजते हैं।
0: बिल्कुल, और पूरे हफ्ते का ब्यौरा ये लिख के जो है वो भेजते हैं। देखिए पूरे हफ्ते सुनना और फिर उसको याद रखना अपने आप
1: जी
0: में बहुत बड़ी बात होती है, और फिर उसको आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू हमें भेज रहे हैं, तो इसके लिए तो आपका धन्यवाद बनता ही है।

0: सुनते रहें प्रोग्राम, और आपका धन्यवाद आपने मैसेज किया कार्यक्रम में। अगला मैसेज किसका?
1: अगला मैसेज ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुजानिन अंसारी ये लिखकर भेजते हैं। लिखते हैं कि कार्यक्रम पेश करने वाले लोकेंद्र जी और ज्योति जी, आप दोनों को मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब। हमें नजीबाबाद केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। सभी कार्यक्रमों को हम सुनते हैं। 2 अगस्त को फिल्मी संडे कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा। इसमें बाजीगर फिल्म की कहानी और गीत सुनवाए गए। 7 तारीख को जागरूक श्रोता कार्यक्रम में भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में बात की गई, बहुत अच्छा लगा। इसके गीत तुम्हारे सूरज के साथ साथ मैसेज संदेश.com हमें पसंद आते हैं। आपसे गुजारिश है, हेलो निर्बाध कार्यक्रम को सप्ताह में 2 बार करने का कष्ट करें, हमें अच्छा लगेगा और आपकी मेहरबानी होगी।
0: देखिए कार्यक्रम में इन्होंने 2 अगस्त और 7 अगस्त की बात की है। 2 अगस्त का इन्होंने फिल्मी संडे सुना जिसमें बाजीगर फिल्म की स्टोरी सुनाई गई। 7 अगस्त का इनको जागरूक श्रोता अच्छा लगा जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में बात हुई। ये आपने हमारे इस मैसेज में लिख के भेजा है, तो इसके लिए तो पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये प्रोग्राम सुने। हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि और हमारे प्रोग्राम सुने, उनकी प्रतिक्रिया भी हमें लिखकर भेजे कि आपने कौन सा प्रोग्राम सुना, आपको उसमें क्या चेंजेस चाहिए थे या हम और क्या अच्छा कर सकते थे, तो वो भी आप लिख के भेजें तो हमें और ज्यादा अच्छा लगेगा। फिलहाल आज आपने मैसेज किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अगला व्हाट्सएप मैसेज हमें लिखकर भेजा है, आप हैं, आपने नाम अपना लिखा है नाज पैलेस अजमेर शरीफ से। आप हैं सैयद आलम हाशमी, बेगम गुलनाज हाशमी और इनका समस्त हाशमी परिवार। लिखते हैं कि लुकेन जी और मोहतरमा ज्योति गौड़ जी, आपको सादर सप्रेम नमस्कार। आज गीत तुम्हारे आप दोनों साहिबान की प्रस्तुति चुनिंदा ज्ञानों के लिए काबिले तारीफ रही। हम प्रोग्राम आपका पत्र मिला से हमेशा जुड़े रहते हैं। हाशमी परिवार और सभी आरजे साहिबान की मधुर आवाज बेहतरीन पेशकश हमेशा ही कायल रहती है। 5 अगस्त का दिल ने फिर याद किया, 8 अगस्त का रात के हम सफर गीत तुम्हारे, और 3 अगस्त को आरजे निधि भारद्वाज और विश्वास जी ने, 5 अगस्त को मनोज वर्मा और रेणु जी की प्रस्तुति काबिले तारीफ रही, 7 अगस्त को जागरूक श्रोता के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन जो विषय था उस पर इनको जो बातचीत है वो ज्ञानवर्धक लगी। ये लिखते हैं कि श्रोताओं को अवगत कराया गया, रोजाना 11 से 12 बजे तक चित पर संगीत के तहत बहुत ही सुंदर गीत सुनने को मिलते हैं। लिखते हैं बस हमारी एक ही शिकायत है कि हेलो नजीबाद और हेलो जागरूक श्रोता में लाख कोशिश के बावजूद भी हमारी कॉल नहीं लगती।
0: तो हमें ये तो हम कहेंगे ये तो समस्या सभी के साथ है क्योंकि हमारे पास श्रोता इतने सारे हैं और देखिए हमारा प्रोग्राम 1 घंटे का है तो,
1: और ज्योति ये हमारा कार्यक्रम देखिए बहुत ही पॉपुलर कार्यक्रम है और इसमें लाखों लोग एक साथ कॉल करते हैं,
0: तो इसलिए कहीं ना कहीं दिक्कत होती है हमारे सभी श्रोताओं को, हम समझ सकते हैं। और आपकी इस समस्या का समाधान यही है कि आप बस कॉल लगाते रहें और
1: लगातार प्रयास करते रहें। देखिए लगातार प्रयास करते हैं तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती
0: और
1: है।
0: हमारे कई श्रोता हमारे साथ ऐसे जुड़ते हैं, बहुत सारे हमारे लिसनर ऐसे हैं जो यही कहते हैं कि हम बहुत टाइम से
1: बहुत
0: कॉल लगा रहे थे और आज हमारी पहली बार कॉल लगी है। तो बस आपकी समस्या का अभी फिलहाल तो हमारे पास यही समाधान है कि आप हमें लगातार कॉल करते रहें, आपकी कॉल एक ना एक दिन जरूर लग जाएगी। और आगे इन्होंने बात की है कि इनको
1: 5 अगस्त का दिल ने फिर याद किया, 8 अगस्त का रात के हम सफर, इन सभी कार्यक्रमों की इन्होंने समीक्षा लिखकर भेजी है
0: तो इनको पसंद आया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए निधि जी, विश्वास द्विवेदी जी, रेणु जी, इनकी मनोज वर्मा जी, इनकी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी
1: तो सीधे सीधे इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको बधाई पहुंच
0: गई है और सभी प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपकी जितनी भी बातें थी, आपकी तारीफ थी, वो हमारे सभी अनाउंसर सुन रहे हैं और आपने मैसेज किया उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही सुनते रहे, मैसेज करते रहे, कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दर्ज करा।
1: ज्योति अगला ये मैसेज हमें लिख भेजा है ग्राम गदोरना जिला हरिद्वार उत्तराखंड से मदन गिरी और इनके परिवार के सभी लोगों ने ये लिखते हैं कि मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आज मेरा मैसेज जरूर शामिल होगा। मुझे अक्सर कहा जाता है कि आप अपने पत्र में हमारी कमियां नहीं लिखते। आज मैं छोटी मोटी कमियों पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जैसे कि फोनिंग कार्यक्रम होते हैं, हेलो नजीबा, जागरूक श्रोता, हेलो किसान। बस मेरी इतनी विनती है कि जब किसी श्रोता की कॉल आए तो अन्य श्रोताओं का ध्यान रखते हुए बात कम की जाए जिससे अन्य श्रोताओं को भी मौका मिले। मैंने हेलो जागरूक कार्यक्रम में हेलो जागरूक श्रोता कार्यक्रम में मेरी जब भी कॉल लगी तो मैंने सबसे पहले शर्त रखी कि आप एक ही कॉलर से कम समय में बात करें। सब उद्घोषक से यही अपील और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पर ध्यान जरूर देंगे। और लिखते हैं कि हेलो नजीबाद जो राजवीर जी प्रस्तुत कर रहे थे उसमें पूरी 10 कॉल शामिल की गई तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और ये लिखते हैं कि अपनी अगली शिकायत ये लिखते हैं कि शनिवार में 12:05 पर जिंदगी लाइव प्रोग्राम अनुपम मिश्रा जी पेश कर रही थी। विषय मुझे ध्यान नहीं रहा, लेकिन मैंने 12:10 पर अपना मैसेज भेज दिया। मुझे उम्मीद थी कि पहला मेरा ही मैसेज पढ़ा जाएगा, लेकिन 12:30 हो चुके थे, लेकिन मेरा मैसेज शामिल नहीं हुआ। फिर मैंने उसके बाद दोबारा मैसेज किया और ये लिखते हैं कि मेरा मैसेज फिर भी शामिल नहीं हुआ, और इसके बाद कह रहे हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा था, फिर मैंने मैसेज करना बंद कर दिया। लिखते हैं कि उसके बाद ये लिखते हैं कि मैं आकाशवाणी नजीबात का बहुत पुराना श्रोता हूँ, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ? आपसे अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में मेरे जो मैसेज हैं वो शामिल किए जाएंगे। बस यही ये लिख कर भेजते
0: देखिए, सबसे पहले तो
1: हैं।
0: इनकी ये वाली जो शिकायत थी वो दूर हो गई है, मैसेज आपका शामिल हो चुका है। और रही बात कार्यक्रम में जागरूक श्रोता की, या दिल ने फिर याद किया कि आप बात कर रहे हैं, तो देखिए ऐसा होता है हमारे पास बहुत सारे मैसेज होते हैं, है ना, और ये हमारे सभी श्रोता जानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास इतने सारे मैसेजेस आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो मैसेज शुरू के किए हुए होते हैं वो शायद कहीं ना कहीं खो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे मैसेज होते हैं, सबको एक साथ लेना जरा थोड़ा पॉसिबल नहीं होता,
1: फिर भी
0: संभव
1: हम
0: नहीं
1: पूरी
0: होता।
1: कोशिश करते हैं
0: फिर
1: कि
0: भी
1: ज्यादा से
0: कोशिश पूरी,
1: ज्यादा,
0: हाँ
1: क्योंकि
0: बिल्कुल
1: देखिए ज्योति समय निर्धारित है, समय
0: बिल्कुल,
1: निश्चित है कि कोई भी कार्यक्रम है तो जैसे आधे घंटे का है या 1 घंटे का है, तो उसी
0: हाँ
1: उसी सीमा में रहकर हमें कार्यक्रम करना पड़ता
0: कार्यक्रम
1: है।
0: करना होता है, और उसी सीमा में रह के हमें अपने मैसेज भी पढ़ने होते हैं, अपना प्रोग्राम भी देना होता है, साथ के साथ आपको उससे रिलेटेड गीत भी सुनवाने होते हैं। और देखिए आपने बात की राजवीर जी की, तो काबिले तारीफ है कि हाँ उन्होंने 10 कॉल की, 10 कॉल ली कार्यक्रम में, और डेफिनेटली उनका कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा होगा, ऐसी हम भी आशा कर रहे हैं। और आपको अच्छा लगा, हमारे सभी श्रोताओं को अच्छा लगा, तो देखिए इससे अच्छी तो और कोई बात है ही नहीं, है
1: बिल्कुल।
0: ना।
1: और
0: और
1: देखिए
0: दूसरी
1: ज्योति,
0: बात इन्होंने ये
1: हाँ
0: कही
1: बोलिए।
0: कि कॉल जो है वो कम शामिल किया करें, बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है, क्योंकि हमारे बहुत
1: नहीं,
0: सारे श्रोता लाइन पे रहते हैं। जी
1: कॉल ज्यादा शामिल किया करें,
0: हाँ, ज्यादा
1: लेकिन
0: ही ज्यादा ही
1: आप कम बोल गई थी ना।
0: हाँ कॉल ज्यादा शामिल किया करें, तो देखिए हाँ बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता लाइन पे रहते हैं, क्योंकि अगर एक श्रोता से 5 मिनट भी बात करते हैं तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि हमारे श्रोता जो है रह जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपने ये वाला सुझाव दिया है तो इस पर बिल्कुल अमल किया
1: और
0: जाएगा कम
1: देखिए
0: से कम।
1: हम अपने श्रोताओं से भी कहना चाहेंगे ज्योति, देखिए अभी पिछली बार हेलो नजीबात कार्यक्रम में मैंने प्रस्तुत किया था, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि श्रोताओं से बात जो मुख्य बात है वही की जाए,
0: हाँ,
1: लेकिन
0: लेकिन
1: कुछ
0: हमारे
1: कुछ
0: श्रोता
1: होता
0: भी
1: है,
0: ऐसे होते
1: हाँ
0: हैं
1: बहुत
0: जिनको
1: लंबा
0: बात
1: खींचते
0: करनी
1: रहते
0: होती
1: हैं,
0: है,
1: बहुत लंबा
0: बिल्कुल
1: खींचते रहते हैं,
0: हाँ
1: लेकिन हमें भी अच्छा नहीं लगता कि उनकी बात को काटा
0: काटा
1: जाए,
0: जाए,
1: लेकिन उन्हें खुद ही ये सोचना चाहिए कि
0: हाँ
1: और भी लोग लाइन में हैं, उनको भी
0: बिल्कुल।
1: मौका
0: और
1: मिलना
0: मदन गिरी
1: चाहिए।
0: जी ये बात सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मदन गिरी जी की बात जो है वो सभी श्रोताओं ने सुनी भी होगी, क्योंकि हमारे श्रोता भी ऐसे होते हैं, देखिए हमसे बात करने का सभी का मन होता है, तो हमारे कुछ श्रोता ऐसे हैं जो टाइम खींचते हैं। फिलहाल आपने इतनी अच्छी
1: मैसेज
0: बात
1: किया,
0: पे
1: आपको
0: बिल्कुल
1: धन्यवाद।
0: ध्यान दिया, ये भी उसके लिए भी धन्यवाद।
1: पहाड़ी दरवाजा धामपुर जिला बिजनौर से ये मैसेज हमें मिला है, शमीम अहमद, मोहम्मद अजीम, नाजिम और जलील अहमद का। आप लिखते हैं कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं को हमारा नमस्कार, सभी श्रोताओं को भी ये नमस्कार लिखकर भेजते हैं। आकाशवाणी नजीबात केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम श्रोताओं को भरपूर मनोरंजन और ज्ञानवर्धन जो है प्रदान करते हैं। हर आयु वर्ग के श्रोताओं को ध्यान में रखकर आकाशवाणी मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहा है। आपका पत्र मिला कार्यक्रम में, कुछ समय पूर्व शोभित शर्मा जी कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने श्रोताओं के सवालों के जवाब रोचक और ज्ञानवर्धक अंदाज में दिए थे। कृपया हमारी तरफ से अनुरोध करें कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम में शोभित शर्मा जी और अंकित जी भी आया करें। आपसे और श्रोताओं से अनुरोध है कि सप्ताह में 25 मिनट प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम को केवल उद्घोषकों की प्रशंसा तक ही सीमित ना रखा जाए। आप लिखते हैं कि इस कार्यक्रम में विस्तार से जो है सारी चीज़ लिखकर भेजी जाएं, और इन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम संबंधी महत्वपूर्ण प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा जरूर किया करें, तभी कार्यक्रम की सार्थकता संभव होगी। कृपया आपका पत्र मिला प्रस्तुतकर्ता ध्यान दें, दोनों श्रोताओं द्वारा भेजे गए एक एक आकस्मिक उद्घोषक नाम लेकर प्रशंसा में अधिक समय ना बिताया करें। प्रस्तुतकर्ताओं का ये लिखते हैं कि और भी जो है बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, घर संसार कार्यक्रम इन्हें अच्छा लगता है, महिला जगत कार्यक्रम, दिल ने फिर याद किया, रात के हम सफ़र, ये इनको अच्छे लगते हैं।
0: देखिए कार्यक्रम में सबसे पहले तो इनका धन्यवाद कि इन्होंने इतना लंबा मैसेज टाइप करके हमें भेजा है, और बहुत सारे कार्यक्रम की आपने बात की है, और आपने ये भी बोला है कि अंकित जी और शोभित जी कार्यक्रम में आए, तो उसके लिए भी बिल्कुल प्रयासरत रहते हैं हम सभी, और उनको जैसे ही टाइम लगता है वो जरूर ही आते हैं कार्यक्रम में। ये आपने भी जो है नोटिस किया होगा,
1: सुना होगा,
0: बिल्कुल, और आपने भी सुना होगा शोभित शर्मा जी भी आते हैं और अंकित जी भी आते हैं, बट कभी कभी कहीं ना कहीं टाइम की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाती है, जो हम भी कहेंगे क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन नहीं निकाल टाइम जो है तो कभी

0: निकलता है और अभी निकल जब उनके पास टाइम होता है वो कार्यक्रम में जरूर ही शामिल होते हैं और आप सभी के समक्ष आते भी हैं। आपने कार्यक्रम में मैसेज किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये अगला मैसेज हमें भेजा है, आप हैं आचार्य सत्यवीर सिंह जी गांव और पोस्ट इन्होंने लिखा है राहु नंगली चांदपुर बिजनौर से, और ये लिखते हैं कि सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। लिखते हैं कि शुक्रवार को राजवीर जी ने हेलो नजीबाद कार्यक्रम में बहुत सारे श्रोताओं की कॉल ली, अच्छा लगा। और ये लिखते हैं उसी दिन रात के हमसफर कार्यक्रम इनको अच्छा लगा, साथ ही युवाणी कार्यक्रम इनको अच्छा लगा। और लिखते हैं कि दुर्गा भाभी की चर्चा एक प्रोग्राम में की गई थी, इनको पसंद आई, उसके अधिक बातें हमें शामिल की गई जो हमें अच्छी लगी हैं।
0: और बाद में इन्होंने लिखा है लोकेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, मनोज वर्मा जी, ज्योति जी, अनुपम जी, श्वेता जी, रेणु जी भी सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ, हम सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये हमारे प्रोग्राम में आपको सभी को दिखता भी होगा। और देखिए, मेहनत कर रहे हैं हम, आप श्रोता हमें सराहते हैं, उसके बाद ही हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमारी मेहनत सफल हो गई है। और आपने इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं, तो हमारी ओर से भी हमारे सभी श्रोताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं। और स्वतंत्रता दिवस देखिए हम सबको मिलजुल के मनाना है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है तो हम सब एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं। और कार्यक्रम में आपने मैसेज किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहें, कार्यक्रम में मैसेज करते रहें।
1: ये अगला मैसेज हमें लिखकर भेजा है, आप हैं जसपुर रोड दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से महबूब दुकानदार।
0: आज लोकेंद्र जी आपने एक बात नोटिस की कि हमारे श्रोता बहुत लंबे लंबे मैसेज कर रहे हैं हमें, है ना?
1: हाँ बिल्कुल, अब देखिए अब सभी श्रोताओं को शामिल करना, देखिए हाँ। कितना कितने मैसेज हमारे पास आए हुए हैं, लेकिन कार्यक्रम
0: तो थोड़ा सा कठिन तो होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सभी श्रोता
1: ज्यादा से ज्यादा
0: मैसेज शामिल हो पाए।
1: ये लिखकर भेजते हैं कि मैं युवाणी कार्यक्रम का नियमित और सजग श्रोता हूँ, आपके विशेषकर कार्यक्रम गपशप अड्डा और मनोरंजन कार्यक्रमों का आनंद लेता रहता हूं। और ये लिखते हैं कि 3 अगस्त को प्रसारित गपशप अड्डा कार्यक्रम में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सुझाव आपके समक्ष रखता हूं। उस दिन प्रसारित होने वाले 45 मिनट के इस फोनिंग कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसी बातें देखने को मिली जिन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना, जैसे कॉलर्स की बेहद कम संख्या, लिखते हैं कि 2 कॉल ही शामिल की गई, बेहद निराशाजनक रहा। लिखते हैं कि फोनिंग कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसका मुख्य केंद्र बिंदु श्रोताओं के फोन कॉल्स और प्रतिक्रिया होनी चाहिए, परंतु कार्यक्रम में इधर उधर की बातें की गई। ये लिखते हैं कि फोनिंग कार्यक्रम की असली खूबसूरती श्रोताओं के और श्रोताओं और आरजे के बीच सीधा संवाद होती है, तो आपसे निवेदन है कि आगामी जो एपिसोड्स हैं उनमें इन बातों को ध्यान में रखा जाए। और ये लिखते हैं कि फोन लाइन अधिकतर व्यस्त रहती हैं, लेकिन श्रोता फिर भी प्रयास लगातार करते रहते हैं।
0: देखिए, कार्यक्रम में आपने मैसेज किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विशेष प्रकाश डाला है युवाणी की, इन्होंने बात की है। तो देखिए, युवाणी कार्यक्रम में जो आपने ये कहा है कि इधर उधर की बात की है, वो इधर उधर की बात नहीं होती है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, बहुत सारे हमारे बात बतानी होती है युवाणी कार्यक्रम में भी, बहुत सारे हमारे दिन विशेष होते हैं जिनके बारे में चर्चा करनी होती है, फोन इन कार्यक्रम उसमें शामिल होता है। आप सही कह रहे हैं कि उसमें जो है उनको कॉल लेनी है, लेकिन कभी कभी बहुत सारी बातें आपके साथ जो है वो शेयर करनी होती है, बतानी होती है, तो वहां कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन ऐसा होता होगा। बाकी तो प्रोग्राम जो है आप सभी सुनते हैं और आपने ये वाली बात कही है, चलिए इस पे ध्यान दिया जाएगा और आगे आप शामिल किया जाएगा कि जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा कॉल हम शामिल कर पाए, युवाणी में ज्यादा से ज्यादा कॉल शामिल कर पाए। और बात देखिए, हेलो नजीबाबाद की बात है तो आप सभी को पता है फोन इन प्रोग्राम है, तो सभी को पता है कि कॉलिंग जो है वो थोड़ी सी संभव नहीं हो पाती है, उसमें नंबर बिजी जाता है क्योंकि हमारे बहुत सारे कॉलर लाइन पे होते हैं, तो उसमें यही दिक्कत होती है। बाकी आपने मैसेज किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, कार्यक्रम में अब हमारा समय समाप्त हो चुका है, कार्यक्रम बिल्कुल समाप्त हो चुका है, और इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करने की ज्योति गौड़
1: और लोकेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

0: संडे
1: फिल्मी संडे
0: फिल्मी संडे
1: फिल्मी संडे
2: श्रोताओं, आज का फिल्मी संडे कार्यक्रम लेकर मैं उपस्थित हूं आपका रेडियो दोस्त लोकेंद्र। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज के फिल्मी संडे कार्यक्रम में हमने चुना है फिल्म दामिनी को। श्रोताओं, फिल्म दामिनी राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित और सहलिखित वर्ष 1993 में निर्मित भारतीय हिंदी भाषा की एक कानूनी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री ने मुख्य भूमिका निभाई है, साथ ही ऋषि कपूर, अमरीश पुरी, सनी देओल, कुलभूषण खरबंदा और परेश रावल भी हैं। आमिर खान ने एक विशेष भूमिका निभाई है। कहानी दामिनी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने देवर और उसके दोस्तों द्वारा अपनी नौकरानी के साथ बलात्कार होते हुए देखती है। कई बाधाओं का सामना करते हुए वो अपने पति और वकील गोविंद की मदद से अपने लिए न्याय पाने का संघर्ष करती है। ये फिल्म बॉलीवुड में बनी सर्वश्रेष्ठ महिला केंद्रित फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अपना दबदबा बनाए रखा था और एक ब्लॉकबस्टर हिट बन गई थी। इस फिल्म को महिला सशक्तिकरण को दर्शाने के लिए एक महत्वपूर्ण माना जाता है। शेखर गुप्ता, जिसका अभिनय ऋषि कपूर ने किया है, जो धनी उद्योगपति केदारनाथ गुप्ता के बड़े बेटे हैं, एक चैरिटी कार्यक्रम में दामिनी, जिसका अभिनय अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री ने किया है, का नित्य प्रदर्शन देखने के बाद उन्हें उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है।

0: दामिनी एक निम्न मध्यम वर्ग परिवार की बेटी है, लेकिन समाज में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वो तत्पर रहती है। उसकी बड़ी बहन अपने पिता को शादी के दहेज के बोझ से मुक्त करने के लिए शराबी मिमिक्री कलाकार बिरजू के साथ मुंबई भाग जाती है।
1: कुछ भी कहो, दो दो जवान लड़कियां बैठी हैं घर में और दिन निकलते जा रहे हैं।
2: जैसे मैं कुछ समझता नहीं, हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ। सारी चिंता तो तुम्हें है, मुझे तो कुछ है नहीं।
1: किसी के भी हाथ पैर छोड़कर
2: बस नाक रगड़ना बाकी रह गया लोगों के पैरों पर। दहेज है, रिश्तेदारी है, कुंडली है, ये सब भी देखना पड़ता है कि नहीं? घर बार देखना पड़ता है कि नहीं? बस हमेशा छाव छाव छाव छाव करती रहती है।
1: कितनी बार तू कहती हो दहेज ला के दे दो मुझे, पहले मर जाती हो। माँ हो ना इसीलिए।
2: तुम तो मरो, मरना तो मुझे चाहिए। निकम्मा हूं ना, बच्चियों को पैदा कर लिया अब तक, उनकी शादी नहीं कर सका।
0: उधर शेखर दामिनी के बारे में अपने घर पर चर्चा करता है, तब उसका सभी लोग विरोध करते हैं, परंतु अंत में शेखर के पिताजी मान जाते हैं और दामिनी के घर आकर दामिनी से मिलते हैं। उनको भी दामिनी पसंद आ जाती है।

0: दामिनी और शेखर की शादी हो जाती है और दामिनी उसके अलीशान बंगले में रहने लगती है। हालांकि इससे गुप्ता परिवार के व्यापारिक साझेदार टोलू बजाज को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी शेखर से करने की योजना बना रहा था। बजाज गुप्ता परिवार से अपना व्यापारिक संबंध तोड़ लेता है और उनके खिलाफ साजिश रचने लगता है।
1: मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, पहले तय हो चुका है। तो ये भी हुआ था कि शेखर की शादी मेरी बेटी के साथ होगी।
2: तुम शादी और बिजनेस को नहीं जोड़ सकते।
1: बिजनेसमैन की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है गुप्ता।
2: देखो अब जो कुछ हुआ वो हुआ, कहा है होगा। तो अब मैंने तुम्हारी चढ़ाई देखी है गुप्ता, अब इस शहर में रहकर मैं तुम्हारा उतार भी देखूंगा।
3: पंद्रह करोड़ का नुकसान?
4: अरे दीदी ये नुकसान तो सिर्फ बड़ौदा का है, इसमें 20 कलकत्ते के जोड़ दो तो हो जाते हैं 35 करोड़।

0: कहां है सर काम?
1: इन्होंने अब शेखर ने मुझे कुछ नहीं बताया।
0: अरे कैसे बताते, ये सब दामिनी की वजह से तो हुआ है। अरे ये कम्बक बजाज जो है ना, दुश्मनी में उतरा है।
2: दामिनी की दोस्ती गुप्ता परिवार में पली बड़ी एक युवा नौकरानी जिसका नाम उर्मी है उससे हो जाती। होली के त्योहार पर वो शेखर के छोटे भाई राकेश और उसके दोस्तों को उर्मी के साथ सामूहिक बलात्कार करते हुए देखती है। इस बात को शेखर को बताने के लिए भी वो दौड़ पड़ती है। शेखर भी तुरंत वहां पहुंच जाता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।

0: बाद में राकेश और उसके दोस्त उर्मी को सड़क के किनारे फेंक देते हैं। गुप्ता परिवार इस शर्मनाक घटना को दबाने की पूरी कोशिश करता है। जब पुलिस घर पर आकर दामिनी से घटना के बारे में पूछती है तो वो परिवार के दबाव में घटना से अनजान होने का दावा करती है। बाद में पता लगता है कि टोलू बजाज ने गुप्ता परिवार की छवि खराब करने के लिए पुलिस विभाग को रिश्वत देकर मामले को आगे बढ़ाया था। मामला अदालत जाता है, दामिनी को गवाही के लिए कहा जाता है। इसके बाद गुप्ता परिवार अपने बचाव पक्ष के वकील के रूप में,
1: ये तो अच्छा हुआ, 2 बीघा जमीन संभाल के रखी थी, दाम आ गई ना बुरे वक्त में, आए चुप भी करो दमो, चलो सब हो गया, सब तारीख सुनवाई और फैसला गुप्ता जी, ये तो दुनिया जानती है कि बैरिस्टर चड्ढा के पास जब कोई केस आता है ना, तो उस केस की तारीख बाद में मुकर्रर होती है, उसका फैसला पहले हो जाता है हमारे हक में।
2: लेकिन बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ती जा रही
3: है। जब भी चाहे पुलिस घर में आटा मारती है।
1: छोकरों ने जो किया वो कोई बड़ी गलती नहीं है, जवानी में तो ये सब होता ही रहता है। सभी करते हैं, ना समझी तो ये हुई कि अगर उन्हें ये सब कुछ करना ही था तो भाई पहले मुझसे सलाह मशवरा कर लेते। खैर, आगे के लिए ख्याल रखें।
2: चड्ढा साहब, इस वक्त हमें करना क्या है?
1: गुप्ता जी, इस वक्त तो बाजी में पीछे हुए सभी मोरे मैं समझ गया हूँ। मैं तो ये भी समझ गया हूँ कि इस बाजी में आपका बेटा शेखर और बहू, ये दोनों बहुत कमजोर मोरे हैं, खास तौर पर बहू, क्या नाम है उसका, दामिनी, बहुत जज्बाती है और उसकी ये कमजोरी पुलिस बहुत जल्द सूंघ लेगी और उसके पीछे बुरी तरह से पड़ जाएगी, जैसे हंटी के पीछे कुत्ता पड़ा होता है।
0: पहली सुनवाई में चड्ढा दामिनी को मानसिक रूप से अस्थिर लड़की के रूप में पेश करता है और न्यायिक आदेश द्वारा उसे 2 सप्ताह के लिए मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है।

0: मेरा मतलब ये है डॉक्टर साहब कि शी कैन ऐसी मौत जो खुदकुशी लगे, आई मीन शी कैन डाई एक्सीडेंटली।
1: डॉक्टर?
0: यस।
1: डॉक्टर दामिनी अपने कमरे में नहीं है
0: क्या?
1: जी
0: चलो।
2: और उसकी मुलाकात एक शराबी और बदहाल वकील गोविंद श्रीवास्तव, जिसका अभिनय मशहूर अभिनेता सनी देओल कर रहे हैं, उनसे होती है, जो उसका पीछा कर रहे अपराधियों से उसे बचाता है। गोविंद ने वकालत छोड़ दी थी क्योंकि वो अपनी पत्नी आरती के लिए न्याय पाने में असफल रहा था, जिसकी एक नशे में धुत शराबी ड्राइवर द्वारा फुटपाथ पर टक्कर लगने से मौत हो जाती है। हालांकि गोविंद दामिनी की मदद करने का फैसला करता है। वह बलात्कार के मामले को फिर से खुलवाता है।
3: उर्मी से दर्द सहने गया, उसने खुदकुशी कर ली।
1: बूढ़ी खुदकुशी नहीं कर सकती, ये झूठ है।
3: इसमें झूठ क्या है? सब सच ही सच है। यह है उर्मी का लिखा खत जो उसके हाथ में मिला था, और अभी अभी हमने पंचनामा भी किया है।
4: दामिनी, कदम साहब का सच पढ़ो।
1: अब मुझसे दर्द सहा नहीं जाता, तकलीफ बढ़ती जा रही है। मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ। ये झूठ है, ये उर्मी का खत नहीं है। उस बेचारी को तो लिखना ही नहीं आता था।
3: क्या बकवास कर रही हैं आप? यह खत उसके हाथ में मिला।
4: बकवास आप कर रहे हैं, बकवास। आपका ये सच जो उर्मी के हाथ में मिला, हाथ में, और ये हाथ खून से लथपथ, और तुम्हारे ये सच पर खून का एक छींटा भी नहीं।
2: दूसरी सुनवाई में गोविंद श्रीवास्तव एडवोकेट, जिसका अभिनय सनी देओल कर रहे हैं, ने गुप्ता परिवार के ड्राइवर से जिरह की और ये साबित करने में सफल रहा कि ड्राइवर को भी इस घटना की जानकारी थी। उसने ये भी साबित कर दिया कि उर्मी के शव के पास पुलिस को मिला आत्महत्या नोट फर्जी था। स्थिति को बेकाबू होता देख चड्ढा ने सीने में दर्द का बहाना बनाकर अदालत से सुनवाई स्थगित कर दी। अदालत से सुनवाई स्थगित कर अगली तिथि देने का अनुरोध किया। उसी रात चड्ढा ने गोविंद से मुलाकात की और अदालत के बाहर समझौता करने को कहा। हालांकि गोविंद ने गुस्से में उसे अदालत में आमने सामने की चुनौती दी। इसके बाद गुप्ता परिवार ने गोविंद को जान से मारने के लिए गुंडे भेजे।
4: ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर उसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।
5: इस सब का जवाब कल अदालत में दूंगा।
4: और हाँ, अगर अदालत में तूने कोई बदतमीजी की तो वही मारूंगा। जज ऑर्डर ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा।
5: रिलैक्स बॉस।
2: लेकिन वो गोविंद के सामने टिक न सके। दामिनी सार्वजनिक रूप से बाहर निकली और लोगों को अपने समर्थन में लिया। घटना से तंग आकर ड्राइवर, नौकर और अन्य रिश्तेदार गुप्ता परिवार का घर छोड़कर चले जाते हैं। अगली अदालत सुनवाई से पहले चड्ढा, गुप्ता परिवार और बजाज दामिनी की हत्या की योजना बनाते हैं। शेखर ये बात सुन लेता है और हर हाल में दामिनी का साथ देने की योजना बनाता है।

0: बाद में सड़क पर गुंडों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसका अपहरण कर लिया जाता है। शेखर के चाचा ये सब देखते हैं तो उसे बचाने जाते हैं। इसी बीच बजाज अपने आदमियों के साथ दामिनी को अदालत जाते समय जान से मारने की पूरी कोशिश करता है। हालांकि स्थानीय लोग उन पर हमला कर देते हैं और उसे भगा देते हैं। अदालत में चड्ढा जज से सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध करता है। कहता है कि शेखर और दामिनी दोनों फरार हैं। हालांकि गोविंद न्यायाधीश को दामिनी का इंतजार करने के लिए मना लेता है।
1: इससे पहले सड़क पर कोई ट्रक मुझे मार कर चला जाएगा और केस बनेगा रोड एक्सीडेंट का। आप फिर से तारीख दे दें और उस तारीख से पहले दामिनी को पागल बनाकर पागलखाने में फेंक दिया जाएगा। और इस तरह ना तो कोई सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला। रह जाएगी तो सिर्फ तारीख, और यही होता रहा है मिलान। तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलान, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मिलान। दो तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये कानून का धंधा कहते हैं, धंधा। जहां गवाह तोड़े जाते हैं, खरीदे जाते हैं, मारे जाते हैं, और रह जाती है सिर्फ तारीख। लोग इंसाफ के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर केस लड़ते हैं और ले जाते हैं तो सिर्फ तारीख। औरतों ने अपने कहने से वह यहाँ तक कि मंगलसूत्र तक बेचे हैं इंसाफ के लिए, और उन्हें भी मिली है तो सिर्फ तारीख। महीनों सालों चक्कर काटते काटते इस अदालत के कई फरियादी खुद बन जाते हैं तारीख, और उन्हें भी मिलती है तो सिर्फ तारीख। ये केस पूरे हिंदुस्तान के कमजोर और सताए हुए लोगों का है। आज उन सब की नजरें आप पर खड़ी है, आप पर, कि आप उन्हें क्या देते हैं, इंसाफ या तारीख।
0: कुछ देर बाद दामिनी आ जाती है और उसके बाद शेखर भी वहां आ पहुंचता है। दोनों घटना के गवाह के रूप में गवाही देते हैं। अदालत राकेश और उसके दोस्तों को दोषी ठहराती है और गुप्ता परिवार के साथ साथ बजाज और चड्ढा को भी मामले को दबाने के आरोपी के रूप में सजा सुनाती है। न्याय दिलाने में मदद करने के लिए शेखर को बरी कर दिया जाता है। अदालत दामिनी के साहस और दृढ़ संकल्प के लिए उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि उसने कानून व्यवस्था के इतिहास में एक ऐतिहासिक उदाहरण स्थापित किया है। अंत में बहुत मुश्किलों के बाद शेखर और दामिनी एक हो जाते हैं और उनके प्यार और दामिनी के विश्वास की जीत होती है।

0: श्रोताओं, आज का फिल्मी संडे का अंक यहीं तक। कार्यक्रम में हमने चुना था फिल्म दामिनी को। श्रोताओं, अगले सप्ताह एक नई फिल्म के साथ फिर उपस्थित होंगे। आज का फिल्मी संडे कार्यक्रम संपन्न करने की मुझे यानी लोकेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: फिल्मी संडे,
2: फिल्मी संडे,
1: फिल्मी संडे,
2: फिल्मी संडे।
0: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी संडे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजे हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
3: समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।
4: हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और ये 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये

0: राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। इस दौरान सामूहिक वंदे मातरम गायन, तिरंगा रैलियां, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री ने आज गोरीमेदु स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित है।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बम्पर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश की जा रही है। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चियनशी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. The campaign, which began in 2022 as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations,

0: शक्कुर के लिए मुल्क भर में तिरंगा यात्रा का इनेकाद किया जा रहा है। हमारा तिरंगा हमारी सादगी, तरक्की और भारत की इज्जत और फख्र की अलामत है। हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी विरासत की तौहीन करने वालों के लिए सख्त सजाएं देने का इंतजाम किया है।
1: हमारा ये तिरंगा हमारे सादगी का, हमारे विकास का, हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है।
0: तिरंगा यात्रा वजीर आला की रिहायशगाह से शुरू हुई और सिविल अस्पताल और अटल चौक से होती हुई विधान भवन के सामने अख्तिताम पजीर हुई। इस दौरान मरकजी वजीर ममलकत बराए खजाना और रियासती बीजेपी सदर पंकज चौधरी, नायब वज़ीरे आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थनगर जिले का दौरा करेंगे और दो असेंबली हलकों में तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज और बांसी असेंबली हलकों के लिए 311 करोड़ रुपए से ज्यादा के 107 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर वजीर आला मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों से फायदा उठाने वालों को सर्टिफिकेट देंगे और एक जलसा आम से भी खिताब करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलकत जितेंद्र प्रसाद और मरकजी वजीर ममलकत प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल ने कल आगरा में दो रोज़ा एआई फ्यूचर रेडी कॉन्क्लेव 2026 की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ममलकत जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में उत्तर प्रदेश एआई के मैदान में आगे बढ़ रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए मरकजी वजीर ममलकत ने कहा,
2: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच अनुरूप कार्य हो रहा है, धरातल पर इसका प्रभाव दिखाई दे, कृषि से लेकर स्वास्थ्य से लेकर छोटे मध्यम उद्योग और तमाम ऐसी जगहों पे एआई का इस्तेमाल करते हुए भारत कैसे आगे बढ़ेगा और खास तौर पे हमारे युवा प्रतिभा मैंने देखी, ये जो छात्र छात्राएं हैं कॉलेज में उनको एआई के लिए क्या सरकार प्रोत्साहन दे रही है उसके बारे में जानकारी दी।
0: मरकजी वजीर ममलकत प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल ने कहा कि एआई के बगैर भारत तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बन सकता।
3: एआई का भविष्य क्या है, हमें कितना इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और इसके बिना भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता, विशेषज्ञों ने अपने विचार दिए। इस वैचारिक मंथन से अनुरोध निकलेगा तो भारत को प्रधानमंत्री का विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को पूरा।
0: रियासत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। मरकजी हुकूमत ने वाजह किया है कि सार्फीन के लिए यूपीआई और तमाम जाती लेन देन मुफ्त बने रहेंगे। वजारत मालियात ने कहा कि यूपीआई के जरिए से अदायगी करते वक्त सार्फीन को किसी भी किस्म के लेन देन की फीस नहीं देनी होगी, जबकि ज्यादातर तजारती लेन देन भी मुफ्त रहेंगे। वजारत ने मजीद कहा कि अगर मर्चेंट डिस्काउंट रेट फीस लागू होती है तो यह सिर्फ एक मखसूस हद से ज्यादा महदूद तजारती लेन देन पर बराए नाम शरह पर लागू होगी। रियासती हुकूमत ने 12 साल तक की उम्र के स्कूल जाने वाले बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक नई पहल की है। इन बच्चों को ले जाने वाली हर स्कूल की गाड़ी के लिए एक अटेंडेंट होना लाजमी होगा, जो बच्चों को महफूज तरीके से सवार करने और उतारने का जिम्मेदार होगा। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशुतोष निरंजन ने सिलसिले में रियासत के तमाम स्कूलों के मुंतजमीन को एक खत जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने से रियासत में कई नदियों की आबी सतह में इजाफा हुआ है। बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बदायूं और फर्रुखाबाद में गंगा नदी, लखीमपुर खीरी में शारदा नदी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने अगले दो दिनों के लिए रियासत के कई हिस्सों में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:15 हुए हैं।

0: बाल वाटिका सुनने वाले सभी बच्चों को नीलम दीदी का जय हिंद। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। और बच्चों, पढ़ाई से याद आया कि आज रास्ते में छोटे से चिंटू जी रोते हुए मिले। हमने उनसे रोने का कारण पूछा तो कहने लगे, स्कूल में टेस्ट हुए थे और वो सब में फेल हो गए। फेल हो गए? भाई, फेल कैसे हो गए? आपने पढ़ाई नहीं करी थी चिंटू? तो चिंटू जी बोले, नहीं, पढ़ाई अच्छे से नहीं करी थी। तो बच्चों, जब अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो पास कैसे होते चिंटू जी? बच्चों, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो सफल कैसे होंगे? आपने छोटी सी चींटी को देखा है, वो कितनी मेहनत करती है। अगर वो गिर जाती है तो वो रोती नहीं है, फिर उठती है और अपने काम में लग जाती है। बच्चों, हमें भी चींटी से सीख लेना चाहिए कि कभी हार नहीं मानना चाहिए। बच्चों, अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी? परिश्रम का मतलब ही होता है मेहनत करना। जो बच्चे रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, समय पर अपना काम करते हैं, टीचर की बात ध्यान से सुनते हैं, कभी हार नहीं मानते हैं, वो आगे चलकर बहुत नाम कमाते हैं। मान लीजिए, अगर आपको सुंदर लिखना हो, अच्छा चित्र बनाना हो या कविता याद करनी हो, तो क्या एक बार में सब हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चों, उसके लिए बार बार अभ्यास करना पड़ता है और यही अभ्यास और मेहनत हमें आगे बढ़ाती है। बच्चों, धीरे धीरे की गई मेहनत ही एक दिन बड़ी सफलता बन जाती है। इसलिए रोज पढ़िए, रोज पढ़िए भी, रोज खेलिए भी, नई नई बातें सीखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि सफलता का चिराग परिश्रम से ही जलता है। और हमारे चिंटू जी को भी परिश्रम का मतलब समझ में आ गया। उन्होंने भी प्रॉमिस किया कि वो रोज अच्छे से पढ़ाई करेंगे और बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम बाल वाटिका। बच्चों, आप लोग को पता है कि अब क्या आने वाला है? जी हाँ, आप सब बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, आप सबको पता है कि 15 अगस्त आने वाला है। बच्चों, 15 अगस्त हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है, जो शहादत और बलिदान का प्रतीक है। आज से कई वर्ष पहले हमारा देश भारत अंग्रेजों के शासन में था। देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने सुख, परिवार और यहाँ तक कि अपने प्राणों का भी बलिदान दे दिया। बच्चों, इसी कारण हम आज आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भी अनेक वीरों ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। प्यारे बच्चों, इन सभी महान वीरों ने हमें सिखाया कि देश पहले होता है। बच्चों, आप छोटे हैं लेकिन आप भी अपने देश की सेवा कर सकते हैं। आप मन लगाकर पढ़ाई करें, अपने पेरेंट्स, टीचर, सबका सम्मान करें, हमेशा सच बोलें, और यही सच्ची देशभक्ति है। जब हम अपने देश से प्यार करेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, तभी तो हमारे देश भारत का नाम ऊंचा होगा। तो बच्चों, आइए चलते हैं, कुछ अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों से भी पूछते हैं कि वो अपने देश के बारे में कितना जानते हैं। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम बालमुख से। बच्चों, बालमुख में आप सबका स्वागत है और आज हमारे साथ जुड़े हैं अर्णव, अगन्या, दर्श और विहान। अर्णव, आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं।
1: दीदी, मैं वाकई बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं।
0: तो अर्णव, आपके टेस्ट हुए होंगे?
1: हाँ दीदी।
0: तो आपने तो बहुत पढ़ाई करी होगी।
1: हाँ दीदी, इस बार मैंने बहुत मेहनत करी क्योंकि पिछले टेस्ट में मैं फेल हो गया था।
0: जब आप फेल हो गए होंगे तो आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि मुझे मेहनत करनी चाहिए।
1: जी दीदी।
0: तो आपकी इस पढ़ाई में आपकी किसी ने हेल्प करी थी?
1: दीदी, वैसे मेरी मम्मी ने थोड़ी सी मदद करी थी, बाकी सारी मैंने मेहनत करी थी।
0: जी हाँ बच्चों, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको उसका फल जरूर मिलता है। अर्णव ये समझ गए कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि जब उन्होंने मेहनत नहीं करी थी तब वो

0: लोग गए थे, अब उन्होंने बहुत मेहनत करी तो उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो इसी तरह बच्चों आप सब भी जितनी मेहनत करेंगे उतने ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। अच्छा बच्चों बताइए अब क्या आने वाला है?
1: दीदी 15 अगस्त।
0: 15 अगस्त, अच्छा 15 अगस्त को क्या हुआ था?
1: 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था।
0: अच्छा हमारा देश किससे आजाद हुआ था?
2: हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था।
0: जी हाँ बच्चों, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और हमारे फ्रीडम फाइटरों ने बहुत संघर्ष करके अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलवाई थी। अच्छा बच्चों कौन बताएगा हमारे फ्रीडम फाइटर कौन कौन से थे?
1: दीदी हमारे फ्रीडम फाइटर्स सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू
0: और भी बहुत सारे थे।
3: दीदी चंद्रशेखर आजाद,
2: सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब ने हमें आजादी दिलाई।
0: जी हाँ बच्चों, ये जो आजादी का जश्न हम मना रहे हैं ये आजादी बच्चों इन्हीं लोगों की कुर्बानी की वजह से आज हमें मिली है। इसलिए बच्चों आप लोग भी खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। देखिए अर्णव ने बहुत मेहनत करी और उसका कितना अच्छा रिजल्ट आया। तो बच्चों जब आजादी की बात चली रही है तो क्यों ना कुछ बच्चों से पूछ लिया जाए कि उन्हें कितना पता है अपने देश के बारे में। तो अगन्या आप बताइए हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे?
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू।
0: अच्छा विहान बताइए हमारे आजाद देश के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे?
3: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
0: जी हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही बताया हमारे विहान ने। अच्छा दर्श आप बताइए कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो 15 अगस्त पे झंडा फहराते हैं तो वो कहाँ पर झंडा फहराते हैं?
3: रेड फोर्ट।
0: जी हाँ हमारे प्रधानमंत्री कहाँ झंडा फहराते हैं? लाल किले पर। अच्छा बच्चों ये बताइए कि हमारे झंडे में कितने कलर हैं?
3: दीदी हमारे झंडे में 3 कलर होते हैं।
0: तो अर्णव आप बताइए कि हमारे जो झंडे में कौन से 3 कलर हैं?
2: जी सैफरन, व्हाइट और ग्रीन कलर है। सैफरन कलर जो होता है वो सैक्रिफाइस और करेज शो करता है, जो व्हाइट कलर होता है वो पीस शो करता है, और जो ग्रीन कलर है वो प्रॉस्पेरिटी शो करता है।
0: बहुत अच्छा बताया हमारे अर्णव ने। अगर आप बताइए कि हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा था?
1: दीदी रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा नेशनल एंथम लिखा था।
0: अच्छा विहान आप बताइए वंदे मातरम किसने लिखा था?
3: बंकिम चंद्र जी ने।
0: बहुत अच्छा बताया विहान ने। अच्छा अगर ये बताइए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये स्लोगन किसका था?
1: दीदी सुभाष चंद्र बोस।
0: जी हाँ बच्चों सुभाष चंद्र बोस जी का ये नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दर्श आप बताइए आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है?
3: सरदार वल्लभ भाई पटेल।
0: दर्श ने बिल्कुल सही बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लव पुरुष के नाम से जाना जाता था। अच्छा बच्चों आपके स्कूल में भी 15 अगस्त सेलिब्रेट किया जाता है तो कौन बताएगा कि आपके स्कूल में कैसे सेलिब्रेशन होता है?
1: दीदी मैं बताऊंगी। दीदी पहले हम झंडा फहराते हैं, फिर प्रोग्राम करते हैं, स्पीच देते हैं, और फिर दीदी हमारे यहाँ स्वीट बांटी जाती है।
0: तो विहान आपके यहाँ भी ऐसे ही होता होगा स्कूल में?
3: हाँ दीदी हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, सिर्फ मैं स्पीच देता हूँ।
1: दीदी मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ।
0: चलिए बच्चों अगन्या से सॉन्ग सुनते हैं।

0: आरज़ू।
1: बहुत अच्छा सॉन्ग सुनाया हमें अघन्या ने।
2: दीदी मैं एक कविता सुनाऊंगा।
1: चलिए बच्चों ध्यान से भी सुनते हैं कविता।
2: भारत प्यारा देश हमारा, हम उसके नन्हे बच्चे, जितने अच्छे जितने सच्चे, सबसे है प्रेम हमारा, भारत प्यारा देश हमारा, जय हिंद जय भारत।
1: बहुत अच्छी कविता सुनाई व्यान ने और पूरे जोश से सुनाई।
3: दीदी मैं भी कुछ सुनाऊंगा।
1: चलिए बच्चों अर्णव से सुनते हैं।
4: हम भारत के बच्चे हैं, सच्चे और अच्छे हैं, देश हमारा सबसे प्यारा, आंखों का है चमकता तारा, केसरिया साहस खिखलाता, सफेद शांति का दीप जलाता, हरा रंग खुशहाली लाता, नीला चक्र आगे बढ़ाता, वीरों ने हंसकर शीश झुकाया, जब जाकर देश आजाद कहलाया, भगत सिंह का जोश निराला, बापू का संदेश तमतवाला, नफरत का हर दीवार गिराए, प्रेम और भाईचारा फैलाए, तो मेहनत से हम नाम कमाए, भारत का मान बढ़ाए, हर दिल में तिरंगा लहराए, हर चेहरा मुस्कान सजाए, आओ मिलकर प्रण दोहराए, भारत माँ का नाम बढ़ाए, जय हिंद वंदे मातरम।
1: बहुत अच्छी कविता सुनाई हमें अर्णव ने।
2: दी मैं भी एक सॉन्ग सुनाऊंगा।
1: चलिए बच्चों दर्श से भी सुनते हैं।

0: अच्छा
1: भाई बच्चों, दर्श का गीत सुन के सभी बच्चों में इतना जोश आ गया कि सबने एक साथ इतना सुंदर गीत गाया। सच में बच्चों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारे इन नन्हे मुन्ने दोस्तों की बातें? हमें उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। बच्चों एक बात बताइए, क्या लड़ाई करना अच्छी बात है? नहीं ना, हमें तो हमेशा मिलजुल कर प्यार से और शांति से रहना चाहिए। इसलिए 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। बहुत साल पहले जापान के नागासाकी शहर में युद्ध के समय एक परमाणु बम गिराया गया था। इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत से लोगों की जान चली गई। बच्चों, युद्ध से केवल दुख और नुकसान होता है, इसलिए हमें हमेशा शांति, प्रेम और भाईचारे का रास्ता अपनाना चाहिए। अब सोचिए, आने वाले समय में इस दुनिया को और बेहतर कौन बनाएगा? आप जैसे बच्चे जो बड़े होकर युवा बनेंगे। आपको पता है, हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाते हैं। ये दिन युवाओं की शक्ति, उनके सपनों और उनके अच्छे कार्यों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। बच्चों, आप लोग अभी छोटे हैं, लेकिन आज के बच्चे ही कल के युवा बनेंगे। इसलिए बच्चों, हमें अभी से अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, साथ ही अपने देश का नाम रोशन करने का सपना देखना चाहिए। तो बच्चों, ये थी जानकारी नागासाकी दिवस की और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। बच्चों, हम अपने कार्यक्रम बाल वाटिका में महान विभूति क्रम में महान व्यक्तियों की जानकारी देते हैं। तो आज महान विभूति क्रम में हम जानेंगे स्वतंत्रता सेनानी भीकाजी कामा के विषय में। बच्चों, आपका जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। बचपन से ये पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और साथ ही अपने देश से भी बहुत प्यार करती थी। जब भारत अंग्रेजों के शासन में था, तब उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। बच्चों, वे विदेश गईं, वहां से भारत की स्वतंत्रता के लिए लोगों को जागरूक किया और सन 1907 में उन्होंने जर्मनी में भारत का ध्वज फहराकर पूरी दुनिया के सामने भारत की आजादी की मांग रखी। इसलिए बच्चों, उन्हें भारत की महान वीरांगनाओं में गिना जाता है। बच्चों, लंबे समय तक देश की सेवा करने के बाद उनका 13 अगस्त 1936 को मुंबई में निधन हो गया। बच्चों, हमें भी भीकाजी के जीवन से देश प्रेम, साहस, निस्वार्थ सेवा और कभी हार न मानने की प्रेरणा मिलती है। हमें भी अपने देश का सम्मान करना चाहिए और एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। तो बच्चों, ये थी जानकारी भीकाजी कामा जी के विषय में। अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये जरूरी संदेश।

0: perasaan lo apa jantan gak ehsas.
1: बच्चों, आपने कभी किसी किताब, दुकान, अस्पताल या रेलवे टिकट पर छोटे छोटे काले और सफेद चौकोर से बनाए खास निशान देखा है? जी हाँ, इसे कहते हैं QR कोड। आज हम आपको इसी की जानकारी देंगे। बच्चों, इसका पूरा नाम है क्विक रिस्पॉन्स, जिसका अर्थ है तुरंत जवाब। इसका मतलब है कि यह बहुत जल्दी जानकारी पढ़ने और पहुंचाने का काम करता है। अब आप सोच रहे हैं कि QR कोड के अंदर क्या होता है, तो इसमें अक्षरों, अंकों और दूसरी जानकारी के खास तरीके से छिपा कर रखा जाता है। जब हम मोबाइल के कैमरे या QR स्कैनर से इसे स्कैन करते हैं, तो कुछ ही सेकंड में वह जानकारी हमारे स्कैन पर दिखाई देने लगती है। ये जानकारी किसी वेबसाइट का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, वीडियो, किताब, टिकट या ऑनलाइन भुगतान से जुड़ी हो सकती है। और बच्चों, इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी और जापान की कंपनी डेंसो वेव ने इसे बनाया था। शुरुआत में इसका यूज कारों के पुर्जों की पहचान करने के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में इसकी उपयोगिता इतनी बढ़ गई कि आज पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होने लगा। आज इसका यूज कई जगह होता है, दुकानों पर मोबाइल से भुगतान करने के लिए, स्कूलों की किताब में पढ़ाई

वीडियो देखने के लिए, रेलवे, हवाई अड्डे और अस्पतालों में मरीजों की जानकारी रखने के लिए। लेकिन बच्चों, एक बात हमेशा याद रखिए, हर QR कोड सुरक्षित नहीं होता है। किसी अनजान जगह पर लोग इस कोड को बिना किसी बड़े की अनुमति के कभी भी स्कैन आप बच्चे ना करें, क्योंकि कुछ गलत कोड आपको नुकसान पहुंचाने वाली वेबसाइट पर भी ले जा सकता है। बच्चों, इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यदि इसका थोड़ा सा हिस्सा फट जाए तो ये खराब हो जाए, तब भी कई बार इसे स्कैन किया जा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी ये विशेषता है, तो बच्चों, आप जब भी आपको कहीं ये कोड दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि एक छोटा सा स्मार्ट कोड है जिसके अंदर आप बहुत सारी जानकारियां छिपी हैं और जिसे मोबाइल कुछ ही सेकंड में पढ़ सकता है। तो बच्चों, ये थी जानकारी आपको QR कोड के विषय में। तो प्यारे बच्चों, आप सुन रहे हैं अपना कार्यक्रम बाल वाटिका, और आप ये वैसे तो ये कार्यक्रम हमारे बच्चों का है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम हम आपके घर में जितने भी लोग हैं सब सुने और उनका जो भी सुझाव है वो हमें भेजें। वैसे तो ये कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा है, आप लोग पत्रों द्वारा हमें बताते हैं कि आपको हमारी जानकारी, हमारी कहानी, हमारे गाने, हमारी बालमुख, आपको सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप लोग कुछ और भी सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे, क्योंकि हम इसे और भी बेहतर बना सकते हैं अगर आप अपना सुझाव देंगे। तो बच्चे, आप सोच रहे होंगे कि दीदी ने इतनी सारी बातें बता दी लेकिन मनोरंजन तो हुआ ही नहीं, तो ऐसे कैसे हो सकता है भाई? तो क्यों ना चलते हैं, ये सुंदर सा गीत सुन लेते हैं।

कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दांत दांत, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।

तो बच्चों कैसा लगा आपको ये गीत? हमें उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। बच्चों वैसे तो देखिए बरसात का मौसम है, थोड़ी सी टिप्स दे दी जाए आप लोगों को। बच्चों बरसात का मौसम बहुत सुहावना होता है, लेकिन इस मौसम में कई तरह की बीमारियां और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए थोड़ा बहुत आप लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए बरसात में। सबसे पहले बारिश में भीगने से बचें। बहुत देर तक बारिश में भीगने से सर्दी, जुकाम और बुखार हो जाता है, और यदि भीग गए तो घर जाकर तुरंत गीले कपड़े उतारें और सूखे कपड़े पहनें और साफ सुरक्षित पानी पिएं, क्योंकि बरसात में पानी दूषित होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा फिल्टर किया हुआ या उबला हुआ ही पानी पिएं, और बाहर का खुला हुआ खाना तो बिल्कुल ना खाएं। सड़क पर किनारे खुले हुए जो कटे हुए फल होते हैं या चीज़ें जो मिलती हैं बरसात में, बच्चों इनमें कीटाणु बहुत जल्दी पनप जाते हैं, इसलिए इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए आप इससे ज़रूर बचें, और हाथ को साफ रखें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोएं। गंदे हाथों से आँख, कान, नाक, मुंह को बार बार बिल्कुल न छुएं। और बच्चों कीचड़ और गंदे पानी से भी दूर रहें। सड़क पर जो होता है ना जमा पानी, चलने और खेलने से जो बच्चे पानी में कीचड़ में कूदते हैं ना बच्चों, उससे तो बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि उस पानी में ना बहुत सारे हानिकारक कीटाणु हो सकते हैं। और बच्चों बिजली के खंभों और तारों से तो बहुत दूर रहें। बारिश के समय बिजली के गिरे हुए तार या बिजली के उपकरण बहुत खतरनाक हो सकते हैं। किसी भी गिरे हुए तार को कभी न छुएं, और तुरंत किसी बड़े, अगर मान लो आप कोई तार आपको दिख रहा है कि इस तरह सड़क पे पड़ा हुआ है, तो आप किसी बड़ों को बुलाएं और उसको हटाने की कोशिश करें। और बच्चों मच्छरों से तो बहुत बचें, क्योंकि इस मौसम में मच्छरों को तो बिल्कुल ही ऐसा होता है जैसे किसी फंक्शन में जाना हो, ढेर सारे मच्छर आपके कानों में और शरीर में सब में भन भन करते हुए काटते हुए नजर आएंगे। तो आप लोग घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि रुका हुआ पानी मच्छरों के पनपने का स्थान बन सकता है। और मच्छरों से बचने के लिए पूरी आस्तीन के कपड़े पहने और घर में मच्छरदानी का यूज करें। और बच्चों जो फिसलने वाली जगह पर तो बिल्कुल ना जाएं, जैसे गीले फर्श हैं, सीढ़ी और कीचड़ वाली जगह पर तो धीरे धीरे चलें, और दौड़ना और धक्का मुक्की करने से तो बहुत बचें। और बच्चों स्कूल जाते समय भी बारिश में सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं और पानी भी जमा हो सकता है, तो सड़क पार करते समय हमेशा दोनों ओर देखकर ही सड़क पार करें और यातायात के नियमों का भी पालन करें, और साथ में अपने

स्वच्छता का तो बहुत ही ध्यान रखें, अपने घर, स्कूल और आसपास की जगह को साफ रखें, कूड़ा कचरा इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि इससे पानी रुक सकता है और मच्छर और अन्य कीट भी पैदा हो सकते हैं। तो बच्चों याद रखिए, बरसात का मौसम तभी आनंददायक है जब हम सावधानी और स्वच्छता का ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी हमें कई बीमारियों और दुर्घटनाओं से बचा सकती है। तो प्यारे बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि दीदी ने इतनी सारी बातें बता दी लेकिन कहानी तो सुनाई नहीं, तो ऐसे कैसा हो सकता है भाई हम अपने बच्चों को कहानी ना सुनाएं। तो चलिए सुनते हैं कहानी असली स्वर्ग। बच्चों, बहुत पहले की बात है, एक गोपाल था जो बहुत आलसी व्यक्ति था। घर वाले भी उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। वह हमेशा से ही चाहता था कि उसे एक ऐसा जीवन मिले जिसमें वह दिन भर सोए और जो चाहे उसे बिस्तर में ही मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ, गोपाल की मृत्यु हो गई और मरने के बाद वह स्वर्ग में पहुंच गया जो उसकी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर था। गोपाल सोचने लगा, काश मैं इस सुंदर स्थान पर पहले आ गया होता, बेकार में धरती पर रहकर काम करना पड़ता था। खैर, अब मैं आराम की जिंदगी जीऊंगा। और ये सब सोच ही रहा था कि एक देवदूत उसके पास आया और हीरे जवाहरात जड़े बिस्तर की ओर इशारा करते हुए बोला, आप इस पर आराम करें और आपको जो कुछ भी चाहिए होगा बिस्तर पे ही मिल जाएगा। ये सुनकर गोपाल बहुत खुश हुआ। अब वह दिन रात खूब सोता, उसे जो चाहिए होता बिस्तर पे ही मंगवा लेता। कुछ दिन तो इस तरह चलता रहा, लेकिन जब वह उकताने लगा, उसे ना दिन में चैन था ना रात में नींद। जैसे वह बिस्तर से उठने लगा, दास दासी उसे रोक देते। इस तरह कई महीने बीत गए। गोपाल को आराम की जिंदगी अब बोझ लगने लगी। अब वो स्वर्ग में उसे जो स्वर्ग में जो उसकी जितनी खुशियां थी, जितने ऐशो आराम थे ना, सब उसे बेचैन करने लगे और वो चाहता था कि वो कुछ काम करे जिससे वो अपना जीवन बिताए। एक दिन वह देवदूत के पास गया और उससे बोला, मैं जो कुछ करना चाहता था वह सब कुछ करके देख चुका हूँ। अब तो मुझे नींद भी नहीं आती, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, क्या मुझे कुछ काम मिलेगा? तो देवदूत बोला, आपको यहाँ आराम करने के लिए लाया गया है, यही तो आपके जीवन का सपना था। माफ कीजिए, मैं आपको कोई काम नहीं दे सकता। तो बेचारा गोपाल जो चिढ़कर बोला, अजीब बात है, मैं इस जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ, अब मैं इस तरह अपना वक्त नहीं गुजार सकता, इससे अच्छा तो आप मुझे नरक में भेज दीजिए। तो बच्चों, देवदूत ने धीमे स्वर में कहा कि आपको क्या लगता है, आप कहाँ हैं, स्वर्ग में या नरक में? तो गोपाल बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तो देवदूत बोला, असली स्वर्ग वही होता है जहाँ मनुष्य दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उनके साथ आनंद के दिन बिताता है, पल बिताता है और जो सुख सुविधाएं मिलती हैं उन्हीं में खुश रहता है। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं किया, आप तो हमेशा आराम करने की ही सोचते रहे। जब आप धरती पर थे तब आराम करना चाहते थे, अब आपको आराम मिल रहा है तो आप काम करना चाहते हैं, अब आप स्वर्ग के आनंद से भी उकता गए हैं। गोपाल बोला, शायद अब मुझे समझ में आ गया है कि मनुष्य को काम के समय काम और आराम के समय आराम करना चाहिए, दोनों में से एक भी चीज ज्यादा हो जाए तो जीवन में नीरसता आ जाती है। सच है बच्चों, उसने कहा कि मेरे जैसे आलसी व्यक्तियों के लिए तो एक दिन भी स्वर्ग में नरक के समान बन जाता है। तो बच्चों, अब जब गोपाल ये सोच ही रहा था, एकदम से उसकी आंख खुल गई तो उसे लगा, ओ ये तो सपना देख रहा था। फिर उसे समझ में आया कि सच में मुझे आलस नहीं करना चाहिए, मुझे काम के समय काम और आराम के समय आराम करना चाहिए। अब उसे समझ में आ गया। उसके बाद उसने अपना जो टाइम शेड्यूल था बिल्कुल सेट कर लिया और वो बहुत ही अच्छा आदमी बन गया। तो जी हाँ बच्चों, आपको भी काम के समय काम और आराम के समय आराम करना चाहिए। तो बच्चों, अब हमारी घड़ी कह रही है कि अब चलने का समय हो गया है। तो प्यारे बच्चों, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले संडे को। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार से पढ़िए और मम्मी पापा की सबकी बात मानते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।

तुझे मन मारो मोये लियो सा सावरो मेरे मन मारो।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं, आप इस समय लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत राजस्थानी लोकगीत सुन रहे हैं। कलाकार हैं बनारसी लाल झूरी। कार्यक्रम में सुनते हैं एक और राजस्थानी लोकगीत।

0: killed and another seriously injured when a car hit them on the Sarhind GT Road early morning today. They were returning from Kotakpura in Punjab's Faridkot district after carrying holy water from Gangotri in Uttarakhand. Police have registered the case and efforts underway to trace the driver who fled the spot. In China, Shanghai's two airports cancelled more than 1,300 flights and authorities relocated over 3 lakh people in surrounding regions as the country prepared for Typhoon Dolphin. The outer bands of the storm hit northern Taiwan yesterday, including the capital Taipei, bringing rain. Some Taiwanese airlines also cancelled their flights to China. Iran insists on U.S. concessions before opening the Strait of Hormuz. Security Chief of Iran, Mohammad Bagheer Jolgar, has issued a list of demands for the U.S. to fulfill before Iran would reopen the Strait of Hormuz. Published by state media, the list includes measures such as lifting the U.S. naval blockade, withdrawing military forces, and permanently ending the war. Secretary of Iran's Supreme National Security Guard, Zolgadr, has also called for the U.S. to compensate Iran for damage caused by the conflict and release frozen Iranian assets. In Canada, the westernmost province of British Columbia has declared a state of emergency as a fast-moving wildfire destroyed homes, trapped residents, and forced more than 20,000 people to flee communities. Premier David Eby announced the emergency as more than 100 wildfires burned across the province. Nearly half of them were out of control. Eby said that some residents were trapped and had to be rescued. The entire community of Summerland, home to about 12,000 people, was ordered evacuated overnight, along with about 8,000 people in and around nearby Peachland. In badminton, India's Ashmita Chalia has clinched the women's singles champion at the Korea Masters tournament today. Ashmita defeated China's Han Qianxi. The shuttler recovered from losing the opening game to prevail 14-21, 21-14, 21-14 in 53 minutes. With this win, she claimed her first BWF title. She has also become the first Indian to win the Korea Masters, and it's the second consecutive women's singles title for India after Tanvi Sharma's victory at the Taipei Open last week. India's medal tally rises to 3 at the World Athletics Under-20 Championship in the United States. Basant Kumar Meghwal won a silver in high jump, while Shahnawaz Khan wins a bronze in a long jump today. In men's high jump, 19-year-old Meghwal cleared his personal best of 2.21 meter to win a silver medal. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country to celebrate patriotism and national unity. Home Minister Amit Shah says 3 new criminal laws introduced by government are aimed at providing time-bound justice through technology-driven mechanism. NIA arrests one who accused in connection with seizure of huge consignment of illegal explosives in Mallapuram, Kerala. Fresh rains revive floods concerns in Odisha with water level rising in several rivers. Alert issued for very heavy rainfall of Uttarakhand and Chhattisgarh today. In China, more than 1,300 flights cancelled and over 3 lakh people relocated ahead of Typhoon Dolphin. And in badminton, Ashmita Chalia clinches her first BWF World Tour title at the Korea Masters 2026. And with that, we end the Midday News.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा मुख्य समाचार देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू गृहमंत्री अमित शाह ने कहा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा फिर से बाढ़ की आशंका उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा अभियान यात्रा रवाना की। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: हर घर तिरंगा।
3: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने डॉ BR आम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था।
4: इट इज इंडीड टू प्लेजर टू लॉन्च दिस कैंपेन टुडे ऑन द ऑगस्ट क्रांति दिवस एज वी कमेमोरेट द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। मिलियंस ऑफ इंडियंस रिस्पॉन्डेड टू दिस कॉल एंड रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश विद द अनवायरिंग रिजॉल्व ऑफ डू ऑर डाई ऑन दिस डे। इट इज देयरफॉर डीपली सिग्निफिकेंट दैट वी लॉन्च द हर घर तिरंगा कैंपेन फ्रॉम द हिस्टोरिक आइलैंड्स ऑन दिस हिस्टोरिक डे।
1: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर हैं। इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
5: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक जितने भी हमारे शहीद स्मारक हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहाँ पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
1: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
6: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर तीन भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये तीन पिलर पर खड़ी की गई है।
1: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
6: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन पोस्ट के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
1: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
7: सरकार की 4 सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर जेकेएलएम विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं रांची के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने सीबीआई और ईडी जांच, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस कांस्टेबल शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि यह राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों के 3,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
8: तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई। इससे तेज बारिश हो रही है जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और इसके चचियांग प्रांत और पड़ोसी फुचियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चचियांग में भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगशाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाई ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
9: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बस्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक और अनेक। श्रोताओं, स्वागत है आज का कार्यक्रम लेकर। मैं उपस्थित हूं आपका रेडियो दोस्त लोकेंद्र। श्रोताओं, आज इस फिल्म संगीत के कार्यक्रम एक और अनेक में हमने चुना है गीतकार नक्श लायलपुरी और उनके साथ साथियों को। श्रोताओं, नक्श लायलपुरी का जन्म 24 फरवरी 1928 को हुआ था। उनका जन्म लायलपुर, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। नक्श लायलपुरी हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध उर्दू शायर और गीतकार रहे हैं।

उनका वास्तविक नाम जसवंत राय शर्मा था। नक्श लायलपुरी का जन्म पंजाबी परिवार में हुआ था। आपके पिताजी मैकेनिकल इंजीनियर थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा भी इंजीनियर बने, लेकिन जसवंत का साहित्य के प्रति लगाव अधिक था।

0: श्रोताओं, अभी आपने लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म दिल की राहें का ये गीत सुना। ये गीत नक्श लायलपुरी का लिखा हुआ था और इस गीत के लिए संगीत मदन मोहन ने तैयार किया था। श्रोताओं, नक्श लायलपुरी ने अपने करियर में मदन मोहन, नौशाद और खयाम जैसे महान संगीतकारों के साथ काम किया। हिंदी सिनेमा के अलावा आपने 350 से अधिक पंजाबी फिल्मों और गीतों के लिए भी बेहतरीन रचनाएं की।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
2: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
3: तो इंतजार किस बात का,
2: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
3: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8865845809।
2: और हमारा ईमेल आईडी है
3: akashwaninajibabad@gmail.com।
2: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोताओ, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम एक और अनेक सुन रहे हैं। श्रोताओ, गीतकार नक्श लायलपुरी का शुरुआती जीवन संघर्षमय रहा। वर्ष 1946 में 18 साल की उम्र में जसवंत यानी नक्श लायलपुरी काम की तलाश में लाहौर चले गए और एक प्रकाशन संस्था में आप नौकरी करने लगे। 1947 में देश विभाजन के पश्चात आपका पूरा परिवार लखनऊ उत्तर प्रदेश में आकर बस गया। 1951 में नक्श लायलपुरी मुंबई चले गए और अंग्रेजी के प्रतिष्ठित अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रूफ रीडर के रूप में नौकरी करने लगे। कार्यक्रम में श्रोताओं सुनते हैं जीना है प्यार में, इस फिल्म का गीत किशोर कुमार और आशा भोंसले के स्वर में। गीत के लिए शब्द रचना नक्श लायलपुरी की है और संगीत बासु मनोहरी का है।

श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम एक और अनेक सुन रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हमने चुना है गीतकार नक्श लालपुरी को। श्रोताओं, शुरुआती दौर में काम न मिलने के कारण नक्श लालपुरी का जीवन संघर्ष में रहा। आपने पंजाबी सिनेमा का रुख किया और पंजाबी फिल्मों के लिए बहुत सारे गीत लिखे। आपको फिल्म चेतना, जो वर्ष 1970 में आई थी, उसके गाने मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, इस गाने से बड़ी पहचान मिली। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म चेतना का यही गीत मुकेश के स्वर में, और

श्रोताओं, अभी आपने मुकेश के स्वर में फिल्म चेतना का ये गीत सुना। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम एक और अनेक सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में सुनते हैं सुलक्षणा पंडित को फिल्म आहिस्ता आहिस्ता में। गीत नक्श लालपुरी का है और संगीत मोहम्मद जहूर खयाम का है।

श्रोताओं, अभी आपने फिल्म आहिस्ता आहिस्ता का ये गीत सुना सुलक्षणा पंडित के स्वर में। श्रोताओं, एक और अनेक कार्यक्रम में आप इस समय सुन रहे हैं गीतकार नक्श लहलपुरी। श्रोताओं, अपने फिल्मी करियर में नक्श लहलपुरी ने अनेक फिल्मी गीतों को लिखा, जिसमें फिल्म जग्गू, घरौंदा, चेतना, दिल की राहें, कॉल गर्ल, तुम्हारे लिए, दर्द, आहिस्ता आहिस्ता, हिना आदि शामिल रही हैं। आपने अपने लंबे करियर में मर्मस्पर्शी, रोमांटिक और भावनात्मक गीत लिखे, जिन्हें आज भी संगीत प्रेमियों के द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। प्रसिद्ध गीतकार नक्श लहलपुरी ने वर्ष 1979 में आई फिल्म खानदान में एक महत्वपूर्ण गीतकार के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के एक गीत के लिए आपको बहुत ही मशहूर, इस फिल्म के लिए एक गीत ने आपको मशहूर किया। सुनते हैं वही गीत लता मंगेशकर के स्वर में, और इस गीत के लिए आपके साथ संगीत तैयार किया है खय्याम साहब ने।

श्रोताओं, नक्श लायलपुरी के लिखे इस गीत ने फिल्म खानदान की इस फिल्म की भावनात्मक और पारिवारिक कहानी को संवारने में अहम भूमिका निभाई थी। तो श्रोताओं, फिल्म खानदान के इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक और अनेक संपन्न करने की अपने दोस्त लोकेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं। हमारे केंद्र से आज की सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। अपनी दूसरी प्रसारण सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे नित्य चर्चाएं करते हैं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के विषय में। तो आज इसी क्रम में हम आपसे किसानों की आय बढ़ाने हेतु सरकारी उपायों के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि बाजार और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विषय में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ईनाम के विषय में। ईनाम के तहत रजिस्टर्ड होकर किसान अपनी उपज अच्छी कीमत पर कहीं भी बेच सकते हैं। किसान ईनाम पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए स्वतंत्र हैं और वे सभी ईनाम मंडियों पर व्यापारियों के साथ ऑनलाइन के माध्यम से बिक्री के लिए अपनी उपज को अपलोड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस विषय में बताया कि अब तक लगभग 1.70 करोड़ से अधिक किसान और 1.63 लाख व्यापारी ईनाम प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हुए हैं। किसान ईनाम पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए स्वतंत्र हैं और ये सभी ईनाम मंडियों पर व्यापारियों के साथ ऑनलाइन के माध्यम से बिक्री के लिए अपनी उपज को अपलोड कर रहे हैं। सरकार ने अब तक देश की 585 मंडियों को ईनाम के तहत जोड़ा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के तहत काम करने वाला लघु कृषक कृषि व्यापार संघ ईनाम को लागू करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। सरकार की योजना इस साल 200 और अगले साल 215 और मंडियों को इससे जोड़ने की है। राष्ट्रीय कृषि बाजार ईनाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2016 को की थी। सरकार ने इसे कृषि उत्पादों के लिए वन नेशन वन मार्केट के निर्माण के उद्देश्य से किया था। कृषि बाजार को मजबूत बनाने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। इसके तहत किसान अपने नजदीकी बाजार से अपने उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं और साथ ही व्यापारी कहीं से भी किसानों को पैसा भेज सकते हैं। ईनाम ने किसान और खरीदार के बीच से बिचौलियों को खत्म कर दिया। इसका लाभ अब किसानों के साथ साथ ग्राहकों को भी मिल रहा है। देश भर में करीब 2700 कृषि उपज मंडियां और 4000 उपबाजार हैं। ईनाम से पहले उपज मंडी समितियों के भीतर या एक ही राज्य की दो मंडियों में खरीद बिक्री होती थी, मगर इस प्लेटफॉर्म के तहत आने वाली सभी मंडियों के बीच अब कारोबार आसान हो गया है। तो ये तो बात हुई ईनाम

और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विषय में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसे 1 जुलाई सन 2015 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल के तहत सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना और पानी की बचत करना है। इसके मुख्य उद्देश्य और विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसके जरिए कृषि योग्य भूमि तक पानी की पहुंच को बढ़ाना, आधुनिक तकनीक यानी कि ड्रिप, ये टपका या स्प्रिंकलर यानी कि फुव्वारा सिंचाई को बढ़ावा देना, जल संरक्षण के माध्यम से वर्षा जल का संचयन और भूजल स्तर में सुधार करना इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। और साथ ही साथ इस योजना के तहत यदि हम किसानों को इस तरह की सिंचाई की सुविधाएं दे पाएंगे तो उससे किसानों की लागत में भी कमी आएगी, जिससे किसानों को सिंचाई के खर्च को कम करने में मदद मिलेगी और उनकी पैदावार बढ़ सकेगी। अगर इस योजना के मुख्य घटकों की बात की जाए तो एकदम सिंचाई लाभ कार्यक्रम, बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करना, हर खेत को पानी इस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराना और प्रति बूंद अधिक फसल इस योजना के माध्यम से किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए मदद करना इस योजना की प्रमुख घटक हैं। वर्षा जल संरक्षण और भू जल पुनर्भरण करना भी इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है। किसानों के लाभ और सब्सिडी, आधुनिक सिंचाई यंत्रों की खरीद पर सरकार द्वारा किसानों को लगभग 45% से 55% तक की सब्सिडी दी जाती है। इस योजना की आधिकारिक जानकारी और दिशा निर्देश प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पोर्टल पर देखे जा सकते हैं। और अब चलते चलते आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है जानकारी आज की सभा के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। पहले जानकारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के विषय में।

आज रात्रि 9:30 पर नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर और अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा आज रात्रि 10:00, ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी में आज शाम 5:15 पर झलकी कल मिलने आऊंगी सुनवाई जाएगी। प्रतिभागी कलाकार होंगे मोनिका सैनी, प्रियंका त्यागी और वाणी कौशिक। प्रस्तुतकर्ता होंगे शोभित शर्मा। किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में श्री मुकेश कुमार, सहायक विकास अधिकारी कृषि ब्लॉक कोतवाली बिजनौर से जितेंद्र कुमार की बातचीत सुनवाई जाएगी, जिसका विषय होगा उर्दू और मूंग की फसल में समसामयिक कार्य। विविधा क्रम में आज शाम 6:45 पर श्रीमती चंद्रकला देवी की लिखी कहानी एक जज का न्याय सुनवाई जाएगी। छायागीत होंगे आज शाम 6:55 पर। सुगम संगीत में आज शाम 7:32 पर फरीदा खानम की गाई चंद गजलें सुनवाई जाएंगी।

अदबी दुनिया कार्यक्रम में आज शाम 7:50 पर कलाम शायर प्रस्तुत करेंगे श्री अलमास रोमानी। गीत संध्या कार्यक्रम सुनिएगा आज रात्रि 8 बजे। आज रात्रि 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये थी जानकारी हमारे आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के विषय में। और अब एक नजर कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर।

कल रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और कल रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल सवेरे 6:05 पर सुनिएगा

भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। श्री रामचरित मानस गान की संगीतमय प्रस्तुति हम आपको सुनवाएंगे कल सवेरे 6:30 पर। काव्यधारा क्रम में कल सवेरे 6:45 पर श्रीमती फूलमाला का काव्य पाठ सुनवाया जाएगा। सूरज के साथ साथ कार्यक्रम सुनिएगा कल सवेरे 7:31 पर। कल सवेरे 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। गीत तुम्हारे कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे कल सवेरे 10:00। कल सवेरे 9:25 पर धरती गाती है कार्यक्रम में भुवनेश गिरी की गाई चंदुरागनी सुनवाई जाएंगी। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग हम आपको सुनवाएंगे कल दिन में 11:30 पर। शास्त्रीय संगीत में कल दोपहर 12:05 पर प्रमोद प्रसन्ना का बांसुरी वादन सुनवाया जाएगा। मिड डे मेलोडी हम आपको सुनवाएंगे कल दोपहर 12:30 पर। परिवार जगत कार्यक्रम सुनिएगा कल दोपहर 1:15 पर। लोकधारा कार्यक्रम में कल दोपहर 1:45 पर रेशमा के गाए जौनसारी लोकगीत सुनवाए जाएंगे। नई फिल्मों से ये कार्यक्रम सुनिएगा कल दोपहर 2:30 पर। कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत आप सुन सकते हैं कल शाम 5:00। कल शाम 5:15 पर होगा युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में कल शाम 6:05 पर प्रोफेसर एस एल पाल प्राध्यापक उद्यान विभाग आरएसएम महाविद्यालय धामपुर से हिमांशु रंजन की बातचीत का विषय होगा फल तुड़ाई उपरांत फलदार बागों का प्रबंधन। विविधा क्रम में कल शाम 6:45 पर श्री राहुल नील से शोभित शर्मा की बातचीत का विषय होगा जनपद बिजनौर का इतिहास लेखन। अभी आप सुन रहे थे आज की सभा के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युवाणी में। और मैं आपकी अपनी दोस्त और वन ऑफ द होस्ट वाणी कौशिक,
1: और वाणी के साथ स्टूडियो में आज मौजूद हूँ मैं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट मोनिका सैनी। और एक बार फिर से हम आ गए हैं अपने प्यारे प्यारे लिस्टर से चटपटी बातें करने।
0: मोनिका, तुम्हारी चटपटी बातें सुनकर ना मुझे चटपटी भूख याद आ गई यार।
1: हाँ, भूख भूख भूख, इतवार की शाम हो, चटपटी भूख का जिक्र ना हो ऐसा नहीं हो सकता ना। लेकिन उससे पहले अभी तुम्हें चटपटी भूख को एक साइड रखकर चटपटी बातों पर ध्यान देना होगा।
0: ओके ओके मोनिका, वैसे आजकल मौसम कितना अच्छा हो रहा है।
1: हाँ, कभी बारिश कभी धूप और कभी तो सिर्फ और सिर्फ बादल। और सावन जो है उसके एक अपनी अलग पॉजिटिविटी भी तो है।
0: हाँ मोनिका, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन दोस्तों, ऐसा मौसम हमारी सेहत पर हावी हो सकता है। जल्दी हमारी बीमारियां, ऐसे मौसम में बीमार पड़ सकते हैं, हमारा शरीर पर हावी हो सकती हैं ये बीमारियां। तो प्लीज अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा वाणी तुमने। कभी बारिश हो जाती है कभी धूप हो जाती है, तो हमें ऐसे बिल्कुल नहीं भीगना है। कभी कभी भीग सकते हैं, हम ये भी नहीं कह रहे कि आपको बारिश का बिल्कुल एंजॉय ही नहीं लेना है। कभी कभी भीगे लेकिन अपना ख्याल भी पूरा रखिए।
0: तो मोनिका, चटपटी बातें तो हो गई और प्रोग्राम में होती ही रहेंगी, अब चटपटे गाने शामिल कर लें।
1: बिल्कुल, तो चलिए दोस्तों फिर आपको सुनवाते हैं आज की शाम का ये पहला सा खूबसूरत सा गीत।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: दोस्तों एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका स्वागत है इस प्यारे से खूबसूरत से गीत के बाद। तो चलो वाणी चलते हैं अब हमारे सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट की तरफ,
2: यानी कि कुछ खास है आज, जिसमें हम अपने लिसनर्स से बातें करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, फैक्ट्स एंड डेज के बारे में।
1: और आज का स्पेशल डे है नागासाकी डे,
2: जो कि हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त हर साल वो इतिहास की काली सुबह होती है जो हमें याद दिलाती है कि 9 अगस्त 1947 को अमेरिका ने जापान पर नागासाकी शहर पर फेटमैन नाम का एक एटॉमिक बम गिराया था,
1: और इस एक हमले ने पल भर में हजारों बेकसूर लोगों की जान ले ली थी और शहर को मलबे के रूप में बदल दिया था, जिसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ा।
2: मोनिका कहते हैं ना, जंग में जीत किसी की भी हो, लेकिन कीमत हमेशा

0: आम आदमी को चुकानी पड़ती है। आज उसी ही इतिहास से सबक और शांति का पैगाम हम सबको फैलाना चाहिए।
1: बिल्कुल दोस्तों, इस दिन को याद करने का मेन पर्पस हिस्ट्री को दोहराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को ये याद दिलाना है कि न्यूक्लियर अटैक ह्यूमन बॉडी, लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है और शांति हमारे लिए कितनी जरूरी है।
0: दोस्तों, आज नागासाकी दिवस पर सिर्फ सवाल हिस्ट्री का नहीं, हिस्ट्री को याद करने का नहीं, बल्कि इंसानी समझ का है कि क्या ताकत के नशे में हम इतना चूर हो गए कि सब कुछ तबाह कर देंगे।
1: नहीं वाणी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सब आज मिलकर यही संकल्प लेंगे कि कभी ऐसा नहीं करेंगे।
0: बिल्कुल मोनिका, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दोस्त हमारी बात को समझेंगे और उस पर अमल करेंगे।
1: तो चलिए आपसे मिलते हैं इस एक जरूरी संदेश के बाद।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फसा।
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।
6: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
7: बेटा,
6: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
7: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
8: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
7: चलो,
6: कहाँ
7: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव।
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो चलो मोनिका, संडे की स्पेशल झलकी का अनाउंसमेंट करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, ये प्ले बहुत ही मिक्स इमोशंस पर बेस है एंड प्ले का नाम है कल मिलने आऊंगी, जिसे डायरेक्ट किया है शोभित शर्मा जी ने और जिसके प्रतिभागी कलाकार रहे थे मोनिका सैनी, प्रियंका त्यागी और खुद मैं वाणी कौशिक,
1: और जिसकी राइटर है हमारी साथी वाणी कौशिक। तो चलिए आपको सुनवाते हैं एक इमोशन से भरपूर झलकी।

0: अम्मा आज ना मार्केट में वही वाली साड़ी दिखी थी, वो जो आपने पिछली बार पसंद की थी।
1: अच्छा सच में तुझे वो साड़ी फिर से दिखी थी, तो तूने ली क्यों नहीं फिर उसको?
0: अरे बस इतनी महंगी थी, क्या कर दी, आप होती तो मोल भाव करवा देती ना।
1: हाँ वो तो है बेटा, जो बात है, अगर मैं होती तो मोल भाव तुझे करवाई देती। तू ना भोली रह गई इस मामले में, तुझे बिल्कुल मोल भाव करना नहीं आता सच में।
0: हाँ। चलो फिर कल आऊंगी मिलने, कुछ खास खाना है क्या आपको?
1: अरे तेरी पसंद का कढ़ी चावल बना दूंगी ना, जैसे हमेशा बनाती हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना वो।
0: हाँ परफेक्ट, ठीक है फिर कल मिलते हैं। आई लव यू अम्मा।
1: लव यू टू बेटा। अरे तैयार नहीं हुई अभी तक, हमें निकलना है ना आधे घंटे में।
0: हाँ बस अम्मा से बात कर रही थी, तू भी आ जा अंदर।
2: रौनक किससे बात कर रही थी तू?
0: अम्मा से, क्यों?
2: बैठना दो मिनट के लिए।
0: अरे क्या हुआ, तू इतना सीरियस क्यों हो रही है?
2: तेरी अम्मा को गुजरे 1 साल हो गया है।
0: नहीं मैंने अभी तो बात की है उनसे, और कल मिलने भी जाना है।
2: रौनक वो पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं, अम्मा के वो वॉइस नोट जो तूने अपने फोन में से

0: कर रखे हैं। याद है तुझे, कभी कभी तू उनसे बात करने लगती है।
1: मुझे लगा वो,
0: मैं जानती हूँ, मुझे भी अजीब नहीं लगा सुनकर कि तू उनसे बात करती है। बस मुझे कभी कभी डर लगता है कि तू अकेले ये सब झेल रही है।
1: वो आवाजें, वही तो है ना जो मेरे पास बची हैं रिया।
0: पता है, कोई जल्दी नहीं है उन्हें छोड़ने की। बस अकेले सुना मत कर, कभी कभी मुझे भी अपने साथ बिठा लिया कर।
1: शायद अब वक्त आ गया है उन्हें जाने देने का। ऐसा नहीं कि भूल जाऊं, बस हर सुबह का हिस्सा बनाना बंद कर दूं।
0: जाने देना भूल जाना नहीं होता रौनक, बस दर्द को थोड़ी जगह देना होता है ताकि यादें भी सांसें ले सके। तू अकेली नहीं है, और तू अकेली नहीं है ये सब उठाने के लिए। जब तक मैं हूँ, तेरी अम्मा की आवाज भी अकेली नहीं पड़ेगी। एक बात कहूँ, अगर तुझे ज्यादा अकेलापन लगे और संभालना भारी पड़ जाए तो तू एक अच्छे थेरेपिस्ट के पास चली जा। तू उनसे वो बात कर सकती है जो तू मुझसे भी नहीं कर पाएगी।
1: अकेले नहीं जाना पड़ेगा फिर?
0: बिल्कुल नहीं, मैं हूँ ना, मैं चलूंगी तेरे साथ।
1: हाँ ठीक है, फिर मैं तेरे साथ चलूंगी थेरेपिस्ट के पास। और रिया, मैं ठीक हो जाऊंगी, आज नहीं पर हो जाऊंगी। दोस्तों, अभी तो आपने सुनी ये एक प्यारी सी खूबसूरत सी झलकी, तो चलिए आपको सुनवाते हैं इसी झलकी से मिलता जुलता एक खूबसूरत सा गीत।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
2: सुनती हो भगवान? जरा मैं बाजार तक जा रहा हूँ।
3: हाँ हाँ सुनो सुनो, मुझे सुनानी एक बात सुनानी है। बाजार जा रहे हो ना, तो जरा मेरा सामान ले आना।
2: क्या सामान लाना है, जल्दी बोल।
3: बाजार से दूध का एक पैकेट ले आना, और हाँ अगर बाजार में नींबू दिखे तो 6 ले आना।
2: अच्छा चल आता हूँ, ले अपने सामान पकड़।
3: 6 पैकेट दूध?
2: हाँ 6 पैकेट ही तो लाया हूँ, क्योंकि बाजार में नींबू दिख गए थे।
1: यहाँ मजा आ गया।
4: चलिए दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं हमारे सेगमेंट मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया की तरफ, जिसमें आप सुनेंगे 80वें स्वतंत्रता दिवस के रनअप पर विशेष कार्यक्रम।
3: दोस्तों हम लेकर आ गए हैं आपके लिए अपना खास सेगमेंट मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जहां हम बात करते हैं कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जिनके साहस और बलिदान की कहानी थोड़ा पीछे रह गई, दुनिया के सामने ज्यादा नहीं आ पाई, और जिनमें से आज हम बात करेंगे अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में।
2: और जाएंगे स्टूडियो से बाहर और देखेंगे हमारे शहर के कितने लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो इनके बारे में जानते हैं।
3: तो चलो फिर वाणी, दोस्तों आ गए हैं हम स्टूडियो के बाहर और हमें हमारे यूथ साथी में से ही एक साथी मिली है, तो चलो फिर उनसे बात कर लेते हैं।
2: तो चलो मोनिका, सबसे पहले पूछते हैं इनसे इनका नाम और जानते हैं कैसी हैं ये। तो चलो मोनिका चलते हैं और पूछते हैं हमारी युवा साथी से उनका नाम। तो चलो मोनिका, अब जानते हैं इनसे आज का सवाल।
3: देखिए हम आपसे कोई ऐसे पर्टिकुलर सवाल जवाब नहीं करने वाले हैं बिल्कुल भी। आज हम निकले हैं एक ऐसे फ्रीडम फाइटर के बारे में जानने, जिनके बारे में शायद हम सब बहुत कम जानते होंगे, लेकिन उनके साहस और बलिदान की कहानी हम सबको जरूर पता होनी चाहिए। तो उनका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। क्या आप जानती हैं इनके बारे में?
5: हाँ, अभी जैसे हमें पता ही है कि हमारा इंडिपेंडेंस डे पास में ही है, और उससे जब भी हमको मतलब अधिकतर याद ही करते हैं हम जितने भी अपने फ्रीडम फाइटर्स हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं। लेकिन उसमें अधिकतर क्या है ना कि मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स को सबके बारे में नहीं पता। जैसे गांधी जी हैं, भगत सिंह हैं, इन सब के बारे में सबको पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनका जो वर्क था वो एक तरीके से हिडन ही रह गया। इनमें से ही एक है अल्लूरी सीताराम राजू। जैसा कि आपने कहा, इनमें से ही एक है अल्लूरी सीताराम राजू। ये भी भारत के बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की, बहुत ज्यादा आवाज उठाई। ये आंध्र प्रदेश से थे। असल में हुआ क्या था कि इन

0: इन्होंने देखा कि जो आदिवासी वहां पर रह रहे हैं उनके ऊपर अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं, उनको खेती में दिक्कत, जंगल में दिक्कत, हर जगह पर आने जाने में दिक्कतें कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने वहां के जितने भी आदिवासी थे उनको एकत्रित किया, इकट्ठा किया और वहां पर सबके साथ मिलके एक रंपा रेबेलियन स्टार्ट करा था। और ये मतलब बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट रहा उस पर्टिकुलर एरिया का उस पर्टिकुलर टाइम में। और इनकी ना कुछ स्पेशल बातें भी थी जैसे, और बस और ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, बस हाँ एक चीज़ और ये मुझे पता है उनके बारे में कि वो गुरिला वॉलफेयर में बहुत ज़्यादा अच्छे थे क्योंकि आदिवासी हैं तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मतलब अपने रेबेलियन में इसका भी काफ़ी यूज़ किया।
1: प्रीति वैसे बहुत अच्छी बात है, हमें जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको इनके बारे में पता था, क्योंकि जैसा आपने कहा कि लोग ज़्यादा इन्हें जानते नहीं हैं, ज़्यादातर गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद का जिक्र होता है और आज इनका जिक्र हुआ तो हमें बहुत खुशी हुई कि आपको भी इनके बारे में बहुत कुछ पता है। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको भी हमसे बात करके उतना ही अच्छा लगा होगा।
0: यस, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, थैंक यू।
1: सामने जो युवा साथी आ रही हैं इनसे बात करते हैं मोनिका। तो मैम कैसी हैं आप, आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम रेखा है, आई एम ओके।
1: ठीक है रेखा जी, हम आकाशवाणी से आए हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि 15 अगस्त आ रही है, 15 अगस्त यानी कि हमारा इंडिपेंडेंस डे, और इंडिपेंडेंस डे को इंडिपेंडेंट करने के लिए जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को हम आजकल याद कर रहे हैं। तो मैम अब आपको बताना है जिनकी फ़ोटो हम आपको दिखाएंगे क्या आप उन्हें जानती हैं?
2: हाँ जी, आप फ़ोटो दिखाइए, ये तो हम बाद में डिसाइड करते हैं कि हम उन्हें जानते हैं या नहीं।
1: ओके मैम, मैम का कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कि शायद मैम जानती हैं। चलो मोनिका दिखाओ इन्हें फोटो।
2: हाँ जी, ये सीतारमन राजू हैं। हाँ जी, मैं इनके बारे में जानती हूँ, ये सीतारमन राजू हैं। जैसे कि मैं पेशे से टीचर हूँ और मैंने अपने बच्चों को इनके बारे में बहुत कुछ बताया।
1: ओके मैम, तो मैम अब आप बताइए आप इनके बारे में क्या जानती हैं?
2: मैं इनके बारे में जानती हूँ कि स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि ये आजाद के बहुत बड़े ज्ञानी भी थे। केवल ज्ञानी ही नहीं, इन्होंने क्रांतिकारी उसमें भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। और एक कुशल वैद्य भी थे जो जंगलों की जड़ी बूटियों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते थे।
1: थैंक यू सो मच मैम।
3: दोस्तों ये तो सुना आपने अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में, जिनके नाम से अंग्रेज भी थर थर कांपते थे। तब के ब्रिटिश लॉ ने आदिवासी का हक छीनकर उनके अपने ही जंगल में रहना मुश्किल कर दिया था। तब अल्लूरी सीताराम राजू ने उन सभी आदिवासी को एक साथ बुलाया, इकट्ठा करा और 1922 में अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह किया। और इसी के साथ उन्होंने पुलिस स्टेशन पर सबको इकट्ठा करकर धावा बोलकर गौरिला युद्ध से अंग्रेजों की रातों की नींद तक उड़ा दी थी। बस इतना ही नहीं, दो सालों तक जंगलों में आजादी की मशाल जलती रही। ब्रिटिश फौज उन्हें ढूंढती रही लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। 7 मई 1924 को ब्रिटिशर्स ने उन्हें आखिर शहीद कर ही दिया, सिर्फ और सिर्फ 26 साल की उम्र में। उन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दिया। आज दुनिया उन्हें मरियम वेरुड़ू के नाम से भी जानती है, मतलब हीरो ऑफ द जंगल।
4: इसी के साथ आज का मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया यही एंड करते हैं। फिर मिलेंगे एक और फ्रीडम फाइटर्स की इंस्पायरिंग कहानी के साथ।
3: तो चलो अब आपको लेकर चलते हैं प्रोग्राम के अगले गीत की तरफ।

0: आती है। हाँ बस तेरे और कुत्ते में तो कोई फर्क ही नहीं है फिर।
1: यहाँ मजा आ गया।
2: दोस्तों दोस्तों दोस्तों, संडे की शाम थी आज, और हमारे तो आज शाम के गीतों का आनंद लेते रहिए और हमारी बातें सुनते रहिए, क्यों वानी?
3: और क्या मोनिका, पूरे हफ्ते मंडे से फ्राइडे तक हम यही सोचते हैं कि काम कब खत्म होगा, और जब वीकेंड आता है तो सुबह उठकर लगता है अब क्या करना है। लेकिन वीकेंड का मतलब दोस्तों ये नहीं कि सिर्फ कुछ बड़ा किया जाए या फिर आराम किया जाए। वीकेंड का मतलब तो ऐसे होता है कि बिना किसी प्लान के चाय बना ली जाए, खुद से खुद के लिए गाने चला लिए जाएं, घर वालों के साथ बैठकर बातें कर ली जाएं।
2: बिल्कुल बिल्कुल वाणी। और दोस्तों मैं आप सबसे एक और बात कहना चाहती हूँ। वीकेंड पर हम सब सोचते हैं कि हम सब सारे काम निपटाएंगे, सोएंगे, या फिर कुछ तो यही सोचते हैं कि हम सोएंगे और अपनी नींद को पूरा करेंगे। लेकिन वक्त को बस यूं ही गुजरने मत देना, हर पल को बेवजह बिखरने मत देना। जो अपने हैं उन्हें आज वक्त जरूर दे देना। वीकेंड है दोस्तों, इसे बस सोकर मत गुजार देना।
3: हाँ, और काफी लोग तो तुम्हारे जैसे जेंजीज फोन चलाकर भी अपना वीकेंड निकाल ही देते हैं। मोनिका, उन्हें भी तो इंक्लूड करना चाहिए प्रोग्राम में तुम्हें।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जेंजी, तुम भी जेंजी हो वाणी, साथ में तो हम जेंजी, हमारे जेंजी दोस्तों को और सभी हमारे जो भी हमें साथी अभी सुन पा रहे हैं, सबको यही कहेंगे कि अपने वीकेंड को सिर्फ और सिर्फ सोकर मत गुजारिए, अपनों के साथ बैठिए, टाइम गुजारिए, उनसे बातें कीजिए।
3: जी, फोन साइड कर दीजिए और खुद के साथ भी थोड़ा वक्त गुजारिए, क्योंकि सेल्फ लव भी तो इम्पोर्टेंट होता है।
2: बिल्कुल, कहते हैं ना, जिंदगी रोज एक जैसी नहीं होती, कभी मुस्कुराने की वजह मिलती है तो कभी बस एक खूबसूरत सा बहाना चाहिए होता है। तो बस आपको वही बहाना ढूंढना है, उसके लिए हम आपको एक और बहाना अपनी तरफ से दे देते हैं, ये खूबसूरत गीत सुनाकर।

0: दोस्तों ये था हमारा आज का कार्यक्रम। हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। खत के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युवानी अनुभव द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 246763
1: और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288 और आप हमारे सभी प्रोग्राम से अपडेटेड रहने के लिए हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद और साथ ही हमारे सारे पुराने प्ले कहानियां और आने वाले भी सारे प्रोग्राम्स आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं, जिसके लिए यूट्यूब चैनल है आकाशवाणी नजीबाबाद। आप सभी अपडेटेड रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट फॉलो सब कीजिए और अपने प्रोग्राम हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसी के साथ अपनी साथी मोनिका सैनी और वाणी कौशिक को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति।
2: नमस्कार।

युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र शामिल होंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोग इस यात्रा में तिरंगे के साथ शामिल हुए। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इससे पहले गृहमंत्री पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी गई है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल्स फाइनल में आज अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषिगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया जितेंद्र कुमार की राम राम। और भाई स्वराज्य खुशी। देखो भाई सब ठीक ठाक होंगे और हमारे भाइयों की खेती किसानी भी ठीक ठाक चल रही होगी। भाई देखो हमारे भाई खेती किसानी में तो मेहनत खूब कर रही हैं, तो खेती किसानी तो बढ़िया चल रही है भाई। साथ ही साथ देखो बरसात का मौसम है और भैया अपनी देखभाल भी हमें करनी है, क्योंकि भाई खेतों में हमारे घास फूस उग जावा है। तो भैया देखो जब हम खेत पर जावा तो हमारे हाथ में एक छोटा सा डंडा हो, सिर पर एक कपड़ा हो रखने के लिए, और साथ ही साथ पानी की एक बोतल पीने के लिए पानी हो, यानी चाहे आप किसी भी बर्तन में पानी ले जावा लेकिन अपने साथ पानी जरूर रखें। तो भाई ये थोड़ी सावधानी हमें बरतनी है, साथ ही साथ पूरे बांव के हमें कपड़े पहनने हैं। तो भाई इस तरह से यदि आप जंगल जाएंगे तो भाई अपने खेतों पर घूमना भी जाना है तो भी भैया अपने हाथ में छोटा मोटा डंडा जरूर होना चाहिए, जिससे भैया आप घास जो हो जाती है हरी, इस समय हरियाली खूब रहती है, तो भाई उस घास को आप हिला उला कर देख लें कि कोई भाई किसी तरह का कोई खतरनाक जीव तो उसमें नहीं छिपा बैठा। तो भाई इस तरह से हम अपनी सावधानी बरतनी है। साथ ही साथ देखो अगस्त का महीना चल रहा है और भाई हमारे भाई वैसे तो जागरूक हैं और किसान भाई हमारे खेती किसानी में काम करते ही रहते हैं, रोज अपने खेतों पर अपनी फसलों पर भैया देखो देखभाल रखते हैं, नजर बना कर रखते हैं। और भाई कहते भी हैं हमारे कृषि वैज्ञानिक कि भाई अपनी फसलों की हमें देखभाल नियमित करते रहना चाहिए। साथ ही साथ भाई देखो जो हमारी मुख्य गन्ने की फसल है, यानी कि जो कि हमारी नकदी फसलों में आती है, तो नकदी फसलों में गन्ना फसल है और भाई गन्ने की फसल से ही हमारे किसान भाइयों के घर का खर्चा चलता है, चूल्हा जलता है। तो भाई हम जो है समय रहते अपने गन्ने की बंधाई करनी है। भाई ये समय बहुत अच्छा चल रहा है गन्ना बंधाई के का, तो भाई थोड़ी सी बातचीत गन्ना बंधाई के महत्व की क्यों ना कर लें जरा सी किसान भाइयों से। भाई देखो गन्ना बंधाई हम किस तरह से करनी है, सबसे पहले थोड़ी सी बात यो करते हैं भाई। हमारे किसान भाई क्या काम कर रहे हैं कि भैया तीन चार जो गूल होती हैं गन्ने की, या तीन चार लाइन जो होती है गन्ने की, वो एक साथ इकट्ठी करके भैया उसको बांध देते हैं। तो भाई ऐसा हमें नहीं करना, हम जो है तकनीक से सारे काम करने हैं। हम जो है भैया आमने सामने की आपस की दो लाइन, यानी कि एक पहली और एक दूसरी लाइन आसपास की सामने की भैया वो बांधनी है, और आमने सामने के जो थान होते हैं या गन्ने के भैया मेहड़े होते हैं जैसे हम गांव में आम भाषा में कह देते हैं, उन्हें भैया हमें कैंची के रूप में बांधना है एक दूसरे के आमने सामने। भाई गन्ना बंधाई करने से देखो होने वाले कई सारे लाभ भी हैं भाई। इससे जो है जब कैंची रूप में हम बांध देंगे ऐसा, तो भैया जो हवा चलेगी तेज, तो भैया हवा सीधी निकल जाएगी गन्ने में, वो गन्ना हमारा गिरने का नहीं, बारिश में फसल के गिरने की संभावना कम हो जाती है जब हम आमने सामने का गन्ना बांध देते हैं। दूसरे भाई जो धूप निकलती है या सूर्य का प्रकाश होता है भैया

हमारे खेत में सीधा जमीन तक पहुंचेगा। साथ ही साथ भैया हवा हमारे गन्ने की फसल को पर्याप्त लगेगी, बेहतर हवा का उपयोग होगा। और भाई जब खेत की जमीन तक जो है सूर्य का प्रकाश पहुंचता है तो भाई गन्ने की जो फसल है हमारी वो अच्छी बढ़वार करती है। उसका कारण यो है कि भाई जो हमारे गन्ने के पत्ते होते हैं ना, अगोला होता है भैया, वो हरा होता है। और हरा पौधा कोई सा भी हो भैया, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश की रोशनी में करता है, यानी कि दिन में करता है। जब भैया हमारे सारे गन्ने पर भैया धूप पड़ेगी तो भाई हमारे गन्ने में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़िया होगी और भाई हमारा जो गन्ने की फसल है उसकी बढ़वार अच्छी होगी। साथ ही साथ भाई देखो कीटों का, रोगों का प्रकोप भी कम होगा। गन्ना बंधाई का देखो सबसे बड़ा महत्व ये है कि भाई जो कीट होते हैं वो जो है अंधेरा पसंद करते हैं, अंधेरे में अंडे देते हैं। यानी कि जब हमारा गन्ना एक जगह भिड़ा हुआ होगा, पत्तों के ऊपर पत्ते होंगे, तो भैया उसमें जो है उनका एक अनुकूल वातावरण बन जाता है कीटों के अंडे देने का, तो भाई वो अंडे देते हैं पत्तों के नीचे। अब भाई यदि हम बंधाई करा देंगे तो भाई सूर्य का प्रकाश जब जमीन तक जाएगा तो भैया उसमें लाइट रहेगी, चांदना बना रहेगा, तो भैया हमारे फसल में जो कीट रोग लगेंगे वो भी कम लगेंगे। क्योंकि कोई भी चाहे जंगली जानवर ले लो आप, चाहे गुलदार की बात करें, क्योंकि गुलदार बरसात में खूब दिखाई दे रहा है, तो भैया गुलदार भी जब हमारी फसल में हमें दूर तक का दिखाई देगा बंधाई करने के बाद, तो भाई वो वहां नहीं रुकेगा, वो वहां रुकेगा जहां वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। यानी कि ना भाई यहाँ जो है कोई भी आदमी नहीं आ सकता या कोई भी आदमी मुझे परेशान नहीं कर सकता। तो भाई हमें गन्ने की बंधाई आवश्यक रूप से करनी चाहिए। उससे भैया देखो गन्ने की बंधाई से हमारी भी सुरक्षा, हम अपनी फसल में दूर तक देख सकें कि भाई कहीं गुलदार तो नहीं बैठा, कहीं किसी तरह का हमारी फसल में दिक्कत परेशानी तो नहीं है, या भैया कोई सा भी काम हमें खेत में करना है तो भैया वो भी हम अपना काम आसानी से कर सकें। साथ ही साथ किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि भैया यदि गन्ना बंधाई हमारे कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो ना कराते, और यदि करा लेते हैं तो भैया कितना लाभ होता है और ना कराने से कितना नुकसान होता है। तो देखो यदि गन्ना बंधाई हमारे किसान भाई करा लेते हैं तो गन्ना हमारा नहीं गिरता है, और यदि गन्ना किसी वजह से गिर जा तो भाई उसमें देखो बैंड आ जाता है, यानी कि गन्ना हमारा मुड़ जाता है, जिसे हम गांव में कह रहे हैं कुबड़ा हो गया गन्ना भैया, और गन्ना वजन नहीं देता, क्योंकि भैया उसमें जो है नोड की गांठे जो होती हैं, गांठे जो होती हैं उन पर भैया जड़ निकल जाती है, और जड़ निकलने से वो जमीन को जड़ पकड़ लेती हैं, और भाई जमीन से जो है जब जमीन में जड़ पकड़ लेंगी तो भैया वो वजन हमारा जो है गन्ना कम देगा। साथ ही साथ भैया उसका जो है मूड़ यानी कि जड़ हिल जाएगी, और जब जड़ हिल जाती है तो भाई जो हमारी अगली फसल है यानी कि पेड़ी की फसल है वो भी भैया हमारी गन्ने की फसल कम होगी। तो देखो कई सारे फायदे हमें गन्ने की बंधाई करने से होते हैं, क्योंकि गन्ना जब बंधवा देंगे तो भैया गन्ना हमारा सीधा खड़ा रहेगा, हवा में नहीं गिरेगा, तो भैया उसमें जो है हमारा गन्ना पूरा वजन देगा, और गिरने से वजन उसका कम हो जाता है। यानी कि 30 से 40% तक हमने नुकसान देखा है भैया गन्ना गिरने से वजन में, क्योंकि भाई हमारे किसान भाइयों को कहीं भी वो गन्ना डालना, चाहे भैया शुगर मिल में गन्ना डालना है या भैया अपने कोल्लू करेसर पर कहीं गन्ना डालते हो, तो भाई हमारे किसान भाइयों को गन्ने के वजन से पैसे मिलते हैं, ना कि भैया गन्नों की संख्या से। तो भाई हम जो है अपने गन्ने में वजन बनाकर रखना है, और वजन हमारे गन्ने में तभी बना रहेगा जब भैया हम गन्ने की बंधाई करा देंगे। तो हमें गन्ने की बंधाई आवश्यक रूप से करानी है। दूसरे भाई यदि गन्ने की बंधाई नहीं कराते, गन्ना हमारा गिर जाता है, तो भैया उसमें जो है चूहा, सियार, बंदर, अन्य जंगली जानवर, पेस्ट, काफी तरह के नुकसान हमारे किसान भाइयों को देखने को मिलते हैं। और भाई हम गांव में कह भी दिए हैं कि भैया हमारे गन्ने में तो चूहा लग गया, सारे गन्ने में चूहा लग गया और बहुत नुकसान हमारे गन्ने में कर दिया। फिर हमारे किसान भाई उसका नियंत्रण करते भागो जहाँ कि भाई अपने गन्ने में अब चूहे का नियंत्रण करो, और भाई नियंत्रण होता नहीं, क्योंकि भाई चूहा इतना चालाक जीव है जो भैया जमीन में जो है काफी दूर तक जो है बरमा देता है और काफी दूर तक अपना बिल बना लेता है। उसका ये पता नहीं लगता कि एक मुंह तो हमारे खेत में है उसके बिल का, और दूसरा मुंह कहाँ है उसका, कहाँ निकलेगा वो। तो भाई इस तरह से हमारे गन्ने में चूहा लगने से बच जाता अगर बंधाई करा देते हैं हम, तो भाई काफी तरह के नुकसान से हमारे किसान भाई बच जाते हैं। अब बात आती है जब गन्ना हमारा पूरा हो जाता है तो कटाई में भी बंधे हुए गन्ने को काटना आसान होता है, और गिरे हुए गन्ने को काटना उतना ही मुश्किल होता, क्योंकि भाई बंधा हुआ गन्ना तो एक साथ और एक समतल रूप से जमीन के लेवल से कट जाएगा, और जब गन्ना गिर जाता है तो उसका यो पता नहीं कि भैया जो हमारा गन्ना छीलने वाला है, गन्ना काटने वाला है, वो उस गन्ने को कहाँ से काट दे, पता नहीं बैंड से काट दे, नीचे से कट जा, ऊपर से कट जा, तो काफी नुकसान हमारे किसान भाइयों को उपज में और गुणवत्ता में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हमारे किसान भाइयों को होता है।

0: तो भाई हम जो है गन्ने की बंधाई आवश्यक रूप से करानी है, ये बात हम ध्यान रखनी है। और हमारे किसान भाई जो जागरूक हैं वो भैया बंधाई में इस समय लगे हुए हैं और अपने गन्ने की बंधाई कर भी रहे हैं। तो भाई बातचीत तो हम और भी करेंगे, साथ ही साथ किसान भाइयों का कराएंगे मनोरंजन भी। लेकिन भाई इस समय कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: तो भैया संदेश के बाद एक बार फिर हमारे सभी किसान बहन भाइयों का स्वागत है कार्यक्रम में। और भाई अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। भाई देखो विज्ञापन तो हमने सुन ही लिए, अब भाई कार्यक्रम में देखो हम जो है खेती किसानी का हमारा व्यवसाय है, साथ ही साथ हमारे किसान भाई पशुपालन कर रहे हैं। तो भाई हमें यो पता होना चाहिए कि हम अपनी खेती किसानी से किस तरह से लाभ ले सकते हैं, सरकार की क्या क्या योजनाएं चल रही हैं जिससे हमारे किसान भाइयों को 2 पैसे की आर्थिक सहायता मिल सके। तो भाई देखो एक ऐसी ही योजना हमारी सरकार ने चला रखी है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो भाई थोड़ी सी बातचीत देखो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में थोड़ी सी करो लें, क्योंकि हमारे कुछ किसान भाई तो जागरूक हैं जिनके खातों में भैया किसान सम्मान निधि जा रही है। भाई कुछ किसान भाई ऐसे हैं कि भैया या तो उनकी किसी कागज में कमी है, या KYC नहीं है, या कोई अन्य कमी है जिससे उनकी जो है किसान सम्मान निधि नहीं आ रही है। तो भैया हम जो है किसान सम्मान निधि के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, किस तरह से हमारे किसान भाई लाभ ले सकते हैं और कौन भैया इसके पात्र होते हैं और कौन अपात्र होते हैं, क्योंकि हमें यह भी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमारी हो सकता है किसी कारणवश हम अपात्रता की श्रेणी में आते हों और हमारी किसान सम्मान निधि ना आ रही हो, और भाई हमारे किसान भाई क्या काम करें, आवेदन ही करो जहाँ। तो भाई हम जो है देखभाल का सारे काम करने हैं। तो भाई देखो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इस योजना के तहत भैया हमारे किसान भाइयों को वार्षिक 6,000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते हैं। साथ ही साथ भाई ये राशि हमारे किसान भाइयों को 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों के माध्यम से बैंक खातों में सीधे दी जाती है DBT के माध्यम से। भैया इस योजना में पात्रता और अपात्रता की यदि हम बात करें तो भैया देखो किसान परिवार के नाम खेती योग्य भूमि होना और सरकार द्वारा तय अपात्र श्रेणियों में ना आने पर निर्भर करती है। भैया देखो पात्रता की यदि हम बात करें तो भाई खेती योग्य भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए, भाई हमारे किसान भाइयों की EKYC अनिवार्य है। साथ ही साथ जो या कौन हमारे किसान भाई अपात्र हैं, या भैया जिनकी किसान सम्मान निधि किसी कारणवश रुक रही है तो भैया क्या कारण हो सकते हैं, इस संबंध में भी क्यों ना थोड़ी सी बात कर ले मैं कि भाई हमें पता नहीं कि हम अपात्रता श्रेणी में आते हैं और भैया हम बार बार उसमें जो है अपनी KYC भी करा रहे हैं और भैया अन्य काम भी कर रहे हैं, तो भाई देखो हो सकता है हम अपात्र हों। तो भाई हमें सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि अपात्रता की क्या क्या शर्तें हैं इस योजना के अंतर्गत। तो भाई देखो जो हमारी जमीन है वो किसी संस्था के अंतर्गत ना आती हो, यानी कि संस्थागत भूमि धारक हमारे किसान भाई ना हो। साथ ही साथ वर्तमान या पूर्व से संवैधानिक पदों पर भैया कार्यरत ना हो या कार्यरत ना रहे हों, ये भैया अपात्र श्रेणी के अंतर्गत हमारे किसान भाई आते हैं। साथ ही वर्तमान में पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, विधान परिषद, नगर निगम या किसी अन्य पद पर आयकर दाता पात्र नहीं अपात्र नहीं होते। भाई आयकर दाता जो है वो अपात्र होते हैं। हम कुछ हमारे किसान भाई क्या काम करें कि आयकर भी दे रहे हैं और भाई EKYC भी करा रखी और भैया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए काफी भैया चक्कर काट रहे हैं, लेकिन भैया अगर यदि आप आयकर दाता हैं तो भैया आप अपात्रता की श्रेणी में आते हैं, आप जो है परेशान ना हो भाई, आप जो है इसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा। कुछ अपात्रता की दृष्टि की यदि हम बात करें तो देखो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इस योजना में छूट दी गई है। भाई जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं चाहे वो सेवानिवृत्त है, पेंशन भोगी है, भैया उनको थोड़ी इस योजना के अंतर्गत छूट है। वो जो है जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही भैया सेवानिवृत्त पेंशन भोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये या 10,000 रुपये से अधिक है वो भी भाई इस योजना

0: के अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में आते हैं। तो भैया आप जो है परेशान ना हो, आपको भैया पेंशन मिल रही है 10,000 रुपये से ऊपर, तो आप भैया इसमें आवेदन ना करें। साथ ही भैया पेशेवर रूप से प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, वकील हों या CA, आर्किटेक्ट भी इसमें अपात्रता की श्रेणी में आते हैं। तो किसान भाइयों, यदि हम अपनी श्रेणी का आकलन स्वयं कर लें तो भाई हम जो है भविष्य में परेशान होने से, किसी परेशानी का सामना करने से भी बच जाते हैं। तो भाई जो भी हमारे किसान भाई लाभ योग्य हैं तो भाई उनको ही योजना का लाभ मिलता है और उन्हें योजना का लाभ मिलना भी चाहिए। तो भैया देखो, ये तो कुछ बातचीत हो गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, और भाई देखो हम बात कर रहे थे किसान भाइयों के मनोरंजन की, तो भाई मनोरंजन भी करवाएंगे। साथ ही साथ भैया हम जब बात लाभ की करते हैं तो लाभ भैया हम अपने स्वास्थ्य के प्रति और अपनी मिट्टी, जो हमारे खेत की मिट्टी है, वो भैया लाभ उपजाऊ बनी रहे तो हमारे किसान भाइयों को लाभ हो लागत में। भैया जो हमारी आजकल लागत ज्यादा आ रही है हमारी फसलों की, तो भाई वो लागत हमारी कम हो ताकि हमारे खेत उपजाऊ बने रहें। तो भाई देखो एक ऐसी जानकारी हम अपने किसान भाइयों के लिए आज अपने कार्यक्रम में लिख आए हैं। भाई जानकारी का विषय है उड़द और मूंग में समसामयिक कार्य। भाई जानकारी दे रहे हैं श्री मुकेश कुमार, जो कि सहायक विकास अधिकारी कृषि हैं ब्लॉक कोतवाली जनपद बिजनौर में। तो आइए, ये हमने उनसे फोन पर बात की थी, तो आइए सुनते हैं ये फोन पर की गई बातचीत।
1: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आज हमारे कार्यक्रम के बीच में हैं श्री मुकेश कुमार, जो कि सहायक विकास अधिकारी कृषि हैं विकास खंड कोतवाली जनपद बिजनौर में। से आज जानकारी का विषय है उड़द और मूंग में समसामयिक कार्य। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: ठीक है, नमस्कार सर। किसान भाइयों को भी नमस्कार
1: सर। जैसा कि आज हमारा आपसे विषय ही है और हमारे किसान भाइयों के लिए इस समय खरीफ का मौसम चल रहा है और बरसात का मौसम है, तो इस समय हमारे किसान भाई जो है कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पानी होता है या सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, तो वहाँ हमारे किसान भाई उड़द और मूंग की फसल लगा देते हैं। तो सबसे पहले आप सर हमारे किसान भाइयों को यही जानकारी दीजिए कि उड़द और मूंग बोने का सबसे अच्छा समय कौन सा है।
2: वास्तव में तो ये है कि किसान भाइयों को जो है जून के अंतिम सप्ताह से
1: जी जी
2: और द्वितीय सप्ताह के जुलाई तक बुआई का कार्यक्रम पूरा कर लेना चाहिए।
1: जी,
2: अगर इसके बाद बुआई करते हैं तो कम से कम 20% हमारा नुकसान होता है।
1: जी जी
2: तो किसान भाइयों को सबसे पहले तो यही है कि अपने खेत इस टाइप के चुनाव करें जिनमें मूंग और उड़द बोना जो थोड़ा ऊंचे पे हो, ताकि वर्षा ऋतु का पानी खेतों में ना भर पाए। अगर किसान भाइयों के खेत में पानी रुक जाएगा तो हमारा 100% उड़द खराब होने के चांस बन जाते हैं। तो उसकी जल निकासी की सुविधा हमने सबसे पहले करनी
1: है बिल्कुल सर
2: किसान भाइयों को। और अगर मान लिया किसान का पानी भी हमारे यहाँ कम आया है तो उसको हल्की एक सिंचाई भी करनी पड़ती है उड़द में। ये नहीं कि बिना सिंचाई के हम उड़द की फसल ले लेंगे।
1: जी जी जी
2: नंबर एक बात तो आपने बहुत ही अच्छी की है किसान भाइयों के लिए
1: जी,
2: कि बुआई का उचित समय जरूरी है।
1: जी बिल्कुल,
2: अगर हम बुआई सही समय पे नहीं करेंगे तो ये मान के चलो प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं ले पाएगा किसान।
1: जी जी बिल्कुल,
2: क्यों किसान जो है हर काम तो समय से अगर ना करेगा तो हर जगह दिक्कत ही दिक्कत आएगी। जैसे मान लिया आप इस टाइम पर खरपतवार का बहुत जबरदस्त वो चल रहा
1: जी,
2: बरसात ऋतु में जो है खरपतवार सबसे ज्यादा उगता है
1: बिल्कुल,
2: और
1: बिल्कुल,
2: हमारी फसल जो किसान भाइयों की 20 से 25 दिन की अवस्था में आ गई। इस समय खरपतवार नियंत्रण होना बहुत ही जरूरी है, अन्य हमारी जो फसल है उसका वास्तव में प्रतिकूल उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है इस टाइम पे।
1: जी जी जी
2: होने देंगे, विकास होगा नहीं।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि उड़द में और मूंग में इस समय हमारी जो फसल है वो लगभग 20 से 25 दिनों की हो गई है, तो उड़द और मूंग में जो खरपतवार की बात आप कर रहे हैं तो खरपतवार नियंत्रण के संबंध में थोड़ी सी हमारे किसान भाइयों को जानकारी ये दीजिए कि वो किस तरह से खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं और कौन कौन से खरपतवार होते हैं, वो किस तरह से पहचान करें।
2: खरपतवार तो ये है कि उड़द में इस टाइम पर सबसे ज्यादा भरपूर सब इस टाइम पे चौड़ी पत्ती वाले भी उगाई करते हैं और संकरी पत्ती वाले हमारे, जैसे आप ये मान के चलो इसमें तो सबसे ज्यादा खरपतवार इसी समय पे उगते हैं। और जो भी खरपतवार उगेंगे उसके लिए सबसे बढ़िया तो यह है कि किसान भाई इसकी निराई गुड़ाई करें।
1: जी जी।
2: और यदि मान लिया कृषक बड़े हैं और निराई गुड़ाई नहीं कर सकते तो उसके लिए सबसे अच्छा है जिस टाइम पे बुआई करते हैं किसान भाई तुरंत ही उसमें पेंडा मेथेलिन का 24 घंटे के अंदर अंदर उसका छिड़काव करा दें।
1: अच्छा,
2: एक से सवा लीटर मात्रा लें उसकी 30% वाली
1: जी।
2: और उसको जो है 150 से 200 लीटर पानी में मिला के उसका छिड़काव करा दें
1: जी जी
2: 24 घंटे के अंदर, तो हमारे खेतों में खरपतवार जमेंगे ही नहीं। वो यदि किसान उस टाइम पे वही चूक गया तो इस टाइम पे हम लोग उसमें इमेजाथाइपर के लिए कहते हैं, इमेजाथाइपर जो है 10%
1: जी
2: दवा 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से
1: जी
2: 150 लीटर पानी में मिला के उसका छिड़काव करा देते हैं।
1: अच्छा अच्छा सर,
2: तो उससे उसका निदान हो जाएगा।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी जानकारी खरपतवार नियंत्रण के संबंध में दी। और जहां तक निराई गुड़ाई की बात है, तो यदि श्रमिक हमारे किसान भाइयों के पास उपलब्ध हैं तो वो श्रमिकों द्वारा निराई गुड़ाई करा सकते हैं, और साथ ही साथ वो रासायनिक नियंत्रण भी अपनी उड़द और मूंग की फसल में खरपतवारों का कर सकते हैं। अच्छा सर,
2: जी,
1: जैसा
2: जी,
1: कि
2: जी,
1: आज
2: जी।
1: हमारा विषय है कि उड़द और मूंग में समसामयिक कार्य, तो इस समय और हमारे किसान भाई किन किन बातों का अपनी उड़द और मूंग की फसल में ध्यान रखें?
2: इस समय पर सबसे ज्यादा तो यही ध्यान रखना है इनको, एक तो पानी, जैसे हमारे यहाँ पे बारिश ठीक ठाक हो रही तो इस समय खेतों में एक तो पानी ना भरने दें, ये तो मेन है। जल निकास की सुविधा तो बहुत जरूरी है, अगर खेत नीचे में है तो ये मान लो किसान को नुकसान 50% तो हर हाल में होगा उर्दू में।
1: जी जी जी,
2: तो किसान भाइयों से हमारा ये भी अनुरोध रहेगा कि अपने खेत का शुरू में चयन ही सही तरीके से करें। दूसरा, जिस टाइम पे बुआई की होगी किसान भाइयों ने, जिन्होंने कतार में बुआई की होगी तो निराई गुड़ाई में उनको बहुत फायदा होगा, और यदि मान लिया वे नहीं कर पाए तो मजबूरी है, अब इस टाइम पे तो हम कुछ करा नहीं सकते। लेकिन किसान भाइयों को शुरू में भी ध्यान रखना है कि बुआई लाइन में जरूर कराएं। इसके अलावा हम लोग एक कीड़ों की और रोग की बहुत ध्यान रखना है इस टाइम पे।
1: अच्छा सर,
2: जैसे मान लिया गन्ने में लोग बाग सब दवाई लगा रहे हैं, तो दवाई लगाने के बाद हमारा उर्द बराबर में खड़ा, तो जितना भी वो कीड़ा हमारा है वो सब इस पाया जा रहा है उर्द पे, तो उर्द पाने के बाद वो हमारा उर्द का नुकसान करेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सरकारी हमारे किसान भाइयों को इस संबंध में दी कि किस तरह से वो खरपतवार नियंत्रण करें, साथ ही साथ आपने लाइनों के बारे में जानकारी दी कि हमें उड़द और मूंग की फसल लाइनों में लगानी चाहिए। अच्छा सर, लाइनों से जब बात आती है उड़द और मूंग की फसल की, तो लाइन से लाइन की दूरी हमारे किसान भाई किस तरह से निश्चित करेंगे, या कितनी दूरी पर वो जो है उड़द और मूंग की फसल
2: लगाएं? लाइन 20 से 25 सेंटीमीटर रख सकते हैं किसान भाई।
1: अच्छा जी, अच्छा ठीक है सर।
2: और किसान भाई थोड़ा ये भी ध्यान रखें, हमारे जो सीड स्टोर जो सरकार के हैं
1: जी,
2: तो इनपे 50% अनुदान पे हम किसानों को उर्द का बीज मुहैया कराते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
2: तो कोशिश करें कि किसान ज्यादातर बीज हम लोगों के यहाँ से लें, यहाँ उन्नत वैरायटी आती है जो 10 साल के अंदर की होती है।
1: अच्छा सर,
2: तो नए बीजों में क्या होता है कि इसमें रोग रोगने की क्षमता भी ज्यादा होती है।
1: जी जी जी,
2: तो अगर मान लिया कोई हम बीज बो रहे हैं नई वैरायटी है और रोग अवरोधी गवर्नमेंट बना के भेज दी, तो उसकी बुआई किसान ज्यादा से ज्यादा करें।
1: जी जी,
2: हम लोगों का यह अनुरोध रहेगा किसान भाइयों से कि ज्यादातर बीज सरकारी स्टोर से लें।
1: बिल्कुल,
2: मिनी किट वगैरह भी फ्री देते हैं लोगों को, उनमें भी अच्छी वैरायटी आती है हमारे यहाँ पे।
1: बिल्कुल,
2: Q9 भी थी हमारे पास।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को उड़द और मूंग की फसल के उन्नत किस्मों के संबंध में दी, और साथ ही साथ बताया कि आप जो है उड़द और मूंग का बीज जहां से भी खरीदें, और हमारा जो सरकारी स्टोर होते हैं उनका 50% के छूट से उड़द और मूंग के बीज मुहैया कराए जाते हैं किसान भाइयों को। अच्छा
2: जी,
1: सर,
2: जी,
1: आप
2: जी,
1: बीच
2: जी,
1: में थोड़ी सी बात कर रहे थे रोग की, तो सर उड़द और मूंग में कौन कौन से रोग प्रमुख रूप से हमारी फसल में लगते हैं?
2: रोग के बारे में तो ये मान के चलो, इसमें सबसे पहला किसान भाई जो है हमारे इस समय पे जो ध्यान रखना है रोग के बारे में, एक पीला मोजेक आता है जिसमें पीला मोजेक इस टाइम पे सबसे ज्यादा अटैक कर रहा, तो इसमें क्या है इल्ली से बचाव करने के लिए इसमें सबसे बढ़िया है कि हमारे पास इमेडा क्लोरोपीड होती है, उसका एक छिड़काव करा दे किसान भाई
1: जी,
2: तो उससे ही सफेद मक्खी जो है तुरंत मर जा रही है।
1: अच्छा अच्छा,
2: हाँ जी, बहुत ही अच्छी दवाई है और हमारे सीड स्टोर पर उपलब्ध है, इसकी 100 ml की हमारे पास मात्रा है
1: जी,
2: 100 से 125 ml को ले, 100 से 150 लीटर पानी में मिला के उसका छिड़काव करा दे, तो इससे जो है इसकी बिल्कुल एकदम ही खत्म हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल,
2: किसान भाइयों से भी हम अनुरोध करेंगे
1: जी
2: कि इसका छिड़काव हर हाल में करें, कि इस टाइम पे जो है सफेद मक्खी का बहुत ज्यादा हुआ है, तो इस कीड़े को अगर किसान भाई मार के ले जाएंगे तो ये मान के चलो किसानों का उत्पादन बढ़ जाएगा।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को रोग के संबंध में दी कि पीला मोजेक होता है, सफेद मक्खी होती है, उसका नियंत्रण यदि हमारे किसान भाई समय से कर लें और सुरक्षात्मक एक छिड़काव इमेडा क्लोरोपीड का कर दें, तो अपनी फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, साथ ही साथ अपनी फसल को रोगों से भी बचा सकते हैं। अच्छा सर, जैसे हम फसल लगाते हैं, फसल लगाने के बाद हमारी फसलों में खरपतवार उगते हैं, रोग लगते हैं, साथ ही साथ कीट लगते हैं, जैसा आपने बताया कीट के बारे में कि सफेद मक्खी लगती है, तो सर
2: जी
1: जैसा सफेद कीट की यदि हम बात करें तो कीटों में और कौन कौन से कीट जो है हमारी उड़द और मूंग की फसल में हमारे किसान भाइयों को हानि पहुंचाते हैं?
2: हाँ, माहौल लगता है।

0: माहू ओब्लिक एफिड बोलते हैं जिसको, हरा फुदका भी बोलते हैं किसान भाई, वो थ्रिप्स लगता है इसमें, सफेद मक्खी भी लगती है जो बिल्कुल एकदम रस चूस के बिल्कुल इसको नष्ट कर दे रही है उर्ज को। कुछ एक मक्खी इस टाइप की है जो फल छेदक मक्खी बोलते हैं जिसको इल्ली बोलते हैं, जरा पत्ता है ना बिल्कुल पत्तों पे छेद छेद बना देती है, पीले पीले करने के बाद बिल्कुल आरम पार उसमें दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि किसी ने इसमें छेद छेद किए हैं। तो इससे क्या फोटोसिंथेसिस की क्रिया कम हो जाएगी, तो हमारे पौधों की बढ़वार कम हो जाएगी, तो उसमें फलट भी बहुत ही कम आएगी।
1: जी।
0: तो किसान भाइयों को इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना, हमारी सेंसिटिव फसल है, इन इन फसलों की साइड में ये नहीं है किसान एक दिन गया उसके बाद 15 दिन खेत में ना जाए, पर डे इसका अपने निरीक्षण भी करते रहना किसान को,
1: बिल्कुल
0: जाए
1: बिल्कुल।
0: अपना थोड़ी देर घूम के चले आए, उसके बाद देखें हमारे यहाँ कोई रोग तो नहीं लग रहा, कोई कीड़ा इस टाइप का तो नहीं आ गया जो हमारी बराबर में गन्ने में से आ गया हो, जो हमारे खेत को नुकसान कर रहा हो।
1: बिल्कुल
0: तो इसी तरीके की आदमी थोड़ा थोड़ा बचाव कर ले जाएगा तो किसानों का प्रोडक्शन इससे बढ़ेगा।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल। यदि हमारे किसान भाई अपनी फसलों की, चाहे उड़द की फसल हो, चाहे मूंग की फसल हो या अन्य कोई फसल हो, अपनी फसलों की हमें समय समय से निगरानी करनी है ताकि हम अपनी फसलों को रोगों से कीटों से बचा सकें। अच्छा सर, जैसा रोगों से कीटों से बचाव की बात हुई, तो सर जैसा हमारी उड़द और मूंग की फसल है, तो हमारे किसान
0: जी
1: भाई जो है ऐसी कौन कौन सी किस्में हैं जो रोग प्रतिरोधी हैं, या ऐसा क्या उपाय करें ताकि वो अपनी फसलों को रोगों से बचा सकें।
0: सबसे बढ़िया तो ये है, जैसे हमारा एक पंथ उर्द 31 इस टाइप का है, इनमें वास्तव में बीमारियां बहुत ही कम लगती हैं।
1: जी
0: पीयू पीयू 9 ऐसा ही है, उर्द आजाद है,
1: जी
0: उर्द आजाद 1 एक नई वैरायटी आई है, इस बार हमारे यहाँ मिनी किट में भी थी तो बहुत ही अच्छी वैरायटी।
1: जी जी
0: तो ये उन्नतशील अगर वैरायटी होंगे तो किसान को इन चीजों से काफी निजात मिलेगी, लोग तो आएंगे नहीं, कीट आ सकता है, इंसेक्ट तो तब भी आ जाएगा, इंसेक्ट के लिए कोई वो नहीं है, लेकिन रोग लगने की वो जो है वो कम हो जाती है। और मूंग में लोगों को हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि मूंग में विराट है, सम्राट है, पूसा की वैरायटियां हैं, तो उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें अगर वास्तव में प्रोडक्शन अच्छा चाहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये रोग रोधी किस्में हैं सर।
0: हाँ जी
1: बिल्कुल। अच्छा सर, बुआई करते समय और क्या क्या हमारे किसान भाई, अब तो हमने बुआई कर दी है, लेकिन आप भविष्य में जब हमारे किसान भाई उड़द और मूंग की फसलें लगाएं तो क्या क्या सावधानी वो अपनी फसलों में बरतें, इस संबंध में आप हमारे किसान भाइयों को किस तरह से जागरूक करेंगे।
0: एक तो किसान भाई ये करें कि सबसे शुरू में इसमें जिस टाइम पे तैयारी कर रहे हैं उस टाइम पे अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद
1: जी।
0: कम से 150 से 200 क्विंटल प्रति एकड़ जरूर डालना है।
1: अच्छा सर।
0: दूसरी बात यह है, लास्ट जुताई पे 50 किलो
1: जी।
0: प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी का प्रयोग करें।
1: अच्छा सर।
0: तो इसमें कोशिश ये करें कि अगर हमें डीएपी ना मिले तो एनपीके भी डाल सकते हैं 50 किलोग्राम,
1: जी।
0: तो इसका रिजल्ट इसके लिए बहुत बेहतर है।
1: अच्छा सर।
0: किसान क्या करते हैं, कुछ किसान हैं जो इसमें अलग से यूरिया डालते हैं,
1: जी।
0: यूरिया का कदापि प्रयोग ना करें, क्यों, अगर हमारी फसल जितनी ज्यादा बढ़ेगी
1: जी।
0: और जितना पत्ता मुलायम होगा कीड़े लगने की उतनी संभावना अधिक हो जाएगी।
1: अच्छा सर।
0: तो किसान भाइयों से ये भी हमें अनुरोध करना है
1: जी।
0: कि यूरिया का है कम से कम प्रयोग करें,
1: जी
0: और अलग से तो यूरिया करें ना, मान लीजिए हम डीएपी डाल रहे हैं तो इसमें 18% ऑलरेडी नाइट्रोजन होती है
1: जी जी
0: और बाकी 40% फॉस्फोरस होती है,
1: बिल्कुल सर
0: तो
1: बिल्कुल
0: अगर इसका प्रयोग करेंगे तो हमारी जो है दलहन की फसल बहुत ही बेहतर होगी।
1: जी बिल्कुल सर बिल्कुल। आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दलहन के फसल में उड़द और मूंग के संबंध में बताई और उर्वरक प्रबंधन के संबंध में बताया। अच्छा सर, कुछ हमारे जो किसान भाई होते हैं या उनके मन में एक भ्रांति होती है कि उड़द और मूंग की फसल में वो उर्वरक का जो है प्रबंधन नहीं करते, उर्वरक नहीं देते हैं, तो वो हमारे किसान भाई किस तरह से आपकी बात को सुनकर जागरूक होंगे ताकि वो अपनी उड़द की फसल से भी अच्छा उत्पादन ले सकें।
0: अच्छा उत्पादन में तो ये जिस टाइम पे इनके यहाँ फ्लावरिंग स्टेज हो, अगर मान लिया कुछ किसान भाई ये मानते हैं कि हमें तो और अच्छा उत्पादन लेना,
1: जी।
0: तो उस टाइम पे एक हमारे यहाँ पे भी आते हैं मिक्सचर आते हैं एनपीके के 12-32-16 भी है उसमें,
1: जी।
0: 0-52-44 भी है, मतलब इस टाइप के मिक्सचर लें कि उनका स्प्रे करा दें,
1: जी।
0: उससे ये मान के चलो बहुत ही बेहतर उत्पादन है।
1: जी।
0: मैंने एक दो फार्म पे कराए का डिमोस्ट्रेशन मैंने करा के देखा है, तो प्रोडक्शन ये मान ले 20 से 25% किसान खुद बताते हैं
1: जी
0: कि हमारा बढ़ गया और दाना भी मोटा हो जाता है इसमें।
1: जी बिल्कुल।
0: लेकिन उसमें ये ध्यान रखना, थोड़ा समय का जरूर ध्यान रखना, फ्लावरिंग स्टेज है उस टाइम पर उसका छिड़काव करना।
1: अच्छा सर बिल्कुल, जिस समय फूल अवस्था हो उस समय पर हमारे किसान भाइयों को छिड़काव करना है। अच्छा, कुछ किसान भाई जो है हमारे ये सोचते हैं कि भाई उड़द और मूंग की जो फसल है वो तो भैया बिना लागत की फसल है और कोई भी लागत हमारे किसान भाई उड़द और मूंग की फसल में नहीं लगाते हैं और
0: तो गन्ने गन्ने में बुआई करा दे फिर तो उसकी सबसे बढ़िया फ्री में मिल जाएगा उनको
1: बिल्कुल
0: गन्ने
1: सर
0: के साथ में, जैसा अब किसान भाई क्या है ट्रंच विधि से गन्ने की बुआई कर रहे हैं।
1: जी जी जी
0: तो उसके बीच में आराम से तीन लाइनें ले सकते हैं हमें
1: जी।
0: अगर तीन लाइन ले रहे हैं, गन्ने को हम पानी भी दे रहे हैं, खाद भी डाल रहे हैं, सब चीज डाल रहे हैं, तो उसमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं, वो हमें फ्री में हो जाएगा
1: जी।
0: और उसमें हम दवाई भी डाल रहे हैं यहाँ तक का है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो किसान भाइयों को एक और चीज फालतू में मिलेगी, उनकी उर्वरा शक्ति और बढ़ जाएगी हमारी जमीन की
1: जी जी जी,
0: जिसकी हमें आज के टाइम में बहुत जरूरत है। 0.3% मात्र हमारे यहाँ पे कार्बन बचा हुआ है, सब किसान भाइयों को जानकारी हम लोग कराते हैं। तो 0.3% को बढ़ाने के बाद उसे कम से कम 1% पे ले जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। 1% अगर हमारा होगा तो ये मान के चलो हमारा प्रोडक्शन हर फसल का खुद ही बढ़ जाएगा
1: जी जी।
0: तो किसान भाइयों से हम ये भी अनुरोध करेंगे कि दलहन की अगर फसल बोएंगे तो हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी
1: जी। वो कैसे सर?
0: वो ऐसे इसकी जड़ों में जो है नाइट्रोजन के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो हमारे यहाँ 78% नाइट्रोजन ऊपर घूम रही
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: उसको वे एब्जोर्व करते हैं, एब्जोर्व करने के बाद वे अपना भूमि में स्थिरीकरण कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे पेड़ ले लेते हैं इसको।
1: जी जी
0: जब पौधे लेंगे तो उससे प्रोडक्शन तो बढ़ाएंगे ही वे।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसी जानकारी या कोई ऐसा संदेश आप हमारे किसान भाइयों को जागरूकता की दृष्टि देना चाहते हो उड़द और मूंग की फसल में, आपसे बताने से रह गया हो, या हमारे किसान भाई भविष्य में उड़द और मूंग की फसल बोने के लिए जागरूक रहें, क्या संदेश हमारे किसान भाइयों को आप देना चाहेंगे?
0: अधिक से अधिक लोग दलहन की तरफ पहुंचे
1: जी जी।
0: और पहुंचने का मेन उद्देश्य यही है कि जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाना। तो हमारे तो किसान भाइयों से भी अनुरोध रहेगा कि किसान भाई थोड़ा जागरूक तो है लेकिन कम जागरूक है, थोड़ा और जागरूक हो।
1: बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को उड़द और मूंग में समसामयिक कार्य के संबंध में दी, और आज आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम से हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: ठीक है, थैंक यू सर, सब किसान भाइयों को भी नमस्कार हमारा।
2: तो अभी हमारे किसान भाइयों ने ये बातचीत सुनी उड़द और मूंग में समसामयिक कार्य के संबंध में। भाई श्री मुकेश कुमार जी ने देखो कितनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को भैया उड़द और मूंग के संबंध में दी, उन्होंने प्रजाति के बारे में बताया, साथ ही साथ किसान भाइयों को रोग रोधी किस्में बोने की जानकारी दी, साथ ही उन्होंने बताया कि भाई जो इस समय समसामयिक कार्यों में सबसे मुख्य कार्य होता है खरपतवार नियंत्रण का, तो कुछ हमारे किसान भाई जो जागरूक हैं तो वो पेंडामेथिलीन की जो है स्प्रे कर देते हैं बुआई के समय ही, यानी बुआई इधर बुआई करी सुबह को या शाम को और अगले दिन भैया उन्होंने स्प्रे कर दिया, तो उससे जो खरपतवार हमारे खेत में नहीं उग पाते हैं, साथ ही यदि खरपतवार उग भी गए हैं तो हमारे किसान भाई श्रमिकों द्वारा निराई गुड़ाई कराकर उनका भैया खरपतवार नियंत्रण करा दें, क्योंकि खरपतवार होने से हमारे खेत में भैया फसल का उत्पादन घट जाता है, क्योंकि हमारी फसल से खरपतवार जो है भैया वो जो है प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो भाई हमारी फसल से वो प्रतिस्पर्धा करते हैं तो हमारी उपज जो है वो घटा देते हैं। तो देखो कितनी अच्छी जानकारी मुकेश कुमार जी ने खरपतवारों के संबंध में दी, साथ ही साथ उन्होंने सह फसल के रूप में गन्ने में भैया उड़द मूंग यानी दलहन की फसलों को बोने की राय हमारे किसान भाइयों को दी, जिससे भैया हमारा जो खेत है वो उपजाऊ बना रहता है। उन्होंने बताया कि भाई जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम के बैक्टीरिया होते हैं जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते रहते हैं, और अगली फसल में हमें जो है भैया उर्वरकों की कम प्रतिपूर्ति अपनी फसल में करनी होती है। तो भाई देखो इस तरह से यदि हमारे किसान भाई उड़द और मूंग अपनी फसलों में अपने खेतों में लगाते रहेंगे और उनमें भैया समसामयिक कार्य समय समय पर करते रहेंगे तो हमारे किसान भाई दलहन से भी अच्छा उत्पादन लेंगे, साथ ही साथ अन्य फसलों से भी उत्पादन लेंगे और अपने जो खेत की मिट्टी है उसको भी लंबे समय तक उपजाऊ बनाए रखेंगे। तो भाई जब मिट्टी उपजाऊ बनी रहेगी तो हमारे किसान भाइयों की लागत घटेगी और हमारे किसान भाइयों का उत्पादन बढ़ेगा, और भाई जब उत्पादन बढ़ता है तो हमारे किसान भाइयों का लाभ बढ़ता है। तो लाभ भैया जब बात होती है लाभ की तो लाभ एक और चीज से होता है, वो है भैया गीत संगीत, और भाई गीत संगीत भी यदि ऐसा हो समय के अनुसार, क्योंकि भैया देखो वहार रोड पर काफी सावन का महीना चल रहा है और भोले की कांवड़ चल रही हैं, तो भाई देखो इस समय भोले की बम हो रही हर जगह, तो भाई भोलेनाथ का जयकारा है, तो आइए भुवनेश गिरी से सुनते हैं ये प्यारी सी रागनी।

अभी हमारे भाइयों ने ये रागनी सुनी शिव शंकर भोलेनाथ का सदा करो गुणगान। तो भाई देखो शिव शंकर भोलेनाथ का तो हमारे भोले भी गुणगान कर रहे हैं क्योंकि भाई वो कांवड़ ले जा रहे हैं सावन की। और भाई देखो शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे, हम तो भाई ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे। और भाई देखो आपका भरपूर मनोरंजन हुआ होगा और दिन भर की थकान आपकी उतर गई होगी। और भाई अब घड़ी भी हमें इस ओर इशारा कर रही है और बातचीत की इजाजत किसान भाई उसे बिल्कुल नहीं दे रही है। तो भैया आप हमें चिट्ठी पत्री लिखते रहें और चिट्ठी पत्री लिखने के लिए उठाइए कागज और कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है भैया हमारा 246763। भाई इस पते पर हमें आपके चिट्ठी पत्रों का इंतजार रहेगा। भाई आप हमारे कार्यक्रम में कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कोई जानकारी अन्य विशेष देना चाहते हैं या क्या सुनना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, वो आप हमें अवश्य लिखें। साथ ही साथ भैया आजकल देखो सभी के पास बड़े फ़ोन हैं उंगली से चलने वाले, तो आपके लिए भैया एक हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वो नंबर आपको मैं बता देता हूँ।

आप नोट कर लें, 9457-07-82-88। भाई नंबर एक बार फिर बता देता हूँ, 9457-07-82-88। भाई इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं और अपना सुझाव हमें लिखकर भेज सकते हैं। भाई अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया जितेंद्र कुमार को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों राम राम।

0: किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर आज रात्रि 9:30 पर और संगीत का और अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा आज रात्रि 10:00। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अदबी दुनिया कार्यक्रम में आज शाम 7:50 पर अलमास रोमानी का कलामे शायर प्रस्तुत करेंगे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:45 हो रहे हैं। विविधा क्रम में लीजिए सुनिए श्रीमती चंद्रकला देवी की लिखी कहानी एक जज का न्याय।
1: पोरी एक गरीब किसान था। उसके पास 2 या 3 बीघा ही खेती थी। वह दूसरों के खेतों में बटाई पर भी काम करता था। उसी से अपने परिवार की गुजर बसर कर रहा था। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा रोहित, एक बेटी टीना। उसकी पत्नी घर की देखभाल और बच्चों की देखभाल में लगी रहती, उन्हें स्कूल छोड़ने जाती और लाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे, उनके खर्च भी बढ़ रहे थे। जब उनकी बेटी ने इंटर की परीक्षा पास की तो होरी को उसके विवाह की चिंता होने लगी। वह अपनी पत्नी मोनी से कहता है, सुनो रोहित की माँ, मैं अब टीना की शादी करना चाहता हूँ, उसे आगे पढ़ाने में मैं सक्षम नहीं हूँ। मोनी कहती है, ठीक है जी, जैसी आप उचित समझें। आप अच्छा लड़का अच्छा परिवार देखना शुरू करें, मैं अब उसको घर के सारे काम काज, परिवार में रहना, गृहस्थी संभालना, सभी बातें सिखाना शुरू करती हूँ। होरी को लड़का देखने में 6 महीने 1 साल के लगभग लग ही जाएगा। होरी का लड़का रोहित अभी 11वीं में पढ़ रहा था। होरी को 1 साल बाद एक अच्छा लड़का मिल गया। वह एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, उसका परिवार भी ठीक ठाक था। तब तक टीना का भाई रोहित भी 12वीं कक्षा में आ गया था। उसका पढ़ाई में बहुत मन लगता था, वह पढ़ाई बड़ी लगन से करता था। होरी अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर देता है। रोहित भी खुशी खुशी अपनी बहन को विदा कर देता है। उसकी 12वीं की परीक्षा आने वाली थी, वो पढ़ाई में जुट जाता है और बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है। वह आगे बढ़ने के लिए शहर जाकर वकालत की पढ़ाई करना चाहता है, पर उसके पिता होरी सिंह उसे आगे पढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाएंगे। होरी अपने बेटे रोहित से कहता है कि बेटा, अब तुम किसी फैक्ट्री या कंपनी में कोई काम करने लगो, फिर मैं तुम्हारी भी शादी कर देता हूँ। तुम्हारी माँ से अब घर का काम नहीं होता है, उसे भी सहारा मिल जाएगा। अब तुम्हारी बहन की भी शादी हो गई है, वो ही पहले तुम्हारी माँ का हाथ बटा।

पढ़ी लिखी और तेज दिमाग की थी। कुछ महीने तो सही चलता रहा, फिर वह एक दिन अपने पति रोहित को समझाने वाली बातें कहती है। वह रोहित से कहती है कि सुनिए रोहित जी, आपको जब पढ़ने का शौक है तो आप पढ़ते क्यों नहीं, पढ़कर आगे बढ़ते क्यों नहीं। अब तो आप काफी अच्छा पैसा कमा रहे हो, घर का पूरा खर्चा करने के बाद भी आप पैसा बचा लेते हो, हो सकता आप पढ़कर बहुत बड़े अफसर बन जाओ। इस फैक्ट्री में तो आप बस एक वर्कर ही हैं। रोहित के दिमाग में ये बात फिट हो जाती है। वह वकालत की पढ़ाई के लिए शहर जाकर डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और वह काम भी करता रहता है और पढ़ाई भी करता है। वह वकालत का पूरा कोर्स कर लेता है और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो जाता है। फिर वह किसी बड़े वकील के पास में रहकर वकालत के सभी दाव पेच सीखता है, यानी केसों को सुलझाने लगता है। इसी तरह वह आगे बढ़ता जाता है, वही शहर में किराए पर कमरा ले लेता है और अपनी पत्नी को भी बुला लाता है। फिर वह आगे प्रोग्रेस के लिए कई सालों तक वकालत करता है। इसी बीच उनके एक बेटा हो जाता है, उसकी देखभाल के लिए वह अपने माता पिता को भी शहर बुला लेता है। सब कुछ ठीक चल रहा है। एक दिन होरी अपने पोते सूर्या को साइकिल से स्कूल छोड़ने जाता है तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट होने से बचता है। वह वापस अपने पोते को लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी मोनी व अपनी बहू सपना को सारी बात बताता है तो सपना उन्हें भला बुरा कहने लगती है कि तुमसे हमारे बेटे की देखभाल नहीं की जा रही है। वह अपने पति रोहित से ये सब बातें रात को बताती है जब सब सो जाते हैं और कहती है कि देखो जी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने माता पिता को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाओ, ये अब किसी काम के नहीं है। आज हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो जाता, बस बाल बाल बचा है, हम इसके स्कूल के लिए स्कूल वैन लगा देंगे। रोहित समझाने का प्रयास करता है पर उसकी पत्नी सपना जिद पर अड़ जाती है। हार कर रोहित अपने माता पिता को एक वृद्धाश्रम में छोड़ आता है और कुछ सालों बाद रोहित एक बहुत बड़ा जज बन जाता है। तब उनका बेटा सौर्य नवी कक्षा में आ जाता है। एक दिन रोहित बहुत बड़ी पार्टी देता है, सारा अरेंजमेंट एक बहुत बड़े होटल में रखता है जहां सारे वकील, जज और बड़े बड़े लोग मिलने वाले आते हैं। बड़े जज ने रोहित से पूछा, भाई आज हम आपके माता पिता से भी मिलना चाहेंगे जिन्होंने इतने होनहार, मेहनती और संस्कारी पुत्र को जन्म दिया है। रोहित चुप हो जाता है। रोहित की पत्नी सपना तुरंत झूठ बोलते हुए कहती है कि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। इतनी बात सुनकर रोहित को ठेस लगती है। वह अंदर ही अंदर मानो घायल सा हो जाता है, उसका मन रोने लगता है। फिर वह अपने को संभालते हुए कहता है कि नहीं सर, मेरी पत्नी झूठ बोल रही है, मेरे माँ बाप हैं, वे एक वृद्धाश्रम में हैं, मैं अभी उन्हें बुलवाता हूँ। जज कहते हैं, भाई वे माँ बाप ही ईश्वर के समान हैं, जिनकी वजह से आप आज इस संसार में हो, इस मुकाम पर हो, परिवार में सभी का ध्यान रखा जाता है, वो माता पिता हैं, पत्नी हो, बच्चे हो, सभी की आपसे आशाएं और विश्वास जुड़ा है। अब आप इतने बड़े जज यानी न्याय करने वाले अधिकारी बन गए हो तो आप अपने माता पिता के साथ भी न्याय करें, उन्हें बुढ़ापे में असहाय न छोड़ें बल्कि उनका सहारा बनें। इस तरह वह अपने माता पिता को घर लाकर बहुत खुश होता है। उनका बेटा भी बहुत खुश होता है अपने दादा दादी को पाकर और उनकी बहू अपने सास ससुर से क्षमा मांगती है। इस तरह से वो परिवार आगे चलकर फिर खुशियां बटोरता है। आगे चलकर फिर उनका बेटा भी ये सब संस्कार, ये सब शिक्षा बच

0: उनसे लेता है कि माता पिता ही ईश्वर तुल्य होते हैं, हमें हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए, उनका सहारा बनना चाहिए। इस तरह से बच्चों में बचपन से ही संस्कार आए तो वे कितने भी बड़े इंसान क्यों ना बन जाएं, पर अपने माता पिता की सेवा करना कभी नहीं भूलते।
1: विविधा क्रम में अभी आप सुन रहे थे श्रीमती चंद्रकला देवी की लिखी कहानी एक जज का न्याय। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:55 हुए हैं। प्रस्तुत हैं छाया गीत। कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे हमने लिया है बाजार फिल्म से। गीतकार हैं मीर तकी मीर और संगीत दिया है खय्याम ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज़ में, जिसे हमने लिया है कटी पतंग फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इसे संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत है लता मंगेशकर की आवाज़ में चुपके चुपके फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इसे संगीत से सजाया है SD बर्मन ने।

चुपके चुपके फिल्म में लता मंगेशकर के गायक गीत के साथ ही छाया गीत अब समाप्त होते हैं। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है जानकारी कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

कार्यक्रम पब्लिक स्पीक कल रात्रि 9:30 पर और संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग कल रात्रि 10:00। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल सवेरे 6:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। श्री रामचरित मानस गान की संगीतमय प्रस्तुति आप सुनेंगे कल सवेरे 6:30 पर। काव्यधारा क्रम में श्रीमती फूलमाला का काव्य पाठ सुनवाया जाएगा कल सवेरे 6:45 पर। कार्यक्रम सूरज के साथ साथ हम आपको सुनवाएंगे कल सवेरे 7:31 पर। धरती गाती है कार्यक्रम में कल सवेरे 9:25 पर भुवनेश गिरी की गाई चंद्रागनी सुनवाई जाएंगी। गोल्डन हिट्स सुनिएगा कल सवेरे 8:45 पर। कल सवेरे 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत तुम्हारे। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग हम आपको सुनवाएंगे कल दिन में 11:30 पर। शास्त्रीय संगीत में कल दोपहर 12:05 पर प्रमोद प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया राग शुद्ध सारंग सुनवाया जाएगा। मिड डे मेलोडी आप सुनेंगे कल दोपहर 12:30 पर। परिवार जगत कार्यक्रम में कल दोपहर 1:15 पर डॉक्टर राम किशोर से ज्योतिपाल की बातचीत का विषय होगा छात्रों पर पेपर लीक का प्रभाव। लोकधारा कार्यक्रम में कल दोपहर 1:45 पर आप रेशमा के गाए जौनसारी लोकगीत सुनेंगे। नई फिल्मों से ये कार्यक्रम सुनिएगा कल दोपहर 2:30 पर। मेरा सपना उन्नत भारत ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल शाम 5:00। कल शाम 5:15 पर सुनिएगा युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। अभी आप सुन रहे थे कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:18 हुए हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। सर 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: हो गया इंतजाम।
6: किसका? गुड्डी की फीस।

0: खाता?
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
0: लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत,
1: वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से हर घर तिरंगा अभियान का किया शुभारंभ। काकोरी ट्रेन एक्शन के 101 वर्ष पूरे होने पर शहीदों को किया नमन। मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थ नगर में 311 करोड़ रुपए की 107 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार की विकास नीतियों से प्रगति की राह पर अग्रसर हुआ जनपद। प्रदेश भर में सावन के दूसरे सोमवार को लेकर सुरक्षा और सुविधा के व्यापक इंतजाम। कांवड़ यात्रा मार्गों पर लागू किए गए विशेष ट्रैफिक प्लान। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नवगठित धार्मिक समिति की पहली बैठक संपन्न। 15 अगस्त को परंपरागत रीति रिवाज के साथ निकाली जाएगी रामलला की पालकी यात्रा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की और इस क्रम में जनप्रतिनिधियों, युवाओं, महिलाओं, भाजपा नेताओं और कलाकारों समेत राज्य के विभिन्न स्थानों से आए लोगों के साथ मुख्यमंत्री आवास से विधान भवन तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तिरंगा लेकर पैदल चले। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि तिरंगा विकास और विरासत का प्रतीक है।
5: हमारा एक तिरंगा हमारे सादगी का, हमारे विकास का, हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है।
4: श्री योगी ने देश की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले शहीदों, क्रांतिकारियों, सैनिकों और संविधान निर्माताओं राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा की शुरुआत की जा रही है। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। उन्होंने भारत के प्रतीकों, युवाओं, गरीबों, आदि आबादी, किसानों के लिए नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए उचित मंच देकर आदर्श पेश किया है। ये तिरंगा यात्रा उसी आदर्श की अभिव्यक्ति है। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काकोरी ट्रेन एक्शन के 101वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में काकोरी शहीद स्मारक पर आयोजित शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्र नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अंग्रेज भारत के लोगों की गाढ़ी कमाई लूटकर ब्रिटेन ले जाना चाहते थे, लेकिन काकोरी में 9 अगस्त 1925 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों ने खजाने को अपने कब्जे में लेकर आजादी की लड़ाई को नई ऊंचाइयां प्रदान की थीं। श्री योगी ने आमजन का आह्वान किया कि हमारे गांव, क्षेत्र और जनपद में अनेक गुमनाम नायकों से जुड़ी बिखरी सामग्री को एकत्र करें। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद थे। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। पेश है एक रिपोर्ट।
6: हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा।
7: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है।

0: यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिद्धार्थनगर जिले में 311 करोड़ रुपए की 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों के कारण सिद्धार्थनगर जनपद लगातार प्रगति की राह पर अग्रसर है।
2: सिद्धार्थनगर जनपद जो आकांक्षी था, पिछले 8-9 वर्षों के अंदर जो प्रयास हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, देश के अंदर 112 जनपद आकांक्षी जनपद हैं और अग्रणी छलांग लगाने वाला कोई जनपद है तो सिद्धार्थनगर जनपद है। अब ये आकांक्षात्मक नहीं, विकास के पायदान पर तेजी के साथ अग्रणी भूमिका के लिए जाने जाना वाला जनपद है।
1: कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल सहित जिले के कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। कल सावन का दूसरा सोमवार है। कांवड़ यात्रा और शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा और सुविधा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया है कि काशी विश्वनाथ धाम में सुरक्षा के विशेष व्यवस्था की गई है।
3: तमाम हमारे कांवड़िया श्रद्धालु केवल उत्तर प्रदेश से नहीं, विभिन्न अन्य प्रदेशों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जो हमारा संगम रूट है, प्रयागराज से लेकर के यहाँ का रूट है, उस पर लगातार लोगों का आवागमन बना हुआ है। सभी श्रद्धालु यहाँ पर सुरक्षित तरीके से यहाँ पर आए, इसके लिए एक डेडिकेटेड लेन बनाई गई है, विश्राम गृह बनाए गए हैं, पुलिस चौकियाँ स्थापित की गई हैं, CCTV कैमरे लगाए गए हैं, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। जितने भी पुलिसकर्मी यहाँ पर ड्यूटी पर लगे हैं उनकी लगातार ब्रीफिंग की जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं के साथ मित्रवत व्यवहार किया जाए और उनको अपना मेहमान समझा जाए, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए और प्रयास ये किया जाए कि वो यहाँ से बहुत अच्छी यादें लेकर के यहाँ से जाएं।
1: सभी जिलों में कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। बाराबंकी से हमारे प्रतिनिधि की खास रिपोर्ट।
4: कल सावन का दूसरा सोमवार है, लेकिन श्रद्धालुओं और कांवड़ियों का श्री लोदेश्वर धाम मंदिर पहुंचने का सिलसिला आज रविवार से शुरू हो गया है। सुदूर जनपदों से श्रद्धालु जय बम बोले के घोष लगाते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा भी उनका नगर क्षेत्र में स्वागत कर एक बड़े कैंप का आयोजन किया गया है, जहां उनकी जांच और अन्य सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
1: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नवगठित धार्मिक समिति की पहली बैठक आज हुई। बैठक में श्री राम मंदिर की धार्मिक परंपराओं और आगामी आयोजनों के बारे में चर्चा की गई। बैठक के बाद महंत रामानंद दास ने बताया कि 15 अगस्त की शाम अयोध्या की परंपरागत रीति रिवाज और साज सज्जा के साथ रामलला की पालकी यात्रा निकाली जाएगी।
5: रामलला है उनका झूलनोत्सव अयोध्या की परंपरा के अनुसार विधि पूर्वक मनाया जाए। कुबेर टीला जहां वृक्ष भी है, भगवान दिव्य झूले में वहां पधार करके और सबके साथ वहां साजबाज से जाएंगे। उनका जो उत्सव है यानी गान बजान है वो परंपरागत अयोध्या की परंपरा से होगा।
1: कल राज्य के पूर्वी और पश्चिमी अंचलों के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस संबंध में येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से हर घर तिरंगा अभियान का किया शुभारंभ। काकोरी ट्रेन एक्शन के 101 वर्ष पूरे होने पर शहीदों को किया नमन। मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थनगर में 311 करोड़ रुपए की 107 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा सरकार की विकास नीतियों से प्रगति की राह पर अग्रसर हुआ जनपद। प्रदेश भर में सावन के दूसरे सोमवार को लेकर सुरक्षा और सुविधा के व्यापक इंतजाम। कांवड़ यात्रा मार्गों पर लागू किए गए विशेष ट्रैफिक प्लान। अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नवगठित धार्मिक समिति की पहली बैठक संपन्न। 15 अगस्त को परंपरागत रीति रिवाज के साथ निकाली जाएगी रामलला की पालकी यात्रा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
8: RBI कहता है,
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
10: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 7:32 होने को है। सुगम संगीत में लीजिए सुनिए फरीदा खानम की गाई चंद गजलें।

0: मिशायर।
1: सबसे अपना मिलन नहीं होता, सबसे अपना मिलन नहीं होता, हमसे दीवानापन नहीं होता, सबसे अपना मिलन नहीं होता, हमसे दीवानापन नहीं होता, खूबसूरत निगाह होती है, खूबसूरत बदन नहीं होता, खूबसूरत निगाह होती है, खूबसूरत बदन नहीं होता, देख सकते हैं छू नहीं सकते, देख सकते हैं छू नहीं सकते, चांदनी का बदन नहीं होता, देख सकते हैं छू नहीं सकते, चांदनी का बदन नहीं होता, आंख वाले ही फैस पाते हैं, आंख वाले ही फैस पाते हैं, रोशनी का वतन नहीं होता, आंख वाले ही फैस पाते हैं, रोशनी का वतन नहीं होता। और अगला शेर, नाज है हमको उन शहीदों पर, नाज है हमको उन शहीदों पर जिनका मैला कफन नहीं होता, नाज है हमको उन शहीदों पर जिनका मैला कफन नहीं होता, सबसे अपना मिलन नहीं होता, हमसे दीवानापन नहीं होता, खूबसूरत निगाह होती है, खूबसूरत बदन नहीं होता। अगली गजल, तेरी आंखों से पीना चाहता हूँ, तेरी आंखों से पीना चाहता हूँ कि मैं जी भर के जीना चाहता हूँ, तेरी आंखों से पीना चाहता हूँ कि मैं जी भर के जीना चाहता हूँ, मसीहा का सहारा तौबा तौबा, मसीहा का सहारा तौबा तौबा, खुद अपने जख्म सीना चाहता हूँ, मसीहा का सहारा तौबा तौबा, खुद अपने जख्म सीना चाहता हूँ, मैं अपने दुश्मने जानी से यारो, मैं अपने दुश्मने जानी से यारो, मोहब्बत का करीना चाहता हूँ, मैं अपने दुश्मने जानी से यारो, मोहब्बत का करीना चाहता हूँ, मुझे अपनी मोहब्बत से नवाजो, मुझे अपनी मोहब्बत से नवाजो, मैं कब तुमसे खजीना चाहता हूँ, मुझे अपनी मोहब्बत से नवाजो, मैं कब तुमसे खजीना चाहता हूँ, मिटाने पर तुली रहती है दुनिया। शेर सुनिएगा, मिटाने पर तुली रहती है दुनिया, मैं कब मर मर के जीना चाहता, मिटाने पर तुली रहती है दुनिया, मिटाने पर तुली रहती है दुनिया, मैं कब मर मर के जीना चाहता हूँ, अगर मक्का ख्यालों का हो मरकस, अगर मक्का ख्यालों का हो मरकस, तो इस दिल में मदीना चाहता हूँ, तो इस दिल में मदीना चाहता हूँ, अगर मक्का ख्यालों का हो मरकस, तो इस दिल में मदीना चाहता हूँ, जहरीली हो गई थी हवा, जहरीली हो गई थी फिजा आसमान की, जहरीली हो गई थी फिजा आसमान की, बातें भी कर ना पाए थे पंछी उड़ान की, जहरीली हो गई थी फिजा आसमान की, बातें भी कर ना पाए थे पंछी उड़ान की, फूलों की बारिशों में नहाया हुआ बदन, फूलों की बारिशों में नहाया हुआ बदन, रक्सा हो जैसे कोई परी आसमान की, फूलों की बारिशों में नहाया हुआ बदन, रक्सा हो जैसे कोई परी आसमान की, तुम मेरे रूबरू हो मगर लब खामोश हैं, तुम मेरे रूबरू हो मगर लब खामोश है, शायद है ये भी कोई घड़ी इम्तिहान की, शायद है ये भी कोई घड़ी इम्तिहान की, आंखों पे एहतियात के दरबंद हो गए, आंखों पे एहतियात के दरबंद हो गए, खिड़की अगर खुली भी किसी के मकान की, आंखों पे एहतियात के दरबंद हो गए, खिड़की अगर खुली भी किसी के मकान की। और अगला शेर, देखो वो चांद शाम से रोने लगा लहू, देखो वो चांद शाम से रोने लगा लहू, शायद हुई है मौत किसी बेजुबान की, देखो वो चांद शाम से रोने लगा लहू, शायद हुई है मौत किसी बेजुबान की। और आखिरी शेर इस गजल का, अलमास खुशबुओं को है अब मुझसे दुश्मनी, अलमास खुशबुओं को है अब मुझसे दुश्मनी, बोई थी मैंने फसल कभी जाफरान की, बोई थी मैंने कभी फसल जाफरान की। और अगली गजल, आपसे हाथ मिलाएंगे चले जाएंगे, आपसे हाथ मिलाएंगे चले जाएंगे, दोस्त भी ख्वाब दिखाएंगे चले जाएंगे, आपसे हाथ मिलाएंगे चले जाएंगे, दोस्त भी ख्वाब दिखाएंगे चले जाएंगे, ये सितारे जो मुनव्वर हैं ही सुबह तलक, ये सितारे जो मुनव्वर है ही सुबह तलक, रोशनी अपनी लुटाएंगे चले जाएंगे, रोशनी अपनी लुटाएंगे चले जाएंगे। और अगला शेर, आती जाती हुई रुत याद करेगी हमको, आती जाती हुई रुत याद करेगी हमको, फूल सहरा में खिलाएंगे चले जाएंगे, फूल सहरा में खिलाएंगे चले जाएंगे, आपकी बज्म बहुत देर रहेगी कायम, आपकी बज्म बहुत देर रहेगी कायम,

0: हम तो बस गीत सुनाएंगे चले जाएंगे, आपकी बज्म बहुत देर रहेगी कायम। हम तो बस गीत सुनाएंगे चले जाएंगे। और अगला शेर, हम फकीरों को तेरे दर से है निस्बत इतनी, हम फकीरों को तेरे दर से है निस्बत इतनी, एक आवाज लगाएंगे चले जाएंगे, एक आवाज लगाएंगे चले जाएंगे। हम फकीरों को तेरे दर से है निस्बत इतनी, एक आवाज लगाएंगे चले जाएंगे। और अगला शेर, इन परिंदों पे खुदा रा ना कोई तीर चलाए, इन परिंदों पे खुदा रा ना कोई तीर चलाए, ये तो कुछ देर नहाएंगे चले जाएंगे। इन परिंदों पे खुदा रा ना कोई तीर चलाए, ये तो कुछ देर नहाएंगे चले जाएंगे, ये तो कुछ देर नहाएंगे चले जाएंगे। और आखिरी शेर गजल का, जिंदगी तुझसे मुरव्वत की उम्मीदें कब थी, जिंदगी तुझसे मुरव्वत की उम्मीदें कब थी। हाँ, जो रिश्ते हैं निभाएंगे चले जाएंगे, हाँ जो रिश्ते हैं, हाँ जो रिश्ते हैं निभाएंगे चले जाएंगे। और मैं आपको एक और गजल सुनाता हूँ अभी। तुम जो सरबराह हो गए, तुम जो सरबराह हो गए, काफिले तबाह हो गए, तुम जो सरबराह हो गए, काफिले तबाह हो गए, जल बुझा जो मेरा घर तमाम, जल बुझा जो मेरा घर तमाम, लोग खैर खा हो गए, जल बुझा जो मेरा घर तमाम, लोग खैर खा हो गए। और इस गजल का शेर, बारिशे जमाल क्या हुई, बारिशे जमाल क्या हुई, आईने तबाह हो गए, बारिशे जमाल क्या हुई, आईने तबाह हो गए। कल जो शहर दर्स गाते, कल जो शहर दर्स गाते, आज कत्लगाह हो गए, कल जो शहर दर्स गाते, आज कत्लगाह हो गए। जाने कितने फूल से बदन, जाने कितने फूल से बदन, जाने कितने फूल से बदन, नजरे आली जा हो गए, नजरे आली जा हो गए। आंधियां कुछ इस तरह चली, आंधियां कुछ इस तरह चली, आंधियां कुछ इस तरह चली, बाग सब तबाह हो गए, बाग सब तबाह हो गए। और आखिरी शेर, मैं कसूरवार हो गया, मैं कसूरवार हो गया, आप बेगुनाह हो गए, मैं कसूरवार हो गया, आप बेगुनाह हो गए। एक गजल और, उसके चंद शेर। जब तक घने दरख्तों के साए जवा रहे, तब तक मुसाफिरों के ठिकाने वहां रहे, जब तक घने दरख्तों के साए जवा रहे, तब तक मुसाफिरों के ठिकाने वहां रहे। हालांकि हमको याद नहीं हम कहाँ रहे, हालांकि हमको याद नहीं हम कहाँ रहे, लेकिन वो साथ साथ रहे हम जहां रहे, लेकिन वो साथ साथ रहे हम जहां रहे। वो भी न पढ़ सके कभी आंखों की दास्तां, वो भी न पढ़ सके कभी आंखों की दास्तां, कुछ हम भी पत्थरों की तरह बेजुबा रहे। वो भी न पढ़ सके कभी आंखों की दास्तां, कुछ हम भी पत्थरों की तरह बेजुबा रहे। शायद किसी ने हुक्म दिया है हवाओं को, शायद किसी ने हुक्म दिया है हवाओं को, महफूज शहर भर में न कोई मका रहे, महफूज शहर भर में न कोई मका रहे। आंसू मुझे कबूल है तेरे दिए हुए, आंसू मुझे कबूल है तेरे दिए हुए, लेकिन तेरे लबों का तबस्सुम जवा रहे, लेकिन तेरे लबों का तबस्सुम जवा रहे। वो सारे दोस्त जिन पे यकीन उम्र भर रहा, शेर सुनिएगा भाई। वो सारे दोस्त जिन पे यकीन उम्र भर रहा, अफसोस है कि हमसे वही बदगुमा रहे, अफसोस है कि हमसे वही बदगुमा रहे। और आखिरी शेर इस गजल का, आखिर वो हमसे हाथ भी क्यों कर मिलाएगा, आखिर वो हमसे हाथ भी क्यों कर मिलाएगा, अलमास हम भी उसके बराबर कहाँ रहे, अलमास हम भी उसके बराबर कहाँ रहे। वो सारे दोस्त जिन पे यकीन उम्र भर रहा, वो सारे दोस्त जिन पे यकीन उम्र भर रहा, अफसोस है कि हमसे वही बदगुमा रहे, अफसोस है कि हमसे वही बदगुमा रहे। आखिर वो हमसे हाथ भी क्यों कर मिलाएगा, आखिर वो हमसे हाथ भी क्यों कर मिलाएगा, अलमास हम भी उसके बराबर कहाँ रहे, अलमास हम भी उसके बराबर कहाँ रहे।
1: अदबी दुनिया कार्यक्रम में अभी कलाम शायर प्रस्तुत कर रहे थे श्री अलमास रोमानी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजने को है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम का पहला गीत है श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार की युगल आवाजों में, गुरु फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने और इसे संगीत से सजाया है ए आर रहमान ने।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: कार्यक्रम का अगला गीत है मुकेश और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में, मिलन फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इसे संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में, मंजिल फिल्म से। गीतकार योगेश और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है सुरेश वाडेकर और अनुपमा देशपांडे की युगल आवाजों में चांदनी फिल्म से। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार हैं शिवहरी।

लोफर फिल्म में अभी आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत सुना। गीतकार आनंद बख्शी और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में क्रीचर फिल्म से। गीतकार और संगीत दिया है टोनी कक्कड़ ने।

गीत संध्या अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कुली नंबर 1 फिल्म से कुछ गीत। कार्यक्रम का पहला गीत है अलका याग्निक और कुमार सानू की युगल आवाजों में।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कोली नंबर वन फिल्म से कुछ गीत। कार्यक्रम का अगला गीत है अलका याग्निक और उदित नारायण की युगल आवाजों में।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कुली फिल्म से कुछ गीत। गायक कलाकार थे कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नारायण। गीतकार समीर और संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
1: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में 4th स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण किया।
3: To launch this campaign today on the August Gandhi Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
1: गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच

0: मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए आईआईटी आईएसएम आईआईएम रांची और एक्सएलआरआई के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को सीआईडी ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही।
2: पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है।
3: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया, ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त, हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग

0: 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है। जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। आईएमडी ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with medal winners of Commonwealth Games 2026, urges citizens to always cheer for Bharat. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country. Vice President and Prime Minister appeal to people to renew commitment to Viksit Bharat by joining this movement. Jharkhand government agrees to scrap JPAC preliminary exam over allegations.

0: ये मुहिम हर घर तिरंगा पहल का पांचवां साल है, जिसका आगाज 2022 में हुआ था। नेजब से ये मुल्क की अवामी शिरकत की सबसे बड़ी तहरीकों में से एक बन गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा मुहिम में जोशो खरोश के साथ शिरकत करने और विकसित भारत की तामीर के तई अपने तआवुन के इज्तिमाई अहद का अदा करने के लिए लोगों से अपील की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि तिरंगा मुल्क की शान है, नेज़ मुल्क के लिए हमेशा अव्वलीन तरजीह देने की तहरीक का एक जामे जरिया है। वज़ीर आज़म ने यह कहते हुए इजहार मसर्रत किया कि इस साल की काविशें वंदे मातरम के लिए वक्फ हैं, क्योंकि ये इसकी 150वीं सालगिरह है। जम्मू कश्मीर में आज से तमाम 20 अजला में जज्बे हुब्बुल वतनी नुमाया तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि हर घर तिरंगा मुहिम के तहत एक हफ्ते तवील प्रोग्रामों के सिलसिलों का आगाज हो गया है। इस साल की मुहिम खास तौर पर अहम है, क्योंकि ये भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के साथ आया है। ये तकरीबात 17 अगस्त तक जारी रहेंगी, जिनका मकसद हुब्बुल वतनी और कौमी फख्र को फरोग देना है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये तकरीबात कौमी यकजहती को फरोग देने, नेज आज़ादी की मुहिम और कौमी अलामत के बारे में काबिले कदर मालूमात हासिल करने में एक नुमाया संग मील की हैसियत रखती है। बड़े पैमाने पर वंदे मातरम पर दस्तखत करने, तिरंगे की रैलियां, नुमाइशें, सकाफती प्रोग्राम मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में मुनक़िद किए जाएंगे। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में हुब्बुल वतनी और अवामी शिरकत की सरगर्मियाँ ज़िला हेडक्वार्टर्स, सब डिवीजन्स, तहसीलों, ब्लॉकों और पंचायत सतहों पर मुनक़िद करने की मंसूबाबंदी की गई है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: JPSC और JSSC इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा के ज्यादातर मुतालबात झारखंड सरकार ने मान लिए हैं। इस सिलसिले में एक माहदे पर इतफाक हो गया है। रियासती वजीर सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि हुकूमत ने 14वें JPSC के इब्तदाई इम्तिहानात और 2023-25 के बैकलॉग इम्तिहानात मनसूख करने से इतफाक किया है। वजीर मौसूफ ने यह बात आज रियासती हुकूमत और एहतजाजी तलबा के दरमियान बातचीत के बाद मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से मुबैना माली बेजाब्तगियों की तहकीकात, मुजरिमाना पहलुओं की CID तहकीकात और 90 दिनों के अंदर चार्ज शीट दाखिल करने को यकीनी बनाने के लिए एक फास्ट ट्रैक अदालत के कयाम पर भी इत्तेफाक किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह वाज़े पैगाम दिया है कि भारत अपने शहरियों और मुल्क की खवातीन के माथे के सिंदूर के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
2: पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
0: वजीर दिफा ने यह बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्त दान यात्रा के कैंप का इफ्तिताह करते हुए कही। उन्होंने भारतीय फौज की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर रखने वालों को संगीन नतायज का सामना करना पड़ा। सिंदूर महारक्त दान यात्रा का जिक्र करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि जहां ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की शुजात मंदी का मुजाहरा किया है, वहीं खून का अतिया देने का ये कैंप हमदर्दी और इंसानियत की अलामत है। उन्होंने बताया कि कैंप में महाराष्ट्र के तकरीबन 1000 पहलवानों और खिलाड़ियों ने खून अतिया किया। उन्होंने कहा कि यह इकदाम बेलौज खिदमत और मुसल्लह अफवाज के साथ यकजहती के जज्बे की अक्कासी करता है। वजीर दिफा ने कहा कि खून अतिया करने वाला और खून हासिल करने वाला हर शख्स अपने अपने तरीके से मुल्क की खिदमत कर रहा है। उन्होंने खास तौर पर नौजवानों से अपील की कि वह खून अतिया करने वालों को एक बाकायदा अमल बनाएं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हाउसिंग और शहरी अमूर की वजारत ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU और PMAYU 2.0 के तहत अब तक 1,25,00,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है. उनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकानात की तामीर मुकम्मल हो गई है. नेज उन्हें मुल्क भर में मुस्तफिदीन के हवाले किया जा चुका है. तकरीबन 1,00,00,000 मकानात खवातीन को अलाट किए गए हैं. हाउसिंग और शहरी उमूर के सेक्रेटरी सत्येंद्र सिंह की सरबराही में मुनक़िदा मंजूरी देने और निगरानी की मरकजी कमेटी की मीटिंग के दौरान 16 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में माशी तौर पर कमजोर तबके के कुनबों के लिए PMAYU 2.0 के तहत 2,09,000 से ज्यादा मकानों की मंजूरी दी गई थी. इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं. पेश है एक रिपोर्ट.
3: मंजूर किए गए 2,09,000 मकानात में से 2,03,000 मकानात खवातीन को अलाट किए गए हैं. इसके अलावा 16,600 से ज्यादा मकानात बुजुर्ग शहरियों को, जबकि तकरीबन 22,000 मकानात दर्ज फेरिस्तजात के अफराद के लिए, 14,000 से ज्यादा दर्ज फेरिस्त कबाइल और 75,000 से ज्यादा मकानात दीगर पसमानदा तबकात के अफराद के लिए मंजूर किए गए हैं. स्कीम के तहत मकानात की मिल्कियत खवातीन के नाम करने को तरजीह दी गई है, जिसका मकसद खवातीन को माली तहफ्फुज़ फराहम करना, समाजी तौर पर बाख्तियार बनाना और घर के फैसलों में उनकी ज्यादा से ज्यादा शमूलियत को यकीनी बनाना है. PMAYU का आगाज 2015 में किया गया था, जिसका मकसद अहल शहरी मुस्तहकीन को बुनियादी सहूलियात के साथ हर मौसम के एतबार से पक्के मकानात फराहम करना था. PMAYU के नफाज से हासिल होने वाले तजुर्बात की बिना पर हुकूमत ने इसमें तरमीम की और यकुम सितंबर 2024 को PMAYU 2.0 सबके लिए मकानात मिशन का आगाज किया. सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मोहम्मद शहजाद.
0: शदीद तूफान डॉल्फिन आज तीसरे पहर चीन के मशरकी साहिल पर पहुंच गया, जिससे जीजियांग और फुजान सूबे मुतासिर हुए हैं. इस तूफान के आने के बाद मुल्क के मौसमियात के कौमी मरकज ने मुल्क में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. इस दौरान शंघाई के दो हवाई अड्डों पर 1,300 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि हुक्काम ने

0: आसपास के इलाकों में तकरीबन 3 लाख अफराद को महफूज जगह पहुंचाया है। बुध के रोज तक शदीद बारिश होने की तवक्को है। तवक्को है कि यह तूफान शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ जाएगा और वहां पहुंचने के बाद यह बतदरीज कमजोर पड़ जाएगा। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने आज कहा कि इस वक्त उनका मुल्क अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर रहा है, अलबत्ता दोनों ममालिक के दरमियान सालिसों के तवस्सुत से पैगामात का तबादला किया जा रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया के जरिए जारी किए गए उनके बयान के मुताबिक जनाब अराग़ची ने कहा कि बहुत से ममालिक ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा करने के लिए साजगार माहौल वजा करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन ने रात के दौरान एक दूसरे पर हमले किए जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों में बहुत से शहरी हलाक और जख्मी हो गए। रूस के बेलगोरोद इलाके में यूक्रेन के ड्रोन के हमले में 5 अफराद हलाक जबकि दिगर 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए जिनमें 4 साल का एक बच्चा भी शामिल है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने बताया है कि एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली जाने वाली परवाज के हालिया वाकये की तहकीकात हवाई जहाज के हादसात के तहकीकाती ब्यूरो की जानिब से की जा रही है। वजारत ने इस वाकये को एक संगीन वाकया करार दिया है। ये वाकया इस माह की 4 तारीख को पेश आया जब परवाज के दौरान तैयारा अचानक हवा के दबाव की कमी के बायस तकरीबन 300 फीट नीचे आ गया था। भारतीय बहरिया और अमरीकी बहरिया की जानिब से धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने से मुतालिक मुश्तरका मश्क ईओडी 2026 कल से 14 अगस्त तक कोची में वाकई जुनूबी बहरी कमान में मुनक़िद की जाएगी। वजारत दिफा के मुताबिक इस बाहमी मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माहिर गोताखोर और धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने वाली टीमों के दरमियान बाहमी तआवुन और अमली हमाहंगी को मजीद मुस्तहकम करना है। भारत की तनसीब शुदा गैर रवायती ईंधन पर मबनी बिजली पैदा करने की सलाहियत 300 गीगावाट के हदफ से तजावज कर गई है। गुज़िश्ता माह की 31 तारीख को हासिल करदा ये बड़ी कामयाबी 2030 के लिए 500 गीगावाट सलाहियत के हदफ का 60% ज्यादा है। भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी राजस्थान हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और मगरबी मध्य प्रदेश में कल के लिए शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दौलत मुश्तरका गेम्स 2026 में तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों के साथ बातचीत की। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो भारत के लिए हमेशा खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई करें। मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात के साथ हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज हो गया है। वज़ीर आज़म ने लोगों से अपील की है कि वो इस तहरीक में शिरकत करके विकसित भारत के अहद का इयादा करें। झारखंड की सरकार ने इल्जामात और बेजाब्तगियों पर JPSC इब्तदाई इम्तिहानात को मनसूख करने से इत्तेफाक कर लिया। एहतजाज करने वाले तलबा ने कहा है कि एहतजाज जारी रहेगा। JPSC के 3 अराकीन ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने आलमी पैमाने पर यह पैगाम दिया है कि भारत दहशतगर्दी के तई सिफर बर्दाश्त के साथ अपने शहरियों को तहफ़ फराहम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने अभी तक मुस्तफिदीन को 1 करोड़ मकानात से ज्यादा सुपुर्द करने के साथ अहम संग मील अबूर कर लिया है। और शदीद तूफान डॉल्फिन चीन के मशरकी साहिल पर पहुंच गया है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। 1300 से ज्यादा परवाजें मनसूख की गई हैं जबकि 3 लाख अफराद को महफूज जगह पहुंचाया गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अमरीकी शहर ओरिगन में हुई 2026 वर्ल्ड एथलीट्स अंडर 20 चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एथलीटों को मुबारकबाद दी है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। प्लीज स्टे ट्यून्ड इन फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट दैट फॉलोज शॉर्टली। दिस इज डेली। इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर्स टुनाइट वी नाउ ब्रिंग यू अ फीचर टाइटल्ड एकोज ऑफ इंडिपेंडेंस विद इंडियंस अराउंड द ग्लोब। The Indian Independence Day, with the fluttering of our national flag all around, and a feeling of nationalism and nostalgia. The day of a collective celebration, of cohesive camaraderie amongst those
2: who think of a united and a developed India. It is on this day that after a long and hard-fought war against colonists, India, Bharat, rose from the flames and came into being, an idea that was nourished and blossomed by the blood, sweat and toil of millions. And now, a billion plus souls living that dream and moving together in coalescence to make our Bharat Vikasit.
3: This day has always been about celebrations, about hearing stories from our grandparents, and about watching the country's prime minister address her citizens, contributors, and stakeholders about the shared vision and the path which we are going to take.
2: The power of Indians is visible whenever there is any event, be it sports or otherwise, in any part of the world. The stadiums and arenas burst at the seams with the Jai Ghosh of Bharat Mata Ki Jai and Vande Mataram, with overseas Indians thronging the venue in their traditional attires, filling the venue with patriotism. Indians left their homeland, sometimes by choice, for higher studies, and sometimes as forced labors under the colonial rule, explains Assistant Director, National Archives, Sumita Das.
4: Initially, most of the records what we can trace, we find that the Indians going to England for studies, they appeared in ICS. That was a trend. The affluent Indian citizen wanted to get education from there, wanted to get all the good facilities available down there, the medical facilities, that was another area of interest. Post 1857, we find many people moving out. Noble, that is the kings, princely kings, they used to have all this up-to-date modern facilities what the Europeans used to have. Subsequently, commerce become an important thing. Recently, I have come across the Suriname indention records. Here in National Archives, we have such records. From 1876 to 1916, there were 36 ships that left the port of Calcutta, carrying the Indians who were the origin of Bihar, Eastern Uttar Pradesh, and some from West Bengal, there to Suriname. I happened to see records back in Suriname where they are having the records stating who had migrated, in which date, which ship they had come. The Suriname Archives is maintaining such records that gives an in-depth knowledge about how many people left the country, and in Suriname they have a record how many people reached their shore.
2: Sumita Das spoke about Indians in Suriname. Prime Minister Sri Narendra Modi, in his 120th edition of Mann Ki Baat, had shared his thoughts on Indians in Suriname.
5: ये ऑडियो सूरीनाम का चौताल है. बैठक और गानों की यह परंपरा त्रिनिदाद एंड टोबेगो में भी खूब लोकप्रिय है. इन सभी देशों में लोग रामायण खूब पढ़ते हैं और सभी भारतीय पर्व त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं. उनके कई गाने भोजपुरी, अवधी या मिश्रित भाषा में होते हैं. इन देशों में हमारी परंपराओं को सहेजने वाले सभी लोग सराहना के पात्र हैं.
3: The feeling of remembering those memories becomes even more emotional when we are living abroad, away from the motherland. How do those sons and daughters of India who grew up here, who still cherish such national celebrations, make merry on this day? How do they celebrate or gather around and sing songs of glory?
2: As we go globe-trotting to feel the pulse of Indians, our first stop is London, United Kingdom. British Indians form London's largest minority ethno-national group, with a population of over 6,50,000 people, roughly 7.5% of the city. Major cultural hubs include Southall, or Little Punjab, Wembley or Little India, and parts of Hounslow and Harrow. Here is what these Indians have to say on the Indian Independence Day.
6: Namaste, my name is Manu Khajuria and I am a Dogra from the Jammu region of the Union Territory of Jammu and Kashmir, currently residing in London in United Kingdom. I am an extremely proud Indian. I love to share the beauty and diversity of India, its rich culture, its cuisine and its incredible history. We've had the greatest of warriors. We have the beautiful Pahari miniature painting, Basoli paintings. The stories of the warriors, I think, hands down, are the most amazing, which need to be shared and told to everyone. And of course, in London, we are celebrating India's Independence Day on 22nd August, and we are celebrating all the states that make up this beautiful, beautiful nation of India. Namaste, Jai Hind.
7: This is Sheetal and I live in London. In the area where I live, you can really feel India around you. You see the tricolors being waved, people dressed in saffron, white and green, and the Indian community, they come together for rallies and celebrations too. Of course, the flag hosting ceremonies, patriotic songs, the national anthem, cultural activities. Most nostalgic thing is simply seeing the tricolors. Somehow it takes you straight back home, back to the Independence Day celebrations where we grow up. Even living abroad, we continue to keep our culture and traditions alive. Jai Hind.
8: My name is Sanu, proud alumna of Loughborough University along with that I work for Barclays UK. The 15th of August is one of the most important days for every Indian. At Loughborough University, we celebrate Independence Day by organizing cultural programs, singing patriotic songs, enjoying Indian food, presenting awards to the best performers. Celebrating Independence Day away from India makes me very emotional, but it also fills my heart with immense joy and pride.
2: From England, we move to Scotland, host of the recently concluded Commonwealth Games.
9: The Indians here are full of josh as India clinched a respectable fourth position overall in the medals tally. The Indian community in Glasgow is a vibrant and growing diaspora. Members of the community gather for major festivals, social meetups and student events throughout the city.
2: According to official results from Scotland's 2022 census, the total number of people identifying as Indian, Indian Scottish or Indian British in Glasgow is roughly 14,000. This means the Indian community makes up for 2.5% of Glasgow's total population, making it the second largest Asian subgroup in the city. And we caught up with a few of them.
10: Hello everyone, this is Shivangi living in Glasgow, Scotland. Our community comes together and there's celebrations, there's flag hoisting, there's patriotic songs being played and everybody enjoys it. But what I miss back home is like here we don't see like flying kites and stuff, which is kind of nostalgic to me, and I am really proud how my country, India, is conquering new heights and it's progressing. That is something that really, you know, makes me proud of my country, my culture. Thank you.
11: Manjulika Singh, Glasgow, Scotland. I have fond memories of India's Independence Day. On this day, whole family used to go to Red Fort to listen to live speech from Prime Minister. Scotland is my Karambhumi. Here, various groups will organize 80th Independence Day with cultural programs, patriotic songs, and dance performances. At Consul General of India, Edinburgh, they will be hoisting the official flag with community gatherings led by Consul General of India. Also, I will be watching television to hear Prime Minister's speech from Red Fort. Jai Hind.
2: India and Russia have an age-old, time-tested friendship. Afanasy Nikitin, circa 15th century, a Russian merchant from Sivier, wrote The Journey Beyond Three Seas, detailing his travels to India. Though an account of a Russian in India, it set the early framework for Russian fascination with Indian life, describing ordinary Indians with openness.

0: छात्र वृत्ति प्राप्त किया। उसी वर्ष में आकाशवाणी के राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में शास्त्रीय भक्ति संगीत में प्रथम पुरस्कार और कर्नाटक शास्त्रीय गायन में द्वितीय पुरस्कार भी प्राप्त किया है। ये आकाशवाणी में पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी पीढ़ी की गायिका हैं। इन्होंने प्रख्यात सभाओं में, प्रतिष्ठात्मक संगीत उत्सवों में और भारत के अग्रगामी सांस्कृतिक संस्थानों में प्रदर्शन दिया है। इन्होंने कर्नाटक गायन में और वायलिन में डिप्लोमा के साथ साथ संगीत में एमए डिग्री हासिल की है और आईआईटी खड़गपुर में एमबीए डिग्री भी प्राप्त की है।
1: श्रीमती सात्विका मोहन इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन एंड एन अकम्प्लिश्ड कर्नाटिक क्लासिकल वोकलिस्ट एंड वायलिनिस्ट। शी रिसीव्ड हर इनिशियल ट्रेनिंग अंडर श्रीमती वी ललिता, फॉलोड बाय एडवांस्ड ट्यूटेलेज अंडर विदुषी श्रीमती विष्णुभट्ल कृष्णवेणि ऑफ द रिनाउंड विष्णुभट्ल सिस्टर्स and further advanced guidance from Vidwan Sridhi Raghavachari of the illustrious Hyderabad Brothers, a child prodigy who presented her maiden concert at the age of 6. She was conferred the prestigious Balaratna title by the government of Andhra Pradesh. She is a recipient of the senior scholarship in Carnatic vocal music awarded by the CCRT, Ministry of Culture, Government of India, and achieved national distinction by securing first prize in classical devotional music and second prize in Carnatic classical vocal music at the All India Radio National Music Competitions in the same year. Becoming a second generation Akashwani National Prize winner, she has performed extensively at eminent sabhas, prestigious music festivals and leading cultural institutions across India. She holds diploma in Carnatic vocal and violin, an MA in Music and an MBA in Human Resource Management from IIT Kharagpur.
0: आज रात के इस कार्यक्रम में आपके साथ संगत करने वाले कलाकार हैं वायलिन पर श्री ओ राजशेखर, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
1: In tonight's broadcast, श्रीमती सात्विका मोहन is accompanied on violin by श्री ओ राजशेखर, on मृदंगम by विद्वान पीरवली जय भास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
0: श्रीमती सात्विका मोहन अपने गायन का आरंभ त्यागराज की एक कृति से कर रही हैं, जो राग हमसद ध्वनि तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्रीमती सात्विका मोहन बिगिन्स हर वोकल रिसेटल विद अ कंपोजिशन ऑफ त्यागराज स्वामी इन द राग हमसद ध्वनि सेट टू आदि ताल।

0: अब आप सुनेंगे त्यागराज स्वामी की एक कृति जो राग आनंद भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू ए कंपोजिशन ऑफ त्यागराज स्वामी इन द राग आनंद भैरवी सेट टू आदि ताल।

0: श्रीमती सात्विका मोहन अपना गायन जारी रखते हुए अब प्रस्तुत करेंगी नारायण तीर्थ द्वारा रचित एक तरंगम, जो राग बिलहरी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हर वोकल रिसाइटल, श्रीमती सात्विका मोहन विल नाउ प्रेजेंट ए नारायण तीर्थ।

0: अब आप सुनेंगे मैसूर वासुदेवाचार्य की एक रचना जो राग सिम्हेंद्र मध्यमम तथा मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू ए कंपोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार्य इन द राग सिम्हेंद्र मध्यमम सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: वो था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वाज द तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाय विद्वान पीरवली जय भास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
0: श्रीमती सात्विका मोहन अपने गायन का समापन श्री कनक दास की एक कृति के साथ कर रही हैं, जो राग सिंध भैरवी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्रीमती सात्विका मोहन कंक्लूड्स हर वोकल रिसेटल विद द कंपोजिशन ऑफ श्री कनकदासा इन द राग सिंधु भैरवी सेट टू खंड चापू ताल।

0: इसी के साथ हम रविवासरे अखिल भारतीय संगीत सभा में श्रीमती सात्विका मोहन का गायन समाप्त करते हैं। आज की सभा में उनके साथ वायलिन पर थे श्री ओ राजशेखर, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। रविवासरे अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के प्रसारण कक्ष में इस संगीत कार्यक्रम का ध्वन्यांकन किया गया है। ये कार्यक्रम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है।
1: With that, we conclude the vocal recital by Srimati Satvika Mohan in the broadcast of Ravivasriya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. She was accompanied on violin by Sri O. Rajasekhar, on mridangam by Vidwan Peravalli Jayabhaskar and on ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashvani Hyderabad for Ravivasriya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha and brought to you from the Delhi station of Akashvani.
2: ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे और उन्होंने नागरिकों से हमेशा भारत का उत्साह बढ़ाने की अपील की।
4: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
3: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023-25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ये कार्यकाल इस महीने की 13 तारीख से शुरू होकर अगले वर्ष 13 अगस्त तक रहेगा। सेवा में ये विस्तार 31 जुलाई 2027 को उनकी तय सेवा निवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दी है। वे 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today met the medal winners of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the Games with the Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi said that each one of them has made the nation proud through their exceptional performances and their success will motivate many youngsters. India finished at the 4th spot on the medal table at the Games held in Glasgow, Scotland between 23rd of July to 2nd of August. Indian athletes won 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sporting disciplines. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity and promote India's cultural heritage.